0: ही आवाज गूंजेगी।
1: You're listening to Avineet.
2: Kia ora, bula, salam, namaste, sasriyakal, namaskaram. Kemcho, aaj hai 17th of August, ek aur ek zaikedar lunchbox lekar main hoon abhi aapke saath mein. Aur aaj jabki first day of the week hai, to aise mein aapke liye dher sara information lekar aaya hoon jo aapke saath mein baatta rahunga. Lekin more importantly, in between aapke saath mein aur aapke liye khaskar, ढेर सारे ऐसे गानों को बजाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपके इस लंच बॉक्स शो को बिल्कुल शानदार बना दे। ये सभी कुछ हमारे साथ में रहेगा 104.2 एफएम साथ में रोवा पर। मेरा ढेरों सारा प्यार आप तक पहुंचे। आप देश के किसी भी कोने में हमें सुन रहे हैं या फिर विदेश में हैं, अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, वेलकम टू द शो जो है लंच बॉक्स। अभी से लेकर तीन तक ये कारवा आपके साथ में चलता रहेगा।
1: बचाओ क्या,

0: लंच बॉक्स में मैं भी आपके साथ में हूँ और जल्दी से बातें कर लेता हूँ कुछ मिठाइयों के बारे में। जी हाँ, बर्फी, पेड़ा या फिर काजू कटली। तो सुनते ही शायद आपको भी अब खाने के बाद में कुछ मीठा खाने का दिल करेगा। लेकिन इसकी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि इनके ऊपर जितने भी मिठाइयों का मैंने नाम लिया है इनके ऊपर एक सिल्वर लाइनिंग होती है जिसे आप वर्क या फिर वर्क या फिर वर्क कहते हो। तो कभी सोचा है कि ये क्यों डाला जाता है मिठाइयों के ऊपर? तो एक रीज़न ये बताया गया है कि ये लग्जरी और सेलिब्रेशन का प्रतीक है, साइन है, क्योंकि सिल्वा जो है चांदी की याद दिलाती है, उसको सिंबलाइज करती है। तो लग्जरी और वेल्थ और साथ में सेलिब्रेशन का ये प्रतीक है। उसके साथ में दूसरा रीज़न ये बताया गया है कि एक नेचुरल प्रिजर्वेशन का काम करता है। सिल्वा जो है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ है कि कहीं ना कहीं जो मिल्क बेस्ड या फिर नट बेस्ड प्रोडक्ट्स है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को काफ़ी आहिस्ते कर देता है। तो ये कुछ रीजंस थी जो आपके साथ में शेयर कर रहा था मिठाइयों को लेकर। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूंगा, कमिंग अप नेक्स्ट इज लंच बॉक्स ऑफिस शाउट आउट, जिसके लिए आप 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हो।
1: नथिंग ना ना ना ना ना ना नथिंग ना किंतु द थिंग द थिंग द थिंग नथिंग ना।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
2: For a limited time, ventilate three or more rooms in your home and you'll get one vent for free. That's right, one vent for free when you purchase a DVS home ventilation system. T's and C's apply.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
4: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
6: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grow A Basin Mixers $149. American Standard Toilet Suite $349. Luxury Clash Ish Wall Vanities $399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
8: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
8: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: Non-stop Bollywood.
13: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
12: हम playing Bollywood's biggest hits.
14: Lunchbox with Ketan.
15: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
14: हम office shout out.
16: लंच बॉक्स में मैं हूं अभी आपके साथ में, और जबकि समय हुआ ऑफिस शाउटआउट का, तो नीरज ने हमारे पास में टेक्स्ट किया है। पोकिनो में है और ये कामकाज कर रहे हैं, अपने डेली वर्क में काफ़ी बिजी है, लेकिन इसके अलावा हम के साथ में जुड़े हैं। और 5599 पर आपने टेक्स्ट किया है, लिखा है आप शो को इन्जॉय कर रहे हो एंड यू आर इन्जॉइंग योर लंच एज वेल, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप भी हमारा साथ देते रहे, लेकिन आपने अपने फिल्म का नाम नहीं लिखा, लेकिन जो भी हो इन्जॉय योर डे।
12: Of the hour brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

लंच बॉक्स में मैं हूं आपका साथी अवि और लगे हाथ आपको कम्युनिटी न्यूज से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल। और जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक पर जा सकते हैं या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज को 02109085067 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अनफिल्टर्ड में सिंडी और रुजबे ने बातें की है पंकज जी के साथ में ताकि कैरम बोर्ड को लेकर जितने भी कॉमन मिथ्स है, रूल्स है और गेम के बारे में जितने भी जानकारी है यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अगर जो आप चाहते हैं इसको सुनना तो आप CB लिखकर 5599 पर आप टेक्स्ट करें तो पूरा का पूरा जो एपिसोड है आपको मिल जाएगा।

0: हम पर हॉट एंड हैपनिंग सिजलिंग लंच बॉक्स लेकर मैं हूं आपका साथी अवि। कमिंग अप नेक्स्ट इज चटनी शॉट्स, और चटनी शॉट्स में आज के लिए डिस्कस करेंगे, जबकि काफ़ी जगह पर बातें हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी नौकरी खतरे में, तो रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है कि अभी भी एक ऐसी जॉब है जहां पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में एंटर नहीं कर पाएगी। तो कौन सी ऐसी जॉब है, बस आपके साथ में चटनी शॉट्स में बस थोड़ी देर में शेयर करूंगा।
1: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Irvine, sirf rova par.
1: It's easy to see signage as a cost. The smart businesses see it as leverage. A clean, professional sign can bring in new customers every single day. If one extra job covers the investment, everything after that is upside. Speedy Signs design signage that builds credibility and drives action without ongoing fees. Ready for signage that pulls its weight? Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
2: You filled the pinata before I sealed it, right?
3: No, you did.
2: I thought you did.
4: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
5: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
6: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
7: Lunchbox with Keithan.
8: Aisa bajaunga na ki tere kaano mein roz meri aawaz goonjegi. Hum.
9: Chutney Shots. हम पर ये है चटनी शॉट्स और मैं हूँ आपका साथी अवि. और जबकि हमने बातें की थी कि आपके साथ में शेयर करेंगे AI को लेकर कि कैसे आगे चलकर इन फ्यूचर काफ़ी जॉब्स को ये डिस्प्लेस कर देंगे, यानी कि एक्सपर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं एक रैपिड ग्रोथ हो रही है रोबोटिक को लेकर, कि जहाँ पर इनको ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ में इंस्टॉल किया जाएगा कि ज़्यादातर ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाएंगे इन द डेली जॉब्स. लेकिन एक्सपर्ट्स का उसी जगह पर कहना है कि हालांकि AI काफ़ी जॉब्स को ईजली रिप्लेस कर देंगी, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज है जहां पर इनकी एंट्री काफ़ी मुश्किल रहेगी. इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो ऐसे रोल्स है जहां पर काफ़ी कैओस मचा होता है और साथ में हाई फिजिकल डिमांड्स होती है, इसके अलावा हाई अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ में ऑन टॉप ऑफ दैट एक इमोशनल एम्पैथी की भी ज़रूरत होती है. तो ये चारों चीज़ों को अगर जो मिलाया आप तो एक ही जो जॉब है ये सामने आया है, किंडरगार्टन टीचर का. जी हाँ, क्योंकि इनकी जो डिमांड होती है काफ़ी कायोटिक एनवायरनमेंट होती है, साथ में हाई फिजिकल डिमांड होती है, अकाउंटेबिलिटी की भी ज़रूरत होती है, इसके साथ में इमोशनल एम्पैथी भी रिक्वायर्ड है. तो ये सभी चीज़ों को मिलाने के बाद में एक्सप्रेस ने कहा है कि फॉर नाउ किंडरगार्टन टीचर को शायद AI रिप्लेस करने में काफ़ी स्ट्रगल करेगी.
7: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: मॉर्निंग्स विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज के लिए मौसम में 17th of August जो टेम्परेचर्स ओवरनाइट रहेंगे 5 डिग्रीज तक रहेंगे, साथ में सनसेट एट 5:49 PM, पार्टली क्लाउडी जैसा मौसम रहेगा, आइसोलेटेड शावर्स भी रहेंगे जो बाद में चलकर आगे गंभीर भी हो सकती है, ख्याल रखिएगा।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।

0: to Avineet.
1: हम पर ये है लंच बॉक्स का कारवा इज जस्ट आफ्टर वन, तीन तक हमारा और आपका साथ रहेगा और ऐसे में इस हवा पर भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ में रहेंगी। कीप हमिंग और साथ देते रहिए। आपके फ्रेंडली मैसेजेस के लिए 5599 ये नंबर आपको याद रहे।
0: बचाओ क्या?

0: हम पर जायकेदार लंच बॉक्स लेकर मैं हूं आपका साथी अवि, और जबकि कमिंग अप नेक्स्ट इज लंच टाइम रेंट लाइन, जहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास में भी कोई ओपिनियन होती है जो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं 5599 पर। तो आज के लिए आपको मौका देते हैं, जबकि काउंसिल की जो सिटी राइट्स है ये कहीं ना कहीं 7.9% से इंक्रीज हुई है फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। और अगर जो आपको लगता है कि डिस्पाइट दिस इंक्रीज अभी भी आप काउंसिल के सर्विसेज से खुश ना हो, तो ऐसे कौन से सिनारियोज हैं जहां पर आपको लगता है कि क्यों आप काउंसिल की सर्विसेज से खुश नहीं हो अपने एरिया में, तो 5599 पर आप हमारे पास में मैसेज करें व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर नॉट हैप्पी विद, और इसके बारे में और भी बातें करेंगे लंच टाइम रेंट लाइन में।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम ड्राइविंग यू होम ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
5: ये गलत बोल दिया यार।
4: और पहनता भी नहीं उसको।
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो।
5: अभी ब्रांड हो गया ना।
4: रुस्बे के बाल लगे उस।
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
8: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI।
9: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
10: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if frosted tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
11: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
12: Boat plus ute equals beaut. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
13: This is your business. This is your business supercharged with the help of Zero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Zero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Zero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Zero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom. Supercharge your business today with the help of Zero.
14: Search Zero with an X.
1: Lunchbox with Ketan.
15: Mujhe pasand hai ladka.
1: Hum. Lunchtime Rant Line.
0: लंच बॉक्स में यह है लंच टाइम रेंट लाइन, जहां पर हमने आपको एक टॉपिक दिया था कि काउंसिल ने फॉर द ईयर 2026 एंड 2027 अपने रेट्स को इंक्रीज किया है, स्पेशली फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज बाय 7.9%. कहीं ना कहीं ये शायद अराउंड $300 तक साल में इंक्रीज है. और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे कहा था कि ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिसे आपको लगता है कि काउंसिल शुड डू बेटर. तो ऐसे में हमारे पास में मैसेज किया है स्मिता ने, और स्मिता लिखती है कि काउंसिल इन द मीन टाइम प्रोवाइड्स ओनली वन फ्री कलेक्शन फॉर inorganic items. I reckon that there should be more than one, at least for now, in relation to the increase in city rates. Oh, that's well said. Thank you so much for sharing this. Jee haan, council abhi, mere khayal se, according to the website, एक ही फ्री कलेक्शन देती है पर ईयर. लेकिन अगर जो इतने ज़्यादा रेट्स हो चुके हैं तो मे बी इनको ये इंक्रीज कर सकते हैं टू टू और थ्री. It's a good point. Thank you so much for sharing this.
1: Lunch ke munch pe.
15: Hoi, hoi, hoi, hoi.
1: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

हम पर यह है लंच बॉक्स का कारवा। मैं हूं आपका साथी। अभी आपको बता दूं हम बोर्डिंग कॉल के बारे में। जी हां, हम बोर्डिंग कॉल इज नाउ ओपन, जबकि आपका जो ड्रीम आइलैंड एस्केप है इज जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे। आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी। और आपको कैसे एंटर करना है, आपको एवरी वीकडे हम सुनते रहना है एंड स्पेशली हियर आउट फॉर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल। आपको ध्यान लगाकर सुनना है। जैसे ही स्पेशल बोर्डिंग कॉल लगेगा सुबह 8 पर, दिन में 11 और साथ में 1 PM और इन द आफ्टरनून एट 5 PM, जैसा ही बोर्डिंग कॉल का जो साउंड है, जो क्यू है, आप सुनते हैं, उसके बाद में आपके पास में 60 मिनट्स है टू गो टू रोवा और उसमें आप एंटर कर सकते हैं बाय टाइपिंग बोर्ड नाउ एंड क्लिक सबमिट। तो अभी के लिए, आज के लिए मैंने अभी तक जो बोर्डिंग कॉल का क्यू है अपने शो में तो नहीं सुना है, लेकिन ये जल्द से जल्द आपके लिए बजने वाला है और उसके बाद में आपके पास में 1 आवर टाइम रहेगा जहां पर आप इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सुनते रहिएगा। और अगर जो आपको कॉम्पिटिशन पेज का लिंक चाहिए तो BC लिखकर 5599 पर भेजे। दैट्स इट, यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन एन अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेट अवे। डोंट मिस योर फ्लाइट बिकॉज दिस वन कुड टेक यू टू पैराडाइज। हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु। विजिट flysolomons.com। T's and C's डू अप्लाई।

0: हम पर यह है लंच बॉक्स और मैं हूं आपका साथी अवि। आपको बता दूं खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स के बारे में, जो रहेगा न्यूजीलैंड फैशन वीक 2026 में। यहां पर एक ऐसा मौका जहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जो एक सिंबॉलिक खादी फैब्रिक है जहां पर इसे हैंडस्पन किया जाता है, लेकिन अभी के टाइम पर इसको एक कूल स्पिन दिया गया है बाय नन अदर देन राजेश प्रताप सिंह, जो कि यूं कहें फैशन की दुनिया में एक जाने माने नाम है। और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक मॉडर्न टेक लिया है इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को। ऐसे में इसे आप चेकआउट करना चाहते हैं तो फैशन शो जो रहेगा ट्यूसडे 18 अगस्त, विच इज़ टुमारो, 8:30 PM, साथ में शेड 10 क्वींस वॉफ पर यह रहेगा, 889 की स्ट्रीट, ओकलैंड CBD। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हैं NZ फैशन वीक को। और जो खादी मटेरियल को लेकर, फैब्रिक को लेकर कौन कौन से डिज़ाइन किए गए ये भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट्स लेने पड़ेंगे, nzfashionweek.com जाकर चेकआउट कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको टिकट्स जीतने का भी मौका दे रहे हैं हम पर, डबल पासेस। आपको खादी लिखकर, KHADI लिखकर अपने नाम के साथ में 5599 पर टेक्स्ट करना होगा। बस इतना करके आप अपने आप को ड्रॉ में शामिल कर लेंगे। दैट्स हाउ सिंपल इट इज।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Taika.
1: Lunchbox with Ketan.
2: मुझे पसंद है लड़का.
1: हम.
3: Ladies and gentlemen.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: You're listening to Avineet.
1: आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं हूं आपका साथी अभी तीन तक हमारा और आपका साथ बना रहेगा और अभी थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे या फिर आपको ऑप्शन देंगे सुनने का स्किप या रिप्ले में. इसके लिए भी हमारा साथ देते रहिएगा.
0: बचाओ क्या

0: हम पर लंच बॉक्स में जल्दी से आपको स्किप या रिप्ले का ऑप्शंस दे देते हैं. पहला, आंखों से तूने 2.0 या फिर है जवानी तो इश्क होना है, जो अभी हाल ही में इसको एक और एक नया वर्जन में एक फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, यानी कि है जवानी तो इश्क होना है इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक, या फिर आंखों से तूने 2.0. जल्दी से 5599 पर जो भी आपको प्रिफर्ड है वही सिलेक्शन भेजिए हमारे पास में, और अगला गाना वही बजेगा आपके लिए आपके वोट्स के आधार पर.
1: टिंडर एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल, बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल.
2: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ.
3: आई वाज टोटली वर्थ इट. ओके,
2: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ.

0: Come on, Chunky, now it's your turn. Come on, get up. Tell us.
1: Yeah, sing.
2: हाँ, please बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूँ.
3: आगे.

0: मिलना किसी से था मुझे, दूजा ही कोई मिल गया। नियत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाओ।

0: 100% खराब।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हम मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुजबी टिकट्स बुक हो गए
1: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
8: Hey Neha, congratulations on your first home. Tune to kaha tha ki do do banks ne loan dene se aur ek famous broker ne to case lene se hi mana kar diya tha. ये घर कैसे?
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
8: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया। नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
12: हाँ। अच्छा
11: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz।
15: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon, and this time it's different. You now need to enroll before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
16: Remember, if you want to vote, you need to enroll first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
17: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay.
3: हम पर लंच बॉक्स में स्किप या रिप्ले में द ज्यूरी हैज स्पोकन. जी हाँ, प्रिया शिमल साथ में कार्तिक को सुनना है आंखों से तूने 2.0. तो ये अगला गाना खास आपके लिए.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

हम पर यह है लंच बॉक्स और जल्दी से आपको रक्षाबंधन कंपटीशन के बारे में बता दूं जो हमारे साथ में ओनिया में भी आप पार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पर भी भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया के बारे में बता दूं जहां पर रक्षाबंधन कंपटीशन है, इसके अंतर्गत आप जीत सकते हैं $300 कैश इनाम। आपको सिर्फ क्या करना होगा, कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होंगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके भाई और बहन के रिश्ते में काफ़ी मायने रखती है। शायद आपके भाई ने आपको गिफ्ट दिया होगा, या फिर आपकी बहन ने आपको कभी गिफ्ट दिया होगा, या फिर कुछ ऐसी मामूली चीज़ें हैं जो शायद आप जब लास्ट मिले थे तब आपको दिया गया था, लेकिन अब ये आपके दिल में मामूली नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई है। तो इसी चीज़ को लेकर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा हमारे हम फेसबुक

आप ज़रूर इंटरेस्टेड रहें, ये हम चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आप भी हमारे साथ में विनर ठहरे। तो दीज आर द टू प्लेटफॉर्म्स, और इसके लिए भी आप हम सुनते रहिए। और जो रक्षाबंधन है अपकमिंग, इसमें आप अपने भाई या बहन को एक प्यारा सा तोहफा दे सके बाय विनिंग दिस एक्सलेंट अमाउंट ऑफ कैश।

0: हम पर आप अपना लंच बॉक्स मेरे साथ में एंजॉय कर रहे हैं, मैं हुआ भी आपका साथ दे रहा हूं। और आपको बता दूं, कम्युनिटी न्यूज में आपके पास में मौका है, जबकि ओकलैंड भक्ति सत्संग प्रेजेंट कर रहा है ग्रैंड त्रिकोणा कीर्तन नाइट, और इनमें कलाकार रहेंगे अच्युतन नायर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, नितिन गाउंडर ओकलैंड के, और साथ में अश्विन कुमार अप्पा लोटोका फिजी से। जो कॉन्सर्ट है, ये जो कीर्तन नाइट है, ये रहेगा फ्राइडे 25 अगस्त को वैदिक सेंटर पापटोय में, टिकट से सिर्फ $20। इसी फ्राइडे को आपके पास में मौका है, और स्पॉन्सरशिप साथ में इंक्वायरीज के लिए आप 02106672 पर या फिर 02155888 पर कॉल कर सकते हैं।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का। हम
3: अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं, और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
4: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
3: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
4: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
3: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में।

0: और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मा'स फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स Botany Town Center.
3: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
4: Flooring Extra. Adore your floor.
5: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten. And somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
6: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
7: 19 saal baad, Shivam is back. A man haunted by grief and loss, searching for a purpose in life. Awarapan 2, starring Imran Hashmi and Disha Bhatni.
8: Maut, mera usse ek purana rishta hai. एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
7: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म।
9: आवारापन
7: रेटिंग टीबीसी।
10: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoy. Tickets sir, $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoy, or Shu Prasad, Kelston.
11: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
12: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
13: Hum, playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
14: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
13: इसके पीछे
15: हम
13: Tech Talk.
16: हम पर मैं हूं अभी आपका साथी और आज के लिए टेक टॉक में आपका ध्यान खींचते हैं एक ऐसी कहानी पर जहां पर बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि फिलीपींस में खासकर ये हुआ है. इट वाज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स जहां पर एक पीआर एजेंसी के स्टाफ ने बताया है कि जो स्टाफ है इनको इस्तेमाल करके पीआर एजेंसी ने क्या किया है, एआई के लिए मटेरियल इनसे तैयार कराया ताकि जब भी इस मटेरियल को ये तैयार कर दे तो फिर उसको सॉफ्टवेयर की तरह एआई को फीड किया जाए. और ये सब कुछ करते हुए एक्चुअल पीपल को यूज़ किया गया है एआई को ट्रेन करने के लिए, और फिर इन रिटर्न इन्हीं की जॉब खतरे में आ गई है एंड शी वॉज मेड टू लूज हर जॉब. तो इन्होंने बताया बीबीसी को अपने रिपोर्ट में कि इट फेल्ट लाइक आई हैव डग माई ओन ग्रेव. जो वर्कर्स है जो कोट हुए हैं इस एआई ट्रांजिशन में, इनका ये कहना है कि जबकि हम ही ने इस मटेरियल को तैयार किया है, कहीं ना कहीं एट द एंड हम ही को रिप्लेस कर दिया गया.
13: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800 722 462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: हम पर आपको थ्रोबैक सुनवाने से पहले भजन जेम्स के बारे में जल्दी से बता दें, जबकि साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और साथ में एनजेड कल्चरल ट्रस्ट ये साथ मिलकर लेकर आ रहे हैं रवितेश देव को, जो कि आपके लिए परफॉर्म करने वाले हैं, आपको सुनवाने वाले हैं डिवोशनल म्यूजिक और साथ में फ्यूजन भजन्स ऑन अ लाइव बैंड. ये सभी कुछ आपके लिए रहेगा ऑन द 22nd of August 7 PM एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पपटोई में, जहां पर टिकट्स है $30 और बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है. यहां पर आपके लिए स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स भी बेचे जाएंगे. टिकट्स के लिए आप eventbrite.com जा सकते हैं. जेस फ्रेश पापटोए साथ में वेली फ्रेश पापटोए और शिव प्रसाद कैल्सन से आप अपने टिकट्स ले सकते हैं. और ये जो सारे प्रोसीड्स होंगे इस नाइट से, ये दिए जाएंगे इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी, और इसीलिए आपको वहाँ जाना ज़रूरी है ताकि ऐसे नेक कार्य में भी आप सपोर्ट कर सकें. इसी के साथ साथ मेरा भी जाने का समय हुआ यहां से, और आगे का प्रोग्राम सैंडी के साथ में रहेगा, जबकि ये लेकर आएंगे आपके लिए कॉफी ब्रेक. आपसे कल मुलाकात होगी 12 पर, लेकर आऊंगा एक और एक नया लंच बॉक्स. इन द मीन टाइम डू टेक केयर.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
4: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
5: डॉक्टर ने क्या बोला?
6: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
5: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
7: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
8: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे, कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashore1.co.nz। नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अशोर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
9: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
10: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
11: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
12: Your property manager shouldn't disappear after 5 p.m. Nesto offers evening and weekend viewings, proactive management and real support. Visit nesto.co.nz. Nesto Property Management. Comfortably nested.
13: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
14: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Next steps have been confirmed for what's tipped to be New Zealand's largest and most expensive infrastructure project ever. The government is launching a detailed business case for a second Waitemata Harbour crossing. A tunnel proposal was endorsed by the Transport Agency earlier this year. A Miola Reef option will also be looked at in the spirit of good faith, as well as a market-led proposal to upgrade the existing bridge. The Greens want to ban price gouging by the supermarket duopoly. The party has announced a members' bill that would make it illegal to charge prices that are excessive compared to supply costs. Co-leader Chloe Swarbrick says it's not a crazy or radical idea.
15: It actually copies the approach that's been taken in Australia, enforced as of the 1st of July this year.
14: The price of fuel continued to fall in July. Petrol was down nearly 6% compared to June, while diesel dropped just over 12%. It was the third consecutive month of falling prices at the pump. A missing cat has been found in the UK after disappearing a decade ago. Charlie the Tabby wandered off in 2016 after her family moved to a new area. Her owners told the BBC she is in good health and recognised them straight away. To sport, as the Warriors' momentum builds towards the NRL finals, Australian media is reporting Panthers star playmaker Nathan Cleary is thinking about a move to the Warriors. He grew up in Auckland, rugby league with Machinery House and a league of their own. And heavy losses to New Zealand's hockey teams at their respective World Cups. The Black Sticks men lost 5-1 to host nation the Netherlands, while the women lost to co-hosts Belgium 5-2.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 11.6 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 5 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का सनी एंड क्लाउड गुड वेदर. पूरा हफ्ता ऐसा जाएगा. सनसेट 5:49 पर.
13: द बीट ऑफ बॉलीवुड
17: वर्ल्ड्स बेस्ट. हमारी कोई ब्रांच नहीं
13: है. कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
16: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. यू हमें अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में. सो कैसे हैं आप और आपका हफ्ता कैसा गया, आपका वीकेंड कैसा गया, ज़रूर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. हाउ वाज योर सैटरडे एंड संडे. बीन गुड वेदर एज वेल, लेकिन ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा रही है और ये हफ्ता भी थोड़ा ज़्यादा चिली रहने वाला है. लास्ट वीक वो स्टिल फाइन. सो हाउ इज़ इट गोइंग. आपका वीकेंड में आपने कुछ बिंज वॉच किया जिसके बारे में आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. मैंने एक मूवी देखी है जिसके बारे में थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगी. बाय द वे कॉकटेल 2 जिसका गाना भी आप सुनने वाले हैं, ये भी OTT पे आ चुकी है लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी है. एंड आवारापन 2 यस, ये फ्राइडे को देखी है. 4 बजे के बाद इसके बारे में बात करूँगी जब रुजबे यहाँ पर पहुँच जाएगा. सो अगर आपने देखी है आप भी अपने रिव्यूज़ जो डिफरेंट मूवीज़ के हैं यहाँ पर शेयर कर सकते हैं 5599 पर.

3:11 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे कल खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स ये इवेंट होने वाला है शेड 10 ऑकलैंड वाटरफ्रंट में। सुपर्ब इवेंट रहने वाला है जहाँ पे पूरा दिन, वैसे न्यूजीलैंड फैशन वीक के टाइम पे यू नो बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे फैशन वॉक्स जो है ये आपको ऑफकोर्स देखने को मिलेंगे। सो कल के बारे में अगर आप हम बातें करते हैं तो सुबह 10 बजे से एक्चुअली में इवेंट्स शुरू हो जाएंगे एंड एंड होगा खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स इस इवेंट के साथ। वैसे फैशन वीक 22 तक चलने वाला है। सो ये जो होने वाला है खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स 8:30 PM पे होगा, जहाँ पे इंडिया के डिज़ाइनर्स जो है, टॉप डिज़ाइनर्स यहाँ पे पहुँचे हैं खादी को प्रेजेंट करने के लिए, वो भी रैंप वॉक पे खादी प्रेजेंट होगी। इट्स एक्चुअली अ रियली बिग थिंग। सो एक कोलैबोरेटिव प्रेजेंटेशन है फीचरिंग श्रुति संचेती, समन चौहान एंड पवन सचदेवा, और इंडियन डिज़ाइनर जो राजेश प्रताप सिंह है वो इसको हेडलाइन कर रहे हैं। सो खादी जो कि हैंड वोवन सिंबल है, कह सकते हैं कि पावर का एक सिंबल है, इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये सोलो प्रेजेंटेशन भी रहेगी एंड देन ग्रुप शो जो है ये भी रहने वाला है। तो आप इस इवेंट का ज़रूर हिस्सा बन सकते हैं। शेड 10 ऑकलैंड वाटरफ्रंट वहाँ पे ये होने वाला है कल के दिन, कल की रात को 8:30 बजे से ये जो रैंप वॉक है वहाँ पे होने वाली है। सो टिकट्स आप बाय कर लीजिए, nzfashionweek.com पे आप जा सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। कॉफी ब्रेक विद सैंडी, कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: Radio. Streaming on Rover.
1: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
2: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
3: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
2: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
3: पर डेवलपमेंट के पैसे
2: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
4: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
5: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir-fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
7: Unnees saal baad, Shivam is back. A man haunted by grief and loss, searching for a purpose in life. Awara Pan 2, starring Imran Hashmi and Disha Bhatni.
8: Maut, mera usse ek purana rishta hai, ek karz hai, jo mujhe chukana hai.
7: Awara Pan 2, now showing in cinemas. Distribution partner for a film.
9: Awara Pan.
7: Rating TBC.
10: Reliance Ventilation System.
11: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
10: Moisture और ventilation का problem लगता है.
11: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
10: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
12: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
13: Yes.

321 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं हम बोर्डिंग कॉल. ये वैसे आज आपके लिए 5 बजे के बाद रहने वाला है. इट विल बी ओपन्ड आफ्टर 5 PM. आप अपने एक ड्रीम आइलैंड एस्केप के लिए पहुंच सकते हैं. जस्ट एक बोर्डिंग कॉल अवे है. यू कैन विन 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनाटू विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी. ये आपके नाम हो सकता है. तो एंटर करने के लिए करना क्या है, बस सुनते रहिएगा हमें आप ध्यान से, बिकॉज स्पेशल बोर्डिंग कॉल जो है ये आपके लिए कभी भी प्ले हो सकती है. इट कैन बी बिटवीन 8 AM टू मतलब बिटवीन इट विल बी बिटवीन 8 AM टू 9 AM, 11 AM टू 12 PM, देन 1 PM, बिटवीन 1 PM टू 2 PM एंड बिटवीन 5 PM टू 6 PM. जैसे ही बोर्डिंग कॉल आपके लिए प्ले होगी इन आवर्स के बीच में, उसके बाद आपके पास 60 मिनट्स 1 आवर का टाइम होगा हमारी रोवा ऐप पे जाके. वहाँ पे ये जो कंपटीशन पेज है हम बोर्डिंग कॉल का, वहाँ पे उस टाइम के आगे बोर्ड नाउ आपको टाइप करना है एंड सबमिट करना है. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर आपको कंपटीशन पेज चाहिए, आप ज़्यादा रोवा पे जाके ढूंढना नहीं चाहते हैं, तो बहुत ईजी है. BC एज इन बोर्डिंग कॉल लिख के भेज डालिए 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में आपको कॉम्पिटिशन पेज का लिंक आ जाएगा. सो हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनाटू. इसके लिए विजिट कर सकते हैं flysolomons.com, तो आपको और भी जानकारी मिलेगी. टर्म्स एंड कंडीशन इस कॉम्पिटिशन के वैसे हमारे पेज पे है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं. तो ये जो टाइमिंग्स आपको बताए हैं, इन टाइमिंग्स के बीच में डेफिनेटली ये प्ले होने वाला है बोर्डिंग कॉल. सो मेक श्योर कि कॉम्पिटिशन पेज आपके पास एक्सेसिबल है. And it's very easy to access the page. BC लिख के भेजिए 5599 पर. वो चाहे आप अभी भी कर सकते हैं, so that आपके पास competition page already है.

3:30 हो चुके हैं फिलहाल, कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं. Now the news is that Kiwis are spending again, but are we feeling richer? So New Stats New Zealand के जो है electronic card data के ये show करते हैं, जो core retail spending है वो rise हुई है 3.5% in July as compared with July 2025, पिछले साल के July के comparison में. Big turnaround है after a pretty flat June, जहाँ पे spending was only 0.4% year on year. So biggest increase जो हुआ है spending में यहाँ पे वो है hospitality में, 3.2% actually में increase हुआ है. So hospitality का benefit हुआ है $46 million का. Then durables का is plus $41 million, so 2.5% increase हुआ है. Consumables जो है उसमें 1%, जिसमें हम groceries count कर सकते हैं. Then clothing, apparel जो है इसमें its biggest annual increase in 2 years, that is 2.5%. Fuel is down and down $22 million. So motor vehicles excluding fuel virtually unchanged hai, which is down 0.1%. Wo down gaya hai. Interesting factor hai ki low fuel prices left household with little more money. So retail NZ ka kehna hai ki people appear to have used some of extra cash jo hai खुद को ट्रीट करने के लिए, बिकॉज जो यहाँ पे है जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, ड्यूरेबल्स, क्लोथिंग, अपैरल्स जो है इनके ऊपर खर्चा इस बार जुलाई के मंथ में ज़्यादा हुआ है. फीफा वर्ल्ड कप हो सकता है एक अनदर फैक्टर हो दैट हेल्प हॉस्पिटैलिटी, बिकॉज काफ़ी लोग बाहर गए मैचेस वगैरह देखने के लिए, बाहर बुकिंग्स थी एंड मैनी हेड आउट टू द बार्स एंड रेस्टोरेंट. सो वो एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है हॉस्पिटैलिटी का. बट या Finally, many people have started spending money. आपने क्या recent कुछ आपने क्या contribute किया है जुलाई के महीने में in eating out, clothing नए खरीदने में या shopping करने में, coffee या treats या फिर travel अगर आपने book किया है, home improvements अगर आपने की है या फिर you're still saving. आपने इस जुलाई के मंथ में अगर contribute किया है तो आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. 5599 इज़ अ नंबर. सो या न्यूजीलैंड का जो डाटा है ये बताता है कि न्यूजीलैंड में लोग फिर से खर्चा करना शुरू हो चुके हैं.

0: Andy. 3:40 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं और आज 6 के बाद ट्रेंड मेकर्स में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं डेविड धवन को. तो इमेजिन कीजिए क्या ही गाने होने वाले हैं डेविड धवन, बिकॉज यस्टरडे ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे. एंड डेविड धवन के कंट्रीब्यूशन हिंदी सिनेमा को अगर देखा जाए बहुत ही ह्यूज है. 90s के समय पे जहाँ पे एक रोमांटिक लव स्टोरी का एंगल भी चल रहा था, बहुत सारी और एंगल्स वहाँ पे चल रहे थे, मिस्ट्रीज के एंगल थे, लेकिन डेविड धवन अपनी कॉमेडी वहाँ पे लेके आए थे. एंड डेविड धवन ने जो नंबर 1 मूवीज़ बनाई हैं उनकी तो लिस्ट बहुत ही लंबी है. ऐसी ही कुछ लिस्ट के गाने आज आप 6 के बाद आफ्टर 6 PM बिटवीन 6 to 7 PM डेविड धवन स्पेशल यहाँ पे सुनने वाले हैं. बट फॉर नाउ आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है अनफिल्टर्ड में हमारा जो नया पॉडकास्ट है ये हमने ऑर्मिस्टन सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट ये 13 के स्टूडेंट्स के साथ रिकॉर्ड किया अबाउट देयर रियल वेंचर जिसका नाम है मनी मेहम. मनी मेहम इन्होंने एक फन एंड कॉम्पिटिटिव गेम बनाई है. अगर आपने कभी मोनोपोली खेली है थोड़ी थोड़ी वैसी है ये गेम, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट. मनी मेहम बहुत ही ईजी गेम है जिसे डिज़ाइन किया है बच्चों के लिए, एज बिटवीन 9 to 15. सो बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होना अबाउट मनी एंड फाइनेंशियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभी आप सोचते होंगे ना कि आपके बच्चे यार काश उनको पता हो कि यार ये इतना खर्चा नहीं करना है, ये चीज़ संभल के यूज़ करनी है. वो सारी जो चीज़ें हैं अगर अपने बच्चों के अंदर आप इनबिल्ट करना चाहते हैं, आई थिंक दे क्रिएटेड अ रियली गुड थिंग. ये गेम, ये बोर्ड गेम इन्होंने तैयार की है जहाँ पे एवरी स्टेप में दे हैव टू थिंक ट्वाइस कि अगर ये मैंने चैलेंज कंप्लीट किया तो इस चैलेंज के बाद मतलब एम आई लूजिंग द मनी, एम आई सेविंग द मनी, या क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो मनी में हम ऐसी एक गेम है, मैंने रुजबे ने भी इनके साथ एक्चुअली में खेली है, सो दैट्स हाउ आई नो कि ये गेम में स्टेप्स कैसे हैं. एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, इस गेम की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो बनाई हैं जैसे रिसाइकल चीज़ें हैं इन्होंने बनाई, एंड देन ऑल्सो इट कैन बी रिसाइकल, द गेम टोटली कैन बी रिसाइकल. 3D प्रिंटिंग इन्होंने की है काफ़ी चीज़ों के बीच में फॉर द चैलेंजिंग कार्ड्स एंड ऑल दैट. सो मेक श्योर कि इन बच्चों को आप इनकरेज ज़रूर कर रहे हैं. तो या आप अगर ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, इट्स वेरी ईजी, आप ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, आपको फुल पॉडकास्ट मिल जाएगा. अदरवाइज आप रोवा ऐप पे, स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूजिक पे जाइए, जस्ट सर्च अनफिल्टर विद सैंडी एंड रुज़बे, तो वहाँ पर भी ये एपिसोड आपको मिल जाएगा. लिसन टू दिस एपिसोड एंड बताइएगा कि कैसा लगा आपको. आने वाले दिनों में कुछ और स्टूडेंट्स के साथ भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट स्कूल्स में. एक्चुअली में प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है येस यंग एंटरप्राइज स्कीम, जहाँ पे स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जा रहा है या फिर कहो कि चैलेंज किया जा रहा है टू स्टार्ट देयर फर्स्ट बिजनेस. तो जैसे ऑर्मिस्टन सीनियर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, इन्होंने मनी में हम इस बिज़नेस को शुरू किया और हमारे साथ शेयर किया. सो वैसे ही कुछ और स्टूडेंट्स के साथ भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट देयर मिशन जो उन्होंने शुरू किया है. वेल, इसके बारे में आने वाले दिनों में बात करेंगे, बट फॉर नाउ गिव ऑल द लव टू दीज योर 13 स्टूडेंट्स.
1: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
0: और लगे हाथ जब आप वहाँ पे सुन ही रहे होंगे तो ऑल्सो आप वहाँ पे देखना न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के पंकज के साथ एक्चुअली में हमने बातें की है अबाउट हिज जो गेम वो टूर्नामेंट करने वाले हैं. सो वो भी आप वहाँ पे जाके ज़रूर सुनना. कैरम बोर्ड आपकी लाइफ का हिस्सा कैसे हो सकता है, दिस यू विल लर्न जब वो एपिसोड आप वहाँ पे सुनेंगे.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: फील्स लाइक 9 degrees ओवरनाइट आज टेम्परेचर रहने वाला है एज लो एज 5 degrees. 5:49 पे होगा सनसेट. सदलीज का साथ है और फाइन रहने वाला है वेदर. ये पूरा वीक एक्चुअली काफी फाइन है. कल भी काफी ब्यूटीफुल डे रहने वाला है. टुमारो इट्स गोना बी अ लिटिल वार्मर.
2: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
1: 4:02 on the 17th of August. Good afternoon, Drive Show में स्वागत है आपका. Hi Sandy, good afternoon.
4: Good afternoon Rusbe, कैसे हो तुम?
1: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ Sandy, आप कैसे हो?
4: बढ़िया. How was your Parsi New Year?
1: Parsi New Year was quite good, yeah. Very nice family time. And yeah, good stuff. New year, new beginnings. Old me.
4: वही ना, कई बार हम नए साल में ऐसा रेजोल्यूशन बनाते हैं कुछ ऐसा. तुमने कुछ ऐसा रेजोल्यूशन बनाया? Did you reflect on something and then made the resolution?
1: नहीं, मैंने नहीं बनाया.
4: नहीं बनाया.
1: एक रेजोल्यूशन जो बनाया वो नहीं ढंग से निभा पा रहा हूँ. और क्या,
4: उसके लिए तो साल खत्म ही हो रहा है ना.
1: अभी नए नए रेजोल्यूशन क्या बनाऊँ? नहीं यार, ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाया मैंने. बस कट रही है, कटने दे रहा हूँ.
4: दौड़ रही है लाइफ यार. यू नीड टू, यार कितना सिखाया तुम्हें. एनीवे,
1: आप मत ही सिखाओ आज के लिए तो, मेरे को लग रहा है.
4: मुझे भी ऐसा लग रहा है. एनीवे, तुमने फ्राइडे को मूवी देखी, कैसा लगा तुम्हें? अवारापन 2.
1: आप पूछ रहे हो?
4: हाँ.
1: अच्छा,
4: बिकॉज
1: आपको कैसी लगी सैंडी?
4: क्योंकि मेरे को अवारापन अच्छी लगी थी. एंड लेकिन यू बीन अ फैन ऑफ अवारापन ना.
1: आई रियलाइज
4: बहुत ज्यादा. या
1: आई रियलाइज समथिंग.
4: या
1: के आई हैव बीन अ फैन ऑफ अवारापन. आई डोंट नो, बट आई हैव बीन अ फैन ऑफ द टाइम दैट आई हैड ड्यूरिंग अवारापन.
4: टाइम भी हो. और मुझे क्या लगता है ना, एक और रियलाइजेशन है उसमें कि उस समय पर ऐसी मूवीज थी और वहाँ उस समय की कोई भी मूवी उठा के शायद अभी हम देखेंगे तो वी माइट हैव सेम काइंड ऑफ फीलिंग.
1: नहीं नहीं, ऑनेस्टली
4: मैं, ये क्या है?
1: नहीं, या नहीं, कुछ नहीं, ऐसे मैंने वो अवारापन अभी रिसेंटली रीवॉच की मेरी वाइफ के लिए ना. मुझे अच्छी लगी वो मूवी यार. इट्स अ नाइस मूवी. इट्स गॉट स्टोरी एंड वो स्टोरी गोज इन अ प्रॉपर वे एंड देयर इज लाइक अ प्रॉपर
4: एंडिंग टू इट
1: एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर. लाइक म्यूजिक बहुत अच्छा है वहाँ पे, सब कुछ है. अवारापन 2 However,
4: yeah,
1: I couldn't. मेरे को लग रहा है कि पहली हाफ वो लोगों ने बनाई और सेकेंड हाफ में यूजली थिंग्स शुड पिक अप एंड इट शुड गेट बेटर. वहां पे मेरे को लग रहा है वो लोग ने बोला कि यार छोड़ो यार, अभी मन नहीं कर रहा है, अभी खत्म कर देते.
4: मुझे भी सेम फीलिंग आई स्टार्टिंग में जब
1: खत्म ही नहीं की.
4: अरे यार,
1: घुमाते गए उसमें को, बाप रे, मतलब ये क्या है पागलपन.
4: मेरे को लगता है जो स्टंट्स इमरान हाशमी से करवा रहे थे उसके ऊपर सूट नहीं कर रहे थे.
1: नहीं, आई थिंक द मूवी नेम शुड नॉट बी अवारापन, इट शुड बी पागलपन.
4: पागलपंती आई थी एक.
1: या बट दिस इज आई थिंक
4: जहाँ पे एक बच्ची का एंगल भी दिखाया तो मेरे को वो बजरंगी भाईजान वाला एंगल लगा कि हो सकता है
1: मन में था वो बजरंगी भाईजान का एंगल.
4: मुझे वैसा लगा कि थोड़ा ऐसा उस और जा सकती है मूवी बिकॉज कंसेप्ट वैसा तो थोड़ा स्टार्टिंग में, बट देन वो लॉस्ट हो गया. वो मतलब कहीं और ही पहुंच गया वो. एंड दिशा वॉज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल इन दिस मूवी बिकॉज
1: फॉर यू. हमने टिकट का पैसा भरा है, चलो ठीक है. मतलब यू नो, फॉर सम पीपल.
4: फॉर सम पीपल 100%. बट या इवन आई फेल्ट कि मूवी में
1: अगर आपको टाइम वेस्ट करना है आपका,
4: सेकंड हाफ वाज बिट ड्रैगिंग.
1: या बिट टू ड्रैगिंग. मेरे को लग रहा है अगर आपको
4: मेरे को विलम नहीं पसंद नहीं आया यार.
1: एक तो कौन सी, हाँ, अगर आपको नए मूवीज के जो ट्रेलर देखने हैं थिएटर में जाके तो जो आ रही है मूवीज तो फिर आप जा सकते हो अवारापन 2 देखने के लिए. कौन सी मूवीज के ट्रेलर देखे आपने उसमें? कुछ मूवीज के ट्रेलर देखे ना,
4: इंग्लिश मूवीज के ज्यादा
1: देखे ना, हिंदी नहीं आया ना ज्यादा.
4: नहीं नहीं,
1: अच्छा हिंदी मूवी के ट्रेलर भी नहीं थे उसमें मतलब
4: anyway, पूरन गब्बी इसमें था, वो वाज द ग्रे शेड में जिसने रोल किया था, वो जो विलन का रोल था. He's known for the Zero movie as well.
1: Zero movie में भी काम किया उसने.
4: उसे शिवमंगल ज्यादा सावधान में भी काम किया है.
1: क्या बात कर रहे हो.
4: Yeah. So character roles basically उसने किए हैं.
1: वो character यहाँ पे भी character ही play कर रहा है वो. कुछ अलग किया नहीं उसने.
4: उसके ऊपर आगे भी खेलता रहा वो पूरा. KBC खेलता रहा वो.
1: Anyway.
4: ज़्यादा नहीं बोल सकते because
1: बटवारा कौन देख के आया. बटवारा
4: this is my view and this is Ruzbe's view. This is what I will say.
1: And you might have enjoyed the movie.
4: And some people rated this movie जिनके साथ हम गए थे, कई काफियों ने 7 भी रेट किया है, किसी ने 6 भी रेट किया है.
1: वो मेरे को लग रहा है आपने सही नहीं सुना, वो दिशा को रेट कर रहे हैं. मूवी को कोई साथ नहीं दे रहा था सैंडी.
4: यार इमरान हाशमी के फैन अलग है. अक्का बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Mohit Chauhan ki awaaz mein aap sun rahe the ye badhiya sa gaana. वैसे news ki baat kare to ab ek naya proposal यहाँ पे बिजनेस केस के ऊपर काम होने वाला है फिर से फिर एक और बार एंड दिस इज अराउंड हाबू ब्रिज का जो एक्सटेंशन है शायद या फिर
1: नेक्स्ट हाबू क्रॉसिंग कह सकते हैं
0: वो नेक्स्ट हाबू क्रॉसिंग या जो भी मतलब ये करना चाह रहे हैं जैसे हाबू ब्रिज को लंबा नहीं बड़ा करना चाह रहे और
1: या सो
0: जरूरी भी है ना
1: जरूरी भी है 100% तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है इनका कहना है कि कैबिनेट विल नाउ टेक कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट
0: या और एक डिटेल बिजनेस केस के ऊपर वो लोग काम करने वाले जिसमें वो अलग अलग ऑप्शंस लेकर आएंगे कि कैसे इसको फंड कर सकते हैं और क्या फाइनेंसिंग ऑप्शंस रहेंगे इसके इट्स गोना बी अ ट्रिकी वन नाउ
1: लेकिन एनजेडीए ने बैक किया है टनल ऑप्शन
0: अच्छा तो
1: उन्होंने बोला कि हाँ उन्होंने बोला कि वो प्रेफर्ड सॉल्यूशन रहेगा
0: क्या टनल बना दो
1: क्या अगर टनल बनाते हैं तो
0: पानी के अंदर से
1: हाँ
0: क्या बात है
1: विल बी नाइस सो न्यू ट्विस्ट है प्राइवेट इंटरनेशनल जो है उन्होंने प्रपोज किया है अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग ऑकलैंड हार्बर ब्रिज एंड देखते हैं कि गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है इस प्रपोजल को सो ये होता है कि नहीं होता है
0: व्हाट वुड यू वांट लाइक इफ यू वर टू डिसाइड मतलब आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा वुड यू लाइक टू हैव लाइक अ
1: न्यू टनल अपग्रेडेड ब्रिज या फिर अनदर क्रॉसिंग क्या
0: अनदर क्रॉसिंग कहाँ से बनाओगे
1: नहीं पता कैसे होगी ये बट या इट विल बी ऑप्शन बिटवीन टू टनल या ब्रिज एक एक्सटेंडेड ब्रिज कह सकते हैं अपग्रेडेड ब्रिज कह सकते हैं
0: जैसे
1: या फिर एक टनल होगा वो
0: बट ऑनेस्टली बोलो ना जैसे मुंबई में वो सीलिंग बना है और फिर अभी तो बहुत सारी चीजें बने वहां पे लेकिन वो ऐसे टाइप का कुछ अगर यहाँ पे बने जो ईस्ट को कनेक्ट कर ले नॉर्थ के साथ या समथिंग लाइक दैट लाइक यू नो एक सर्कुलर बन जाए
1: तो मजा ही आ जाए
0: तो इट बी इट लेसन द स्ट्रेस ऑन द सदर्न मोटरवे आल्सो ना देन
1: सो या ड्राइविंग भी थोड़ा
0: लेकिन कुछ क्रेजी आइडिया है वो तो
1: वो बनेगा कि नहीं बनेगा लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि टनल साउंड्स रियली गुड
0: मैं तो बोलता हूँ ये सब छोड़ो यार अभी ड्रोन उड़ाओ सिर्फ ड्रोन बनाओ फ्लाइंग कार्स बनाओ फ्लाइंग कार्स के ऊपर ध्यान दो ये सब में किधर अभी क्या रखा है
1: व्हाट डू यू थिंक गाइस टनल होनी चाहिए कि अपग्रेडेड ब्रिज होना चाहिए
0: हाय
2: गुड आफ्टरनून सैंडी
1: जी
2: अच्छा ये पिछले 3 इलेक्शन से सुन रहा हूँ कि इलेक्शन जब आता है तो
0: हाँ तभी ये चालू हो जाती बात करना
1: या
2: हाँ करीबन 7.8 मिलियन खर्च हो गए हैं ब्रिज के टेस्ट करने या बात करने में
0: हाँ सही बोल रहे हो
1: वाओ
0: सिर्फ बात करने में ही ये लोग ने 8 मिलियन और रफली उड़ा दिए
2: हाँ करीबन 8 मिलियन 7.8 ऐसा कुछ फिगर है अभी बात करके उतना खर्च कह दिया काम अब काम एक दिन नहीं शुरू हुआ
0: अभी और 2 मिलियन उड़ाएंगे अभी मेरे को लग रहा है
2: और जाते जाएगा
0: हाँ अभी वो और एक बिजनेस केस बना रहे ना वो फ्री में थोड़ी बनता है
1: या
0: उसमें भी लोग लगाएंगे काम करने को
1: हाँ 100%
2: ये इलेक्शन ये है वो मारेंगे कि ये बन जाना चाहिए वो बन जाना चाहिए यही होता है 3 इलेक्शन से
0: मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी ब्रिज विज बनाने के इसमें लगना ही नहीं चाहिए अभी डायरेक्ट तुम गाड़ियों को ही अपग्रेड कर दो
2: उड़ने वाली गाड़ियां बना भी दिया अगर बना दिया 6 लाइन वहाँ पे यहाँ से 3 लाइन कहाँ है वहाँ 6 लाइन कैसे चलेगा
0: हाँ वो भी है ना क्या ही पॉइंट बनता है ना फिर
1: ट्रैफिक मैनेज फिर भी नहीं होने वाला है
2: हाँ ट्रैफिक अगर अंडर उठा ना बनाएंगे तो अगर 6 लाइन बन गया मान लो ये तो बोटल नेक हो जाएगा वहाँ ना
0: सही बोल रहे हो आप
2: ट्रैफिक जाएगा नहीं ट्रैफिक और जेम हो सकते आएगा
1: सही में टनल में तो वैसे भी फ्रीक्वेंसी भी नहीं चलती है इतना स्टक होके क्या सुनोगे
2: नहीं तो अभी तो पुरानी पे चलती है जो कुछ चलती है अगर नया भी बनाएगा तभी भी वही फ्लो रहेगा फ्लो वही रहेगा
0: नहीं सही है जय भाई थैंक यू सो मच आपने यहाँ पे कॉल किया और शेयर किया
1: थैंक यू जय
0: थैंक यू मिशन बे टू डेवनपोर्ट का एक ब्रिज बनना चाहिए संजू बोल रहे
1: मिशन बे टू डेवनपोर्ट इंटरेस्टिंग
0: सही है या और भी कोई ऐसे आइडियाज है प्लीज भेजो यहाँ पे यार वी विल पास इट ऑन
1: सिटीज इन नॉर्थ में
0: सही है यार मेरे को तो लगता है कि मिशन बे से ऐसा लेकिन मिशन बे हाँ वही देखना पड़ेगा ऐसा कुछ तो भी ऐसा खुराफती करना पड़ेगा कुछ हटके कुछ अलग
1: व्हाट इज योर सजेशन आप होते तो आप क्या करते आप क्या सजेस्ट करते
0: नहीं है ना वो इसलिए वहाँ पे नहीं है

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: डिब्बा खुल गया
3: भरत भाई, टिफिन खुल गए छे।
4: संजना का डिब्बा खुल गया।
5: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
6: डिब्बा खुल गया।
5: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
9: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power Women's Refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
10: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
11: This is your business.
12: This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software.
11: This is managing cash flow.
12: This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software.
11: These are your customers paying you.
12: These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom.
11: Supercharge your business today with the help of Xero.

0: कॉकटेल 2 का ये गाना आप सुन रहे थे ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. कॉकटेल 2 देखी है सैंडी आपने? नहीं ना.
1: कॉकटेल 2 नहीं देखी मैंने. मैंने वैसे ओटीटी पे एक मूवी जरूर देखी है रुस्बे.
0: मैंने शुरू की कॉकटेल 2 देखने की. बहुत शाहिद कपूर का मस्त रोल है उसमें.
1: ओके, कैसी लगी सो फार?
0: मैं तो स्टार्टिंग का 10-15 मिनट देखा मैंने. मेरे को मजा आया.
1: ओके,
0: पहले 15 मिनट देखने को. बढ़िया. आई एम होपिंग टू फिनिश इट सून.
1: 15 मिनट एक दिन में देखिए ये.
0: या सी नो वंडर मुझे एक ही टाइम पे 3 घंटे मूवी में देखता हूँ तो मेरे को पकता है. बट हैविंग सेड दैट ओडिसी इज अ वेरी गुड मूवी.
1: ओह यार, तुमने देख ली वो क्रिस्टोफर नोलन की? नाइस यार, मेरी वो सिनेमा में अभी मिस हो गई है. आई एम नॉट श्योर कि वो अभी भी सिनेमाज में है कि नहीं है. इफ इट इज देयर तो
0: ये एक
1: होपफुली आई विल.
0: एक मैसेज आया यहाँ पे संडिया, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया. एक मैसेज आया, हम लोग हाईवेज के बारे में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे आया मैसेज, नितिन गडकरी को 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए, सब हाईवे ब्रिज एंड टनल्स मस्त बन जाएगा. सही है एक्चुअली. अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में करना चाहिए ऐसा.
1: हाँ, फ्री ट्रेड में उसी को भेजेंगे.
0: हाँ, बट फिर याद रखो यहाँ पे भी एथेनॉल आ सकता है.
1: एनीवे, कमिंग बैक टू मूवीज.
0: अच्छा,
1: सो जो मूवी देखी है इसका नाम है, एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी मूवी, इसका नाम है रिमार्केबली ब्राइट क्रिएचर्स. सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ लेडी जो एक्वेरियम में जाती है एंड वहाँ पे एक्वेरियम में काम किया है उसका क्लीनिंग करना. रात को जब विजिटर्स चले जाते हैं सब, तो वो रात को आती है क्लीनिंग करती है. उस एक्वेरियम में एक वो है, ऑक्टोपस है. सो वो उसकी और ऑक्टोपस की दोस्ती है बेसिकली. ऑक्टोपस की कहानी है, ऑक्टोपस की अपनी नरेशन है जो वो देख रहा है एंड हु इज़ थाउजेंड्स ईयर ओल्ड. एंड ये जो लेडी है इसका रोल

0: अब अपन टू के बारे में क्या ही बात करें, बट या दिस इज रियली गुड मूवी, गुड वॉच. अगर आप इसको देखते हैं तो यू डेफिनेटली गोना एंजॉय दिस मूवी. ब्राइट क्रिएचर्स इसका नाम है. सो एवरी ऑक्टोपस इज़ नॉट डेंजरस, ऐसा इसमें दिखाने की कोशिश की है. बट या हमारा पन टू क्या सदमा में को लगता है रुजबे को अभी बहुत देर तक लगेगा.
1: नहीं, थोड़े टाइम तक तो होगा वो. लेकिन anyway, हम यहाँ पे आपके लिए रक्षाबंधन का कॉम्पिटिशन लेकर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पे भी आप रक्षाबंधन का कॉम्पिटिशन इसमें पार्ट ले सकते हैं. एंड इसके साथ साथ हम बोर्डिंग कॉल भी हो रहा है ना.
0: हाँ भाई, हम बोर्डिंग कॉल भी हो रहा है. हम बोर्डिंग कॉल में क्या होगा, बोर्डिंग कॉल का क्यू टू कॉल आपके लिए यहाँ पे 5 बजे के बाद प्ले होने वाला है. जैसे ही प्ले होता है आपको हमारे कॉम्पिटिशन पेज पे जाना है, जो आपको हमारी रोवा ऐप पे मिलेगा. हम बोर्डिंग कॉल उसके ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पे जाएगा. वहाँ पे 5 बजे के बाद जो है वहाँ पे बोर्ड नाउ आपको लिखना है. एक ही वर्ड आपको हमेशा लिखना है वहाँ पे. एंड जस्ट सबमिट इट एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. क्या जीत सकते हैं रुजबे,
1: क्या जीत सकते हैं?
0: हाँ,
1: टिकट जीतेंगे ना, रिटर्न टिकट एंड $1,000 उड़ाने के लिए आपको मिलने वाले हैं.
0: स्पेंडिंग मनी भी आपको मिल रही है $1,000
1: की. जी, तो मतलब रिटर्न टिकट्स टू वनुआटू मिलने वाले आपको विद सोलोमन एयरलाइंस, और प्लस आपको $1,000 का स्पेंडिंग मनी भी मिलने वाला है. तो फटाफट इसमें पार्ट लीजिए आप. सिंपल ही, मतलब अभी क्या करेंगे आप, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, आपको रुकना पड़ेगा बोर्डिंग कॉल के लिए
0: 5 बजे के बाद. 5 बजे के बाद और डेफिनेटली 5 से 6 के बीच में किसी भी टाइम पे आपके लिए ये जो बोर्डिंग कॉल है, ये इसका क्यू टू कॉल जो है डेफिनेटली प्ले होता है. कॉम्पिटिशन पेज का लिंक अगर आपको चाहिए तो BC लिख के भेजिए 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा.
1: जी, और हमने हाईवेज के बारे में थोड़ी बात की थी यहाँ पे कि यू नो वो नया ब्रिज बनने की बात हो रही है, ये सब हो रहा है. तो उसमें एक बहुत ही पैशनेट इंसान है, वो मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे. उन्होंने पहले भी एक मैसेज लिखा, वो नहीं पढ़ने वाला हूँ मैं, लेकिन अभी लिखा है, प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग आर हार्ड अर्न मनी एंड सेव मनी. वी डोंट वॉन्ट एनी ब्रिजेज और टनल्स बिकॉज एट द एंड वी हैव टू पे इट एज रेट्स. जो इनका कंसर्न है वो काफ़ी सही है. रेट्स से ही ये सारे पैसे फिर निकलते हैं ना. एंड ओवर द वीकेंड सैंडी को भी काफी रियलाइजेशंस हुए ना कि रेट्स में रेट्स के पैसे कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं
0: और क्या हम वो सर्विसेज यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं.
1: जी,
0: जिसके लिए आप रेट्स पे कर रहे हो.
1: तो वी वुड वांट टू आस्क यू ऑल्सो, अगर आपने भी रेट्स बिल पे किया है आपका रिसेंटली या करने वाले है या रिसीव किया है आपने, क्या आपको पता है कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, किस किस चीज का पैसा ले रहे हैं रेट्स में.
0: Are you aware?
1: हम आपके साथ यहाँ पे एक क्विक फायर खेलने वाले हैं यहाँ पे.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Attention everyone. हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में। उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
0: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजंस। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर। Accurate traffic.
3: Auckland, your ring starts here.
4: Fine, a windy overnight for Auckland. A low of 7 on the northern from the city to Silverdale, taking 51 minutes. It's heavy heading north from the Harbour Bridge to Esmond Road. On the northwestern from town to Massey, 28 minutes. Just heavy west through Rosebank. Southern to Monaco, 35 and Drury, 54. Just a bit of heavy traffic heading north from Ellerslie-Panmure to Green Lane. And the southwestern slow Puhinui Road to the southern.
3: Custom fine jewellery direct from the maker. Visit diamondfactory.co.nz today.
0: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
5: Blood and plasma are always precious, but in wintertime with sickness about, we need even more donors to fill the gaps others leave. If you can, please book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
6: Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
7: When dads come in here, it's like a kid in a toy shop.
8: Dad loves to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. The new water blaster, new drill, new barbecue.
6: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad.
9: A Zito 18-volt drill driver and speaker kit, $99.98. Stanley 16-inch open mouth tool bag, $41.98. Tradie fitted trunks pack of 6, $40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
10: Bunnings Warehouse.
9: Lowest prices are just the beginning.
11: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
12: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds, like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
13: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी, अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।

0: ऊपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम लेकर आते हैं सुपर से ऊपर ये शो और काफी सारी बातें भी हम करते हैं आपके साथ
2: या कुछ इवेंट्स के बारे में जानकारी भी आपको देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑकलैंड भक्ति सत्संग आपके लिए ग्रैंड थ्री कॉर्नर कीर्तन नाइट लेके आ रहे हैं. फ्राइडे 21 अगस्त को वैदिक सेंटर में ये होने वाला है पापटवर में. टिकट सिर्फ $20 की है, तो आप भी इसका हिस्सा जो है ये आप ज़रूर बन सकते हैं. एंड वैसे इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं तो रुजबे कल ही खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स ये इवेंट होने वाला है, विच गोना बी अनदर अमेजिंग इवेंट आई विल से. न्यूजीलैंड फैशन वीक इटसेल्फ यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट होता है, हर साल होता है यहाँ पे. एंड इस बार रैंप वॉक जो करेंगे वो ट्रेडिशनल खादी वियर जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इंडिया की.
1: कल होने वाला है वो,
2: कल होने वाला है जिसमें हेडलाइन करने वाले हैं शो को इंडिया के बहुत ही फेमस फैशन नेम है राजेश प्रताप सिंह. वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वैसे डिज़ाइनर है. उन्हीं के साथ कुछ और ग्रुप परफॉर्मेंसेज भी वहाँ पे होने वाली है जो कि रैंप वॉक होंगी. सो कल 8:30 बजे शेड 10 जो कि क्वींस वॉर्क पे है वहाँ पे ये होने वाला है. तो इसकी टिकट्स आप खरीद लीजिए nzfashionweek.com पे जाके.
1: जी, इसके टिकट्स आप ले लीजिएगा. इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज 5 बजे के बाद आपके साथ हम यहाँ पे गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है देसी और नॉट सो देसी. एक बिहेवियर के बारे में हम आपको बताते हैं और आपको बताना है मैसेज करके या फिर कॉल करके कि आपको क्या लगता है कि इज दिस देसी बिहेवियर और इज दिस नॉट सो देसी बिहेवियर.
2: और अगर आपने कभी कुछ रिसेंटली ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो मैसेज कीजिए 5599 पर.
1: हाँ, जिसके बारे में आपको अगर बात करनी है हमारे फेसबुक ग्रुप को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं. अनफिल्टर्ड क्रू हमारे ग्रुप का नाम है फेसबुक ग्रुप का, जहाँ पे हम लोग ऐसी अनफिल्टर्ड बातें करते हैं काफी बार.
2: तो वहाँ पे भी जाके अनफिल्टर्ड आंसर्स भी आपको वहाँ पे मिलते हैं. तो वहाँ पे भी जाके आप पोस्ट कर दीजिए. अगर आपका कोई ऐसा सवाल है तो वहाँ पे आप एज एनोनिमस भी पोस्ट कर सकते हैं. इज अ फेसबुक ग्रुप अनफिल्टर्ड क्रू. एंड आज 6 बजे के बाद आपके लिए यहाँ पे ट्रेंड मेकर्स में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं डेविड धवन को.
1: डेविड धवन, मुझे लगा ही था, मैंने प्लेलिस्ट देखी. आई थॉट दैट दिस इज डेविड धवन हिट्स.
2: या डेविड धवन का कल बर्थडे था. वैसे कल सैफ अली खान ने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है.
1: ऑलराइट, वाओ, अ लॉट ऑफ बर्थडेज एक्चुअली दिस वीक ना,
2: दिस मंथ. कितने बर्थडे थे. सो या डेविड धवन का आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सैफ अली खान का फिर किसी दिन करेंगे. बट उनके मूवीज के गाने आज आप यहाँ पे सुनने वाले हैं. तो इमेजिन कीजिए फुल फन सॉन्ग्स रहने वाले हैं,
1: एकदम चखना मखना ऐसे टाइप के टपोरी आवर. इट्स गोना बी अ टपोरी आवर.
2: या
1: सो या आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में डेविड धवन को शाउट आउट. लेकिन ध्यान देते मतलब सुनते रहिए क्योंकि कभी भी बोर्डिंग कॉल वाला क्यू आपके लिए बच सकता है.
2: ये भी आपके लिए कभी भी प्ले हो सकता है गाइस. सो रिमेंबर, सुनते रहिए 5 बजे के बाद ये आपके लिए कभी भी प्ले होगा.
1: फिर आपको करना है ना, रोवा ऐप पे जाना है.
2: रोवा ऐप पे आपको जाना है. अगर आपको वैसे लिंक चाहिए, रोवा ऐप पे आप नहीं जाना चाहते, जस्ट टेक्स्ट BC ऑन 5599. यू विल गेट द कॉम्पिटिशन पेज लिंक एज वेल.
3: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Hum, accurate traffic.
2: Experience fun at Snow Planet.
3: Fine and windy overnight for Auckland. A low of 7 on the northern. It's a bit heavy heading north over the Harbour Bridge from Town to Silverdale. 49 minutes on the northwestern. Heavy westbound St Luke's Road to Te Atatū. 2. On the southern, Town to Manukau, 33 minutes. Drury, 51. Just heavy in both directions between Penrose Road and Green Lane. And the southwestern slow Pukenui Road to the southern and heading north around Mangere Bridge.
2: Ski, board, slide, tube. Fun for the whole family at Snow Planet. Not a million miles away.
4: Kya baat hai us khane mein jo pure ghar ko dining table par le aaye. Wo khushbu aur wo asli masalo ka swaad. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken, korma ya chana masala. Recipes chahe vegetarian ho ya non-vegetarian. Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain. To intezaar kis baat ka? Aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye. Shan Foods, asli swaad har ghar ke liye.
5: Hello, officer. What's the problem? I mean, I might have been going a bit fast back there, but I know these roads like the back of my hand. I've been driving them for years. The folks who crash on these bends are like out-of-towners. That's not me. I'm a local.
6: Man, mid-40s. He's taken the corner too fast and slid off the road. Suspected head and spinal injuries. Ambo required. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
7: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe basin mixers $149. American standard toilet suite $349. Luxury clashish wall vanities $399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
8: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 p.m. Vedic Center Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jays Fresh and Valley Fresh Papatoi or Shu Prasad, Kelston.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
10: हाँ। अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
10: मिसेस सिंह
11: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
0: हम टाइम चेक Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. A new Waitsamata crossing for Auckland is one step closer to reality. Transport Minister Chris Bishop has revealed a detailed business case will be launched to fully understand what's needed for delivery. He says it's likely to be New Zealand's largest and most expensive infrastructure project ever.
14: Our fiscal position, our economic performance and our reputation as a modern, functional first world economy depends on getting it right.
13: Lyttelton Port has confirmed it will invest $821 million into a wharf and container terminal expansion. The project will be funded through a combination of debt and equity from ratepayer-owned Christchurch City Holdings Limited. A new member's bill aims to tackle price gouging at the checkout. The Greens want to make it illegal to charge prices that are excessive compared to supply costs. Co-leader Chloe Swarbrick has appealed directly to the government.
15: To support something that has the backing of 86% of New Zealanders based on the research of Consumer New Zealand, who notably also have helped us and worked with us on the creation of this bill today.
13: Ferrari's first all-electric car has sold for a record-breaking figure. The custom-built Luce went for nearly $70 million New Zealand dollars, the highest ever amount for a new car at auction. To sport, the NRL rumour mill is in full swing. Across the Tasman, News Limited is reporting Panthers star Nathan Cleary is open to a return to New Zealand. Last month, Warriors coach Andrew Webster was quick to squash any talk about it. Rugby league with Machinery House in a league of their own. On almost 7 months since his last win, golf's world number one, Scottie Scheffler, has emphatically ended that streak with an 8-shot win at the St Jude Championship.
16: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari good brands nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
18: Feels like 8 degrees, 10.6 degrees abhi aap mehsoos kar rahe hai. 5 degree tak aaj low hone wala hai, so it's going to be a chilly night. 5:49 ko hoga sunset, southerlies ka saath hai aur fine rahega weather. Kal ka din bhi mast sa rahega. Tomorrow sunrise will be at 7 a.m. sunset hoga kal 5:50 ko.
16: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
8: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rusby.
19: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
18: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Good evening. Hi, आपका स्वागत है.
20: Good evening, रुस्बे, कैसे हो तुम?
18: मैं बढ़िया, सैंडी. आप कैसे हो यार?
20: बढ़िया, बढ़िया. Life is good. अभी इस हफ्ते और अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते भी केतन यहाँ पे नहीं है, because lunch box वरी कर रहा है. अवीज है, because केतन को रिक्वेस्टेड लीव लेनी पड़ रही है, मैंडेटरी लीव लेनी पड़ रही है उसको.
18: Right.
20: वो बोला कि जाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतनी छुट्टियाँ मेरे को अभी लेनी पड़ेंगी. होता है ना, हमें दिसंबर तक कुछ छुट्टियाँ कंप्लीट करनी होती है.
18: That's right.
20: रुस्बे भी नेक्स्ट वीक. हाँ, रुस्बे भी नेक्स्ट वीक. तुम कब से जा रहे हो छुट्टी पे?
18: वो अभी चेक कर रहा हूँ मैं. तो मैं हूँ छुट्टी पे एनुअल लीव से फ्रॉम, ओह माय गॉड, अमेजिंग. मैं हूँ 7 सितंबर से लेकर 18 सितंबर.
20: 7 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक तुम छुट्टी पे हो.
18: जी.
20: या मेरे को लगता है ये ना बहुत परफेक्ट टाइम है. इलेक्शन ईयर है ये.
18: अच्छा, तो छुट्टी लेने?
20: नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन ईयर में बहुत सारे डिस्कशंस हो रही है, डिबेट्स हो रही है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. एक ऐसा तो पॉलिसी आना चाहिए जहाँ पे आप अपनी छुट्टियाँ किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं. मुझे ऐसा सीरियसली लगता है, नॉट ओनली इन अ जोकिंग मोड भी नहीं, मुझे सीरियसली लगता है. कोई कोई होगी आपके कोलीग ना जो नेगेटिव में जा रहे होंगे, जिनको होगा कि मिल ही नहीं रही है, उनको छुट्टी लेनी है लेकिन वो ले ही नहीं पा रहे हैं छुट्टी, उनको एक और वेट करना पड़ेगा साल छुट्टी लेने के लिए. एंड कुछ लोग हैं जो छुट्टी पे जाना ही नहीं चाहते. आई एम टॉकिंग ऑफ दैट कंपैरिजन. जो जाने नहीं चाहते उनको ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है कि यार क्या करे, जाना पड़ेगा अभी छुट्टी पे, छुट्टी लेना नहीं चाहते. जैसे केतन के साथ भी हुआ, अभी तुम्हारे साथ भी, तुम्हारा मन तो नहीं करेगा छुट्टी लेने का, लेकिन लेनी पड़ रही है छुट्टी.
18: जी.
20: तो देयर शुड बी ऑप्शन, छुट्टी खत्म भी करनी है, छुट्टी लेनी भी नहीं है, टू ट्रांसफर टू समवन एल्स.
18: हाँ, तो बट एक ही कंडीशन पे वो होना चाहिए ना कि मैं ट्रांसफर करूंगा तो मुझे मुझे 1.5 टाइम पेमेंट मिलना चाहिए ना.
20: 1.5
18: थोड़ा सा होना चाहिए ना.
20: व्हाट इज योर टेक गाइस, आपको क्या लगता है?
18: फ्री में कौन ट्रांसफर करेगा छुट्टी में, को एक बात बताओ. इट डजंट मेक सेंस ना, कुछ तो रिटर्न में होना चाहिए.
20: रिटर्न में आपको एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं. दिस इज न्यूजीलैंड,
18: कौन देगा एप्रिसिएशन?
20: देते हैं यहाँ पे. बोनस नहीं होता है.
18: मीडिया वर्क्स की बात क्यों कर रहे हो?
20: अरे सो या, व्हाट इज योर टेक गाइस, कॉल करो या मैसेज करो. क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर सिमिलर नोट पे आपके माइंड में कुछ और है?
18: छुट्टी के बदले क्या क्या होना चाहिए कॉम्पनसेशन,
20: जो नेगेटिव में जा रहा हो उसके लिए क्या कॉम्पनसेशन होना चाहिए? सो या, आप मैसेज करके शेयर कर सकते हैं. एंड ऑल्सो थोड़ी देर में हम देसी, नॉट सो देसी बिहेवियर भी करने वाले हैं. अगर आपके को आप पास कोई सजेशन है कोई हैबिट की, वो भी आप यहाँ पर शेयर कीजिए.

0: You're listening to Humping Bollywood's biggest hit, Sonu Nigam, aur unka ye OG track Bijuriya ka recreated version. Aap sun rahe the abhi on Humping Bollywood's biggest hits. वैसे यहाँ पे हमारे साथ हमारे listener Rocky join in कर रहे हैं और बात कर रहे हैं वो about हमने जो आज अभी topic अभी छेड़ा है Sandy ने
1: leaves के बारे में.
0: Leaves के बारे में कि leave को यार transfer करो किसी और के साथ.
1: ऐसा हो सकता है. तो hi Rocky, कैसे हैं आप?
2: ठीक ठीक, आप बताइए.
0: बहुत ही बढ़िया भाई, बताइए. तो क्या बोल रहे थे आप, क्या कर सकते हैं इसमें?
2: इसमें जिसके पास एक्स्ट्रा लीव है उसके लिए एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, प्रोवाइडेड आपकी कंपनी कोऑपरेट करती है आपके साथ ना. अगर छोटी कंपनी है वो नहीं चाहते भाई आप लीव पे जाओ जेन्युइनली, एंड इफ दे आर डूइंग वेल फाइनेंशियली दे कैन जस्ट परचेस योर एवरी ईयर दे कैन परचेस अबाउट 1 week या 2 weeks लीव. लीगल अभी चेक करना पड़ेगा क्या है, बट डेफिनेटली लॉ था. बट आजकल कंपनी है थोड़ी ठंडन गोपाल हो रही है न्यूजीलैंड में, एज यू नो इकोनॉमिकली रॉकस्टार नहीं है हमारी पहले जैसे.
1: ये आप कैश इन के बारे में बात कर रहे हो क्या?
2: जबरदस्ती कैश इन, परफेक्ट, दैट्स द वन. बट कंपनी आजकल अलाउ नहीं करती है वो, इट्स बिकॉज इट हैज डिस्क्रेशन ऑफ योर कंपनी. आप फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे पास इतनी छुट्टियां ले लो खरीद लो. ये
0: ज्यादा काम है नहीं लोगों के पास, तो कंपनी बोल रही है कि नहीं तुम छुट्टी ले लो हम पैसा ले देंगे.
1: सही है, या परचेज करने का तो है. लेकिन
0: आपका क्या लीव बैलेंस है रॉकी अभी एट दिस स्टेज? एनुअल लीव कितने बाकी है आपके?
2: मेरा अबाउट 22 के आसपास है. मैंने ब्लू बुक करी है क्योंकि मेरे को सितंबर के पहले 20 के नीचे लाना बोला है.
0: बाप रे. तो अभी किधर क्या प्लान है फिर, घूमने का कुछ प्लान है कि क्या है?
2: नहीं, घूमने का तो नहीं है, बस बच्चों की स्कूल हॉलीडेज आ रही है तो बस उसमें ही निकल जाएगा.
0: यही प्रॉब्लम है ना कि लीव्स तो दे रहे
1: हैं
0: कंपनी,
1: ऐसे भी होते हैं
0: लीव्स दे रहे, लेकिन उसका उसमें लीव में पैसा उड़ाने के लिए नहीं दे रहे.
1: तो स्पेंडिंग मनी देना चाहिए जैसे हम यहाँ पे बोर्डिंग कॉल के लिए देते हैं.
0: नहीं, थैंक यू रॉक्स.
2: जल्दी जल्दी अपना मॉर्गेज पे ऑफ करना है सबको, वही टेंशन है क्या होगा इकोनॉमी का.
1: सही है,
0: वही तो. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच
1: रॉकी फॉर कॉलिंग.
0: हाय, आपका भी स्वागत है.
3: हाय भाई, कैसे हो?
0: बस बढ़िया, आप बताइए क्या हाल है आपके?
3: अब बढ़िया, सब चल रहा है. मेरे पास तो कोई छुट्टी नहीं है क्योंकि मैं खुद से ही काम करना चालू कर दिया. लेकिन रीजन मेरे को ये लगता है कि वो आपको फोर्स करते हैं कि छुट्टी ले लो क्योंकि थोड़ा पर्टिकुलर ईयर आप पर्टिकुलर डॉलर्स पे काम कर रहे हो. जब आपका पेरेंट बन जाएगा तो वो एड ऑन हो जाएगा ना, उसमें
0: लायबिलिटी बढ़ती रहती है ना.
1: yeah.
3: तो वो बोलते हैं कि इसको खत्म करो.
0: That's right. Yeah. ये एक दिक्कत है ना उसके कारण. बट एक्चुअली मैं ना हमने
1: सिक लीव के लिए नहीं बोलते ना, ले लो खत्म कर लो.
0: उसमें एक नया रूल ऐसा होना चाहिए कि जिस साल की तुम्हारी लीव जमा हुई है तुम्हें उसी साल के पैसे के हिसाब से, मतलब रेट के हिसाब से तुमको पैसे मिलेंगे, ऐसा क्लॉज अगर डाल दिया समझो. क्योंकि मेरे को जमा करनी है यार, मेरे को ऐसा 2-3 साल की लीव जमा करनी है,
1: मतलब फिर एक साथ कहीं पे जाना है, वर्ल्ड टूर पे
0: 12 हफ्ते. हाँ, 8-12 हफ्ते यार. अभी अपने को अगर इंडिया जाना है तो यार 6 हफ्ते तो किधर जाते पता भी नहीं चलता है,
1: या 5 हफ्ते तो लगते हैं.
0: और फिर इंडिया के साथ साथ देखा 2 और कंट्री अगर करनी है ऑन द वे लेओवर में, 5-5 दिन हो गए हर जगह. तो यार
1: देखो, इंडिया का जब होता है ट्रिप ना, वो हॉलीडे नहीं होती है, इसलिए हम हॉलीडे कर रहे हैं बाली बैंकॉक में. एनीवे,
0: क्या नाम है आपका बाय द वे?
3: राम सिंह,
0: थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. आपका आपके आप तो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब?
3: जी जी.
0: तो कितनी छुट्टियां लेते हो आप साल में, कितने समय से आप सेल्फ एम्प्लॉयड है?
3: अराउंड हो गए 1 साल के आसपास हो ही गया.
0: 1 साल हो गया है, तो अभी कितनी दिन छुट्टियां ली है आपने अभी 1 साल में?
3: छुट्टी तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन काम नहीं है.
1: Basically, it's like leave without pay,
0: but वो छुट्टी थोड़ी यार, वो तो स्ट्रेस है ना फिर.
3: नहीं, काहे का स्ट्रेस यार?
0: अच्छा, स्ट्रेस नहीं है वो,
1: खुद का काम है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड है.
0: अरे नहीं, बट अगर मैं खुद का काम कर रहा हूँ तो मेरे को स्ट्रेस होगा ना, अरे आज काम नहीं है, ओ माय गॉड नो मनी टुडे, ऐसा स्ट्रेस नहीं होता क्या?
3: ऐसा कभी नहीं हुआ.
0: अच्छा,
3: ऐसा तो कभी नहीं हुआ जब मैं जॉब करता था.
0: जॉब करते थे,
3: लेकिन एक चीज़ है, मैंने 3 साल पहले माइटन में एज अ कैजुअल वर्क काम किया था, तो वहाँ पे एक बंदे ने 1 साल की छुट्टी ली थी, वो 1 साल के बाद जॉब पे आया.
0: हाँ वो करियर ब्रेक होता है, वो ऑप्शन मिलता है करियर ब्रेक का भी कुछ कुछ कंपनीज में होता है. या
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग.
0: अभी आपके लिए हम एक गाना प्ले करेंगे, फिर कुछ मैसेजेस प्ले करेंगे जिससे हमारा पेट पलता है, और फिर उसके बाद हम आपके साथ खेलेंगे यहाँ पे देसी और नॉट सो देसी.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
6: Fly Solomon Airlines. Fine and windy overnight for Auckland. A low of 7 on the northern. It's heavy heading north over the Harbour Bridge from Town to Silverdale. 49 minutes. The northwestern slow. Westbound St Luke's to Te Atatū. The southern from Town to Manukau. 33 minutes. Drury 53. Just heavy in both directions. Penrose Road and Green Lane. Southwestern, there's a breakdown in the Waterview Tunnel. The left northbound lane is blocked.
7: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates. Conditions apply. FlySolomons.com.
8: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
9: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
10: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
11: डॉक्टर ने क्या बोला?
12: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
11: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
13: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Sheera from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
14: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HEERA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. Northernville Advisory Limited Trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
15: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
16: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
17: Power Drive at 5.
18: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
19: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. वैसे देखो ऑस्ट्रेलिया से एक और बार हमें अभी एक कॉल आया है यहाँ पे, उन्होंने भी शेयर किया। वो यहाँ पे थे जब ही अर्थक्वेक हुआ था क्राइस्ट चर्च में, एंड वहाँ पे फिर उनके साथ थोड़ी क्या बोलते हो इन अनफेयर हुआ था उनके साथ, जहाँ पे बाकी सबको कंपेंसेशन दिया था बट उनको नहीं दिया था कंपेंसेशन। उनके पास 3 महीने की लीव थी वो टाइम पे, बट एनी वे आई थिंक नाउ ही इज इन अ बेटर प्लेस। एनी वे
20: He's in Australia right now.
19: Better place.
20: Just to I know. Just to clarify. Yeah.
19: Love you guys in Australia. Just letting you know, we're open for sponsorships.
20: Yeah.
19: Advertise your business here.
20: ऑस्ट्रेलिया में भी काफी सुनते हैं, हाँ बहुत फायदा होगा अगर वहाँ से आप बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करते हो तो।
19: अभी आप देसी नॉट सो देसी में बताओ आज क्या है?
20: जो बोलने वाली हूँ, बाय समथिंग एक्सपेंसिव बट टेलिंग एवरीवन इट वाज ऑन सेल।
19: Okay, so buying something expensive, but सबको बोल रहे हो आप कि मैंने सेल पे लिया है.
20: या फिर buy something on sale and telling everyone this is really expensive.
19: हाँ, ये मैं हूँ.
20: मैं उल्टा हूँ. So is it desi behavior or not so desi behavior?
19: कि buying something expensive and saying it's on sale.
20: Yeah. और इसके साथ रिलेटेड एक और मुझे लगता है वो भी आप बताइए देसी है कि नॉट सो देसी है. अगर आपको कोई जो आपने पहना है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट देता है कि यार ये बड़ा सही तुमने पहना है, डू यू से थैंक यू? इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, यू से ओ ये मैंने यहाँ से लिया है, ये मैंने यहाँ से लिया है.
19: ये आप करते हो बहुत. आपको थैंक यू बोलना नहीं आता ना सीधा सीधा.
20: या, या, या.
19: हाँ, so, आप एक्सप्लेन करने बैठते हो कि अरे ये मैंने वहाँ पे लिया है, यहाँ पे वो किया, वो किया.
20: तो शायद अगले को पसंद आया तो उसको बता दो ना कि यहाँ से लिया है.
19: तो उसको कॉमन क्यों करना है लेकिन बोल के?
20: इट्स ओके यार, इतना नहीं सोचते. बढ़िया.
19: अच्छा,
20: इज इट देसी बिहेवियर और नॉट सो देसी बिहेवियर?
19: ऐसा बोलना कि भाई मैंने ये यहाँ से लिया है.
20: हाँ, थैंक यू नहीं बोलना लेकिन थैंक यू की जगह ये बोलना.
19: मुझे लग रहा है कि इट्स,
20: या फिर तुम्हारे बाल बड़े अच्छे लग रहे हो, हाँ आज मैंने धोए है.
19: This is sandy behavior. I don't think it is desi or not so desi.
20: अरे करते हैं, काफी लोग ऐसा करते हैं ना.
19: Too much information दे देते मतलब.
20: Yeah, मतलब instead of saying just thank you, just say something else.
19: 0800-004-866 is the number. आप यहाँ पे call कर सकते हो. अगर ऑस्ट्रेलिया से call करना है तो क्या number है सैंडी, वो भी बता दो ना यार.
20: ऑस्ट्रेलिया से अगर call करना है. Very good point, Rusbe. तुम्हें इतना सिखाया, तुम्हें नहीं पता किस नंबर पे कॉल करना है.
19: Hey Google.
20: No.
19: Call
20: not even Google. Hotline पे आपको कॉल करना है ना. Hotline का नंबर बताओ क्या है. दीवार पे लिखा है उधर.
19: 09956-4968. 09956-4968. Anyway,
20: अगर आपको overseas से call करना है, otherwise just Google यार.
19: जो यहाँ पे है वो call करो पहले यार.
20: 0800 call करवा रहे हो तुम. 0800-004-866. Is this desi behavior या फिर this is like not so desi? सभी ऐसा करते हैं कि जब कोई किसी को compliment देता है, instead of saying thank you, just keep on explaining कि आप मतलब कहानी में चले जाते हो कि यहाँ से लिया था, वहाँ पे ये सेल थी, ये हुआ था.
19: और
20: वो
19: कोई
20: हुआ
19: ऐसा
20: था?
19: करता है क्या? मेरे को ये जानना है. 0800-004-866 क्या आप भी ऐसा करते हो? क्योंकि मैंने सैंडी को देखा ये बहुत करते हुए. आई थिंक इट्स अ मोर गर्ल बिहेवियर, मेरे को ऐसा लगता है.
20: तुमने कभी नहीं किया है क्या? तुमने सिर्फ थैंक यू बोला है क्या आगे से?
19: मैं या तो थैंक यू बोलूंगा या बोलूंगा टेल मी समथिंग आई डोंट नो. सो कभी जिंदगी में मेरे को पिंपल नहीं आए चेहरे पे, अभी आने लग गए. हाँ ना यार, ये एनीवे आप जल्दी कॉल कीजिए यहाँ पे और बताइए कि आप
20: मैसेज करके बताइए. 5599 इज अ नंबर. रिमेंबर, हम बोर्डिंग कॉल का जो क्यूट कॉल है ये आपके लिए यहाँ पे कभी भी प्ले हो सकता है. तो या उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड.
19: तो अभी रुकना है फोन के लिए कि नहीं रुकना है? नहीं रुकना है ना?
20: नहीं रुकना है.
2: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
21: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
22: मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए यहाँ पे Power Drive at 5 जारी है और अभी मौका है. You can give us a call to participate in Raksha Bandhan competition.
4: Yes, Raksha Bandhan का competition है जहाँ पे अपने sibling का आपको performance review देना है. अपने sibling के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है. You know, आपके वो चाहे biggest supporter थे या फिर सबसे ज़्यादा annoy किया है आपको, हमेशा आपको trouble में डाला है या trouble से निकाला है, कुछ भी है. कॉल नाउ 0800 हम एंड आपका नाम इस ड्रॉ में चला जाएगा जहाँ पे आप $250 कैश जीत सकते हैं. जो विनर्स हैं इनका नाम 28 अगस्त, जो कि रक्षाबंधन का दिन है, राखी का दिन है, उस दिन अनाउंस किया जाएगा.
3: मेरे को आज ये जानना है कि काफ़ी बार सिबलिंग्स में ये होता है ना कि उन लोग को कंपेयर करते हैं उनके ही साथ, मतलब और वो टीचर्स काफ़ी बार करते हैं कि स्कूल में, क्योंकि अगर आप छोटी बहन मिडिल ना,
4: हाँ,
3: तो आपको ऐसे बोलेंगे कि अरे तेरी बड़ी बहन, आपको तो बोला ही होगा बहुत बार,
4: बहुत बार बोला है,
3: तेरी बड़ी बहन देख कितनी सिंसियर है, कितनी अच्छा पढ़ाई करती है.
4: शी वाज अ हेड गर्ल.
3: हेड गर्ल थी.
4: या नो यार, तभी तो ज्यादा सुनना पड़ता था मुझे.
3: ओह गॉड,
4: या बहुत एक्सपेक्टेशन हाई कर दी.
3: क्या ऐसे सुनना पड़ता. फिर आप घर पे आके क्या बोलते थे उसको, कह रहे थोड़ा कम करना.
4: घर वालों को तो पता ही था ना.
3: नहीं
4: इतना नहीं मैं बोलती थी, मतलब सिस्टर के साथ ऐसा रिस्पेक्ट वाला था और भाई के साथ ऐसा वो वाला था, यू नो तुम कुछ भी बोल सकते हो, मतलब मोर ऑफ फ्रेंड्स टाइप.
3: राइट राइट,
4: ऐसा था. तो सिस्टर से थोड़ा वो होता था, थोड़ा
3: डर था. हेड गर्ल भी थी वो.
4: हाँ,
3: हेड गर्ल से वैसे भी डर होता है. बट आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके जो दोस्त है स्कूल में वो आपको आके बोल रहे कि अरे यार तेरी बहन को थोड़ा बोलना कि मेरे को थोड़ा जाने देना?
4: हाँ, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, लेकिन ये कंप्लेन करते थे मेरे फ्रेंड्स, जो मेरी पहली
3: बहन बहुत स्ट्रिक्ट है.
4: नहीं, कंप्लेन मेरे बारे में करते थे, मेरी बहन को आज इसने ये किया क्लास में, आज टीचर ने इसको ये बोला क्लास में.
3: ओह माय गॉड. हाय, आपका स्वागत है.
5: हाय सैंडी. हाय रुस्बे.
4: हाय,
3: बोलो ओमकार.
5: मेबी आई एम नॉट क्वालिफाई फॉर दिस क्योंकि मेरी तो कोई सिबलिंग नहीं है यार.
3: अरे तुम भी सिंगल चाइल्ड हो क्या?
5: हाँ भाई, तू कौन का?
3: हाँ ना, मैं भी यार, मेरे को भी बहुत मिस आउट होता है यार ये
4: वाले. रक्षा बंधन में ना ऐसा कंपटीशन करेंगे जो जिनकी सिबलिंग नहीं उनका कुछ. या
5: तो
3: रक्षाबंधन आ रहा है, याद रखना.
4: देखो मैं तो इधर से तो धागा ही जाता है, उधर से गिफ्ट आता है, ये याद रखना. सही है.
3: नाइस, तो तुमने ये बोलने के लिए कॉल किया?
5: नहीं मतलब बहन तो है वैसे.
3: हाँ,
5: ऑब्वियसली मेरी मौसी की बेटी जो है वो ऑब्वियसली बहन ही है. तो यार अगर मैं कोई ऐसे इंसिडेंट बताऊं जो अगर आई डोंट मतलब मालूम नहीं, लेकिन ऐसे बता सकता हूं क्योंकि क्वालिफाई होना हो, लेकिन फिर भी.
3: हाँ हाँ, अरे
5: तो मेमोरी होती है.
3: अरे मेमोरी है, मेमोरी तो शेयर करनी है ना भाई. हाँ बताओ फिर क्या. वो भी बहन ही है यार, अपन वो उसको कजिन सिस्टर ही बोलते हैं.
4: इट्स द सेम थिंग.
5: एब्सोल्युटली.
3: हाँ, तो सिस्टर है ही उधर.
5: तो यार हाँ, तो वो ऐसा था कि मतलब आई रिमेम्बर कि वो मैं पुणे में रहता था, तो वो थोड़ा सा दूर रहती थी पुणे से. तो स्पेशली फॉर राखी के लिए वो आते थे हमारे घर और राखी बांधना है वगैरह ऐसे. तो जब वो आने मतलब अगर वो घर आ रही है तो मैं उस दिन स्कूल नहीं जाऊंगा. मतलब वैसे भी छुट्टी रहती थी लेकिन हमारा कभी छुट्टी है नहीं है. लेकिन मैं मतलब नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उस दिन, कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू कम और ऐसे. तो फिर और वो जो है वो बोल रही है कि तो मतलब मम्मी बोल रही है कि तुम छुट्टी क्यों ले रहे हो. मैंने बोला कि नहीं, वो आने वाले तो मैं छुट्टी लेना है. और फिर एक दिन ऐसे हुआ कि वो आई नहीं पाई क्योंकि कुछ रीजन हो गया. तो मैं यार रो रो के मैंने पागल हो गया. तो फिर मम्मी बोली ठीक है एक काम करेंगे, हम उनके घर जाएंगे आज. तो ये नया रिवाज हो गया और तब से ऐसे होने लग गया कि हम ही जाने लग गए. सो That incident changed everything. So, तब से,
4: Very nice.
3: क्या बात है?
5: One of the memory I have.
4: Yeah. Even मैं भी अपने cousins के घर जाती थी राखी बांधने के लिए, but not on the same day. So we would go like Sunday, उससे पहले Sunday या बाद के Sunday, उससे पहले वाले usually हम Sunday को जाते थे.
3: Right.
4: And cousins को राखी बांधने के लिए, because on the day छुट्टी नहीं हुआ करती थी ना, late शुरू होता था school.
3: Oh, अच्छा ऐसा होता
5: था. बिगड़े हैं तो फिर पेरेंट्स को काम नहीं तो वही लेके जाएंगे आपको, तो फिर अगर उनको काम है तो क्या करेंगे।
3: मेरे को एक्चुअली भी याद नहीं है रक्षाबंधन की छुट्टी होती थी स्कूल में
4: यार, हमारा स्कूल तो लेट शुरू होता था लाइक आई थिंक 2 आवर्स 3 आवर्स
3: महाराष्ट्र में छुट्टी होती थी मेरे को लग रहा है।
4: अच्छा, इन्हें पंजाब में नहीं थी,
3: पता नहीं।
5: पूर्णिमा,
3: हाँ राखी पूर्णिमा, हाँ शायद रक्षाबंधन ऐसा कुछ।
5: anyway, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है ना, आई मीन वन ऑफ, आई रिमेम्बर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनीवन कैन करेक्ट मी, दिस इज वन ऑफ द पब्लिक हॉलीडेज के लिए मालूम नहीं, क्योंकि माँ बाप तो बिजनेस है तो उनका तो छुट्टी का कोई बात ही नहीं है। छुट्टी हमारा था वेनर्सडे को छुट्टी,
3: नहीं पब्लिक हॉलीडे नहीं होता था, मेरे को नहीं लग रहा है पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है,
4: नहीं होता
3: पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है। या बट थैंक्स ओमकार, थैंक्स फॉर शेयरिंग मैन,
4: या थैंक्स फॉर योर कॉल,
5: यू बाय
3: बाय बाय, लेट्स गो
2: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
3: छह बज चुके हैं ट्रेंड मेकर्स आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आते हैं 6 से 7 के बीच और यहाँ पे हम स्पेशल शाउट आउट्स आपके लिए लेकर आते हैं लेकिन पहले सैंडी गुड इवनिंग
4: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग रुजबे आज हम शाउट आउट देने वाले हैं डेविड धवन को वन ऑफ द मोस्ट commercially successful directors of 90s.
3: Yeah, actually, and even now, yaar, kyunki jo commercial mass movies hoti hai na, usme agar koi expert hai, to wo David Dhawan hai. Unko exactly pata hai ki kaise logo ko aise Spark up karna hai.
4: मेरे को लगता है 90s का वो time था उसमें जब mix kind of movies आ रही थी, romantic movies थी, love triangle की movies थी. ट्रेजेडी वाली भी होती थी लेकिन उसके बीच में देन डेविड धवन अपने तड़का लेके आए थे जहाँ पे उन्होंने यू नो कॉमेडी कॉमेडी को उन्होंने एक एंटरटेनमेंट एंड रोमांटिक भी बनाया
3: कॉमेडी को
4: मेन स्ट्रीम कर दिया एग्जैक्टली सो आज उसी डेविड धवन को जिनका रियल नेम है राजेंद्र धवन इनको सेलिब्रेट करने वाले हैं
3: राजेंद्र धवन उन्होंने ये डेविड नाम इसलिए लिया आफ्टर उनके ज्यूइश नेबर्स इन अगरताला उन्होंने उनको ये निकनेम दिया था बचपन में डेविड सो तभी से उनका नाम डेविड हो गया पता नहीं राजेंद्र धवन को डेविड कहां से लोगों ने नाम दिया
4: समझ में नहीं आया बट हमारा लिसनर से भी एक सवाल है आपको बताना है डेविड धवन ने कितनी नंबर वन मूवीज बनाई हैं
3: ओह दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन इफ यू कैन
4: काउंट सो लेट्स सी कितने लोग यहां पे लिख पाते हैं हाउ मेनी नंबर वन मूवीज जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं
3: आंटी नंबर वन
4: मैं एक और एग्जांपल देती
3: हूँ नंबर वन
4: हाँ बस हो गया यार मुझे देनी थी
3: अच्छा ठीक है
4: आंटी नंबर वन हीरो नंबर वन कितनी नंबर वन वाली मूवीज है डेविड धवन की लिख के भेजिए 5599 पर
3: और उसमें रिक्रिएशन भी इन्वॉल्व होगा ना सैंडी
4: हाँ एवरीथिंग
3: सब मिला के
4: या सब मिला के
3: जैसे कि कोई नंबर वन दो दो भी बने
4: हाँ
3: तो भेजिए यहाँ पे जल्दी फटाफट भेजिए ड्राइव कीवर्ड के साथ

0: You're listening to Humping Bollywood's biggest hits. आज डेविड धवन को हम शाउट आउट दे रहे हैं. उनका आज बर्थडे, आज नहीं एक्चुअली कल गया उनका बर्थडे,
1: कल उनका बर्थडे था,
0: बट आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हम पे. एक्चुअली मैं पता है आपको कि डेविड धवन गोल्ड मेडलिस्ट एडिटर टर्न डायरेक्टर हुए. तो इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में FTII में उन्होंने पढ़ाई की, और उनको उनके क्लासमेट्स थे सतीश शाह उनके क्लासमेट्स थे. तो उनको पता चला कि एक्टिंग उनका नहीं है, तो वो एडिटिंग के लिए टर्न आउट हुए, और वो एडिटिंग में गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट हुए थे. उन्होंने महेश भट्ट की मूवी है क्लासिक सारांश 1984, वो एक्चुअली एडिट की थी डेविड धवन ने.
1: क्या बात
0: और
1: है?
0: उसके बाद फिर वो डायरेक्टोरियल गए, मतलब उन्होंने डायरेक्टर बने उसके बाद.
1: सारांश मूवी जिसके बारे में काफी तारीफ होती है,
0: अनुपम खेर की तारीफ होती है ना उसमें,
1: अनुपम खेर की. महेश भट्ट ने इस मूवी को बनाया था.
0: उन्होंने ओल्डर किरदार वो टाइम पे प्ले किया था ना, जिंदगी भर फिर ओल्ड कैरेक्टर ही प्ले किया उन्होंने.
1: बहुत कम लोगों ने यंग करेक्टर में एक्चुअली में उनको देखा है. डेविड धवन की गोविंदा के साथ कोलैबोरेशन बहुत ही कमाल की रही है. मतलब मेरे को लगता है कि डेविड धवन ने अपने करियर में सम ऑफ द बेस्ट हिट मूवीज़ जो है इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में जो बेस्ट हिट मूवीज़ है वो गोविंदा के साथ दी है.
0: अरे
1: गोविंदा को कह सकते हैं बनाया डेविड धवन ने
0: 100%. और एंड बोथ वेज ना, बिकॉज वो लोग ने 18 फिल्म्स किए हैं.
1: वाओ,
0: 18 फिल्म्स टुगेदर. मतलब एंड वो टाइम पे वो मशीन की तरह काम करते थे, मेरे को लग रहा है. द नंबर ऑफ फिल्म्स जो डेविड धवन और गोविंदा कॉम्बिनेशन में आए वाज इनक्रेडिबल.
1: सो इसी से याद आया, लिख के भेजिए, हाउ मेनी नंबर वन मूवीज ऑफ डेविड धवन. नंबर वन नाम से उन्होंने कितनी मूवीज बनाई हैं, अगर आपको पता है लिख के भेजिए 5599 पर.

0: ट्रेंड मेकर्स
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोयतोय। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
6: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
9: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
12: You're listening to Hampling, Bollywood's biggest hits. Trendmakers mein aaj David Dhawan ko hum shout out de rahe hain. Unke movie ke gaane aap sun rahe hain back to back.
1: या एंड आपसे सवाल पूछा था कि डेविड धवन ने नंबर वन नाम से कितनी मूवीज बनाई हैं,
12: तो इसका आंसर सैंडी मिल गया
1: आंसर। काफी लोगों ने यहाँ पे भेजा है, सो इफ यू कैन काउंट इट्स कुली नंबर वन, ठीक है, जो पहली वाली थी।
12: दो कुली नंबर वन
1: हो गई, ठीक है। देन हो गई हीरो नंबर वन, देन बीवी नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, शादी नंबर वन।
12: वो शादी नंबर वन भी है,
1: शादी नंबर वन भी है, ठीक है। एंड देन हीरो नंबर वन,
12: शादी नंबर वन,
1: हीरो नंबर वन भी दो ले लो।
12: ओनली फ्लॉप मूवी
1: मेरे को भी लगता है।
12: हाँ, हीरो नंबर वन सुपर हिट।
1: हाँ,
12: हीरो नंबर वन दो बार आई है कि एक बार?
1: हीरो नंबर वन दो बार आई है।
12: नहीं यार, हीरो नंबर वन दूसरा कौन, किसने किया?
1: ओ, मैं तेरा हीरो थी,
12: वो मैं तेरा हीरो,
1: सॉरी हीरो नंबर वन, ओके,
12: वो एक ही है।
1: इट्स हीरो नंबर वन। एंड देन या वी गो फॉर आल्सो आंटी नंबर वन, अनाड़ी नंबर वन। ओ नहीं नहीं नहीं, ये डेविड धवन की नहीं है,
12: नहीं है।
1: आंटी नंबर वन है, अनाड़ी डेविड धवन की नहीं है।
12: फिर अपना
1: हाँ, 6, 7, 8 आठ मूवीज है,
12: सिर्फ आठ ही मूवीज है नंबर वन वाली
1: आठ मूवीज है।
12: आपको पता है लेकिन टोटल डेविड धवन ने 46 मूवीज डायरेक्ट की है, ठीक है, 46, ठीक है। आउट ऑफ दैट उनके सुपर ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट्स जो बोलते हैं हम लोग, वो आठ मूवीज रही है। क्लीन हिट्स जो होती है वो 9 मूवीज रही है, और उनके टोटल हिट्स जो है वो 17 रहे हैं, मतलब टोटल 17, विच मींस 70% सक्सेस रेट रहा है उनका ड्यूरिंग 1990s पीक टाइम।
1: वैसे काफ़ी वोकल भी रहे हैं, रिसेंटली वो लीगल डिस्प्यूट्स में भी रहे हैं, उनका जो प्रोजेक्ट था दे फेस द लीगल फ्रिक्शन एज वेल। वेल अभी एक चुनरी चुनरी जो गाना है बीवी नंबर वन का, उसका रीमेक आया है, तो इसके राइट्स के ऊपर भी एक्चुअली में
12: अच्छा
1: उनका हुआ है कुछ, तो या ये सब कुछ भी वैसे अपनी चीजों में काफी वोकल रहे हैं। उनका जो फॉलआउट हुआ गोविंदा के साथ, ही वाज वेरी वोकल अबाउट इट,
12: वो हमेशा काफी वोकल रहते हैं। एनीवे, उनकी ही मूवी का ये गाना आपके लिए, एंजॉय कीजिए।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits.
1: Well, आज गोविंदा की मूवीज के गोविंदा नहीं
0: डेविड धवन
1: डेविड धवन की मूवीज के गाने प्ले कर रहे हैं।
0: गोविंदा ही बोल सकते हो आप।
1: फील हम गोविंदा के लिए सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स के साथ ना सलमान खान का मेरे को लगता है कि
0: आपने सुना वो सलमान खान का ही था।
1: बहुत सारी मूवीज में सलमान खान थे, बीवी नंबर वन, जुड़वा, ये वो हसीना मान जाएगी में उस मूवी में थे।
0: सो जोड़ी नंबर वन में भी थे ना।
1: ओ यार, जोड़ी नंबर वन में भी।
0: फिर एक और वो जो फ्लॉप हुई थी मूवी, आई थिंक
1: शादी नंबर वन, नहीं उसमें शर्मन जोशी थे, उसमें फरदीन खान, जैद खान एंड शर्मन जोशी थे।
0: राइट नहीं, संजय दत्त भी लिखा है सैंडी मेरे इसमें।
1: अच्छा,
0: तो
1: संजय दत्त भी थे।
0: संजय दत्त, फरदीन खान एंड जायद खान। 2005 में शर्मन जोशी, आई डोंट नो इफ था कि नहीं
1: होगा। हाँ, 2005 में था शर्मन जोशी ना, लेकिन करेक्टर रोल होगा उसमें
0: मेबी।
1: सो यार, डेविड धवन के गाने आज हमने यहाँ पे प्ले किए। यू नो, डेविड धवन ने एक बार वैसे बॉलीवुड के बारे में ये भी बोला था, बिकॉज अनफिल्टर्ड वो हमेशा रहे हैं। ही सेड पब्लिकली रिमार्क ऑन द इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ लॉयल्टी अमंग बॉलीवुड स्टार्स once a director faces a commercial setback.
0: क्योंकि उनके भी कुछ flops तो हुए ही थे ना बीच में।
1: He said कि actors are very insecure. He can't deny that.
0: And वो तो I think we've seen that as well. Well, और भी बातें करने वाले हम about David Dhawan, but अभी के लिए one of his hit movies हसीना मान जाएगी या super hit movies, उसका ये बहुत ही super hit गाना आपके लिए।
2: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैक्स टच।

0: sleepyhead sleepeasy queen beds from only $7.99. On sale now. Hum. Accurate traffic.
1: Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
2: Fine and windy overnight for Auckland, a low of 7. On the northern, it's all clear from town to Silverdale. Half an hour. On the northwestern, we've got a westbound crash just after the Te Atatū on-ramp. The left westbound lane blocked there. The southern, fairly good from town to Manukau, 20 minutes to Drury, 30. Southwestern, all clear. And from the city to the airport, 23 minutes.
1: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
3: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
4: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। फिर ये घर कैसे?
5: अरे ये तो Logic Finance के गुरु Kendola का कमाल है। एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
4: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
6: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु Kendola को on 0800 Logic. गुरु
7: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ एडिक्शन गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट
8: Keep business moving with the American Express Gold Rewards business card. Pay suppliers today and extend your cash flow by up to 55 days. Plus, with Reward Pay, you can pay almost any supplier in New Zealand and earn points on payments. Get started with 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex Travel. Search Amex Business to discover a more rewarding way to pay suppliers. Offer ends 14th of December 26. 1.5k minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. Membership rewards, T's and C's apply and Reward Pay enrollment required.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
10: हाँ। अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
10: मिसेस सिंह
11: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 30

0: sleepyhead sleepyeasy queen beds from only 799 on sale now.
1: Drive show जा रही है आपके लिए यहाँ पे 4 से 7 के बीच आपके लिए हम weekdays में लेकर आते हैं drive show only on 104.2 FM हम and Rova app.
2: Yes, यहाँ पे आप सुन सकते हैं एंड रिमेम्बर रोवा ऐप के जरिए जब आप सुनते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट भी आपको मिलते हैं कहीं पे भी जाके आप हमें सुन सकते हैं एंड देयर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस टू टेक टू पार्टिसिपेट एज वेल
1: जी लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि बाली और बैंकॉक घूमने का मन है अगर आपका ईस्टर में तो गेट इन टच विद अनिल भाटिया क्योंकि वो हमें लेकर जा रहे हैं आपके साथ टू बाली एंड बैंकॉक जहाँ पे हम काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज करने वाले हैं एंड वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन 4-star 5-star अकोमोडेशन रहेगा उसके साथ
2: बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ पे रहेगी एवरी डे
1: खाना भी इंक्लूडेड है सारा
2: इट्स लाइक अ गाइडेड टूर आपके लिए तो अगर आप अपने पेरेंट्स को भी भेजना चाहते हैं तो उनके लिए भी सिक्योर रहेगा ये टूर बिकॉज हम साथ में जा ही रहे हैं सो नंबर टू कॉल इज 0800-4-SUN-TOURS विच इज 0800-4-786-868
1: अच्छा और इसी के साथ साथ यहाँ पे भजन जैम्स हो रहा है सैटरडे 22 अगस्त को वैदिक सेंटर पापा टोयोटो में तो यहाँ पे भी अगर आपको आना है तो उसके जो टिकट्स है वो eventbrite.com पे आपको मिल जाएंगे उसके टिकट्स भी आप बुक कर लीजिएगा एंड बैक टू डेविड धवन द नंबर वन डायरेक्टर ऑफ 90s वी कुड से दैट बिकॉज इतने सारे हिट्स उन्होंने दिए 90s में all big hits.
2: Big hits, इन्होंने दिए बहुत सारी collaborations. He earned best director nomination at the Filmfare Awards for Aankhe and BB number 1 as well.
1: वो काफ़ी अनफिल्टर्ड बातें भी करते हैं जैसे आपने कहा था सैंडी एंड उन्होंने हमेशा से ना उनके पॉडकास्ट और इसमें कहा है कि ये जो क्लासिक कॉमेडी सीन्स जो होते थे वो ऑफन इम्प्रोवाइज होते थे ऑन सेट विद कादर खान शक्ति कपूर एंड गोविंदा राइट बिफोर द कैमरा रोल्ड तो उस टाइम पे स्क्रिप्ट्स नहीं होते थे 90s में ज़्यादा वो सब इम्प्रोवाइज करते थे जस्ट बिफोर द कैमरा स्टार्टेड रोलिंग इट यूज टू बी ऑल इम्प्रोवाइजेशन एंड इसके बारे में हमने काफ़ी कहानियाँ भी सुनी है लाइक कादर खान यूज टू बी वन ऑफ दोज ना और भी होते थे काफ़ी जो सीन्स लिखते थे वहाँ पे जॉनी लीवर कितनी बार तो सीन्स लिखते थे वहाँ पे आके सेट पे आके
2: बहुत बार मेंशन किया इस चीज के बारे में डिफरेंट एनवायरनमेंट टू वर्क मेरे को लगता है
1: एब्सोल्युटली
2: और मुझे लगता है कि तब एक्टर्स को और इन सबको ज्यादा लिबर्टी होती थी काम के बीच में यू नो पढ़ने की एंड
1: स्क्रिप्ट बदलने की
2: वो सारी चीजें करने की शायद अब वो नहीं है
1: अभी होनी चाहिए मुझे लग रहा है काफी बार कुछ कुछ जगहों पे क्योंकि आवारापन 2 देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट राइटर पे वैसे भी लोग खर्चा नहीं कर रहे तो एटलीस्ट एक्टरों को ही करने दो थोड़ा दिमाग लगाने दो बट एनीवे विद दैट आई थिंक थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए प्यार के लिए आज काफी रश हो रहा है बिकॉज गाने इतने लंबे थे और इतने बढ़िया थे
2: एंजॉय एंड कल मुलाकात होगी बाय
1: एंजॉय बाय बाय

0: பாட்டிக்கு தமு சலோ.
1: When nonsense makes perfect sense. No logic Monday.
2: नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. 17 अगस्त आज है और मंडे नाइट मैं क्रिश आपके साथ दूंगा टिल मिडनाइट 9 PM तक. नो लॉजिक मंडे आपके लिए चलता रहेगा. आज का हमारा पहला खबर जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, रिस्क हर कोई लेते हैं लेकिन क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क लेता है. ये कहानी है थेसली ग्रीस की. 22 जुलाई ऑफ दिस ईयर पब्लिश किया गया है. थेसली में एक ब्रिज है जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोलैप्स हो गया था. डिवेस्टेटिंग फ्लड्स जो 2023 में आया था. ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन में ये ब्रिज का स्ट्रक्चर अभी भी सर्वाइव कर रहा है. लेकिन आप यकीन माने यहाँ के जो मोटरिस्ट्स है और लोकल्स है अभी भी इनको यूज़ करते हैं टू ड्राइव अक्रॉस इट. और ये डैमेज स्ट्रक्चर रिमेन्स वेरी मच पार्ट ऑफ लोकल ट्रैफिक routes. और कहा गया है कि ये स्टोरी हाईलाइट करता है कि कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क लोग लेते हैं इवन व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्स. तो कभी कभी जान ज़्यादा प्यारी है या फिर रिस्क लेना या जो इंजरीज हो सकते हैं वो ज़्यादा ध्यान में रखना या फिर रिस्क लेना. एंड आई थिंक पीपल ये चॉइस हमेशा बनाते रहते हैं. रिस्क लोग लेना पसंद भी करते हैं. तो ये कहानी थेसली ग्रीस की है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और गाने आपके लिए.

0: Monday.
1: You're listening to Krish on your number one hump playing Bollywood's biggest hits. No Logic Monday jari hai aur main Krish aapke saath de raha hu. Hamare saath midnight tak rahega, 9 pm tak No Logic Monday chalega. कैसा रहेगा कि अगर आप कपड़े जो खरीदते हैं वो खुद ब खुद आपको पहना दे, सेल्फ वेयरिंग हो जाए. ऐसा ही कुछ कहानी है साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स की. 21 जुलाई ऑफ दिस ईयर पब्लिश किया गया है. रिसर्चर्स फ्रॉम केस्ट KAIST और स्टैनफोर्ड ने मिलकर डेवलप किया है एक ऐसा सेल्फ वेयरिंग रोबोटिक क्लोथिंग जिनको स्वैग कहा गया है. नाम भी बहुत ही खूब रखा गया है. ये जो गारमेंट्स है द यूज रोबोटिक मैकेनिज्म्स टू हेल्प पुट देमसेल्व्स ऑनटू द वेयर, मतलब खुद ब खुद ये आप पे आ जाएंगे. टेक्नोलॉजी के वजह से आगे चलकर जो मोबिलिटी इम्पेयर्ड लोगों के लिए बहुत ही बड़ी असिस्टेंस हो सकती है. इनफैक्ट जनरल पब्लिक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. इमेजिन कीजिए आप खड़े हैं या बैठे हैं और कपड़े आपको खुद ब खुद पहना दिया जाए और ये एक रोबोटिक मैकेनिज्म के थ्रू होगा. सेल्फ वेयरिंग रोबोटिक क्लोथिंग जिसका नाम स्वैग रखा गया है और ये ऑफर करता है ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर जहाँ पर ड्रेसिंग में कोई एफर्ट शायद आगे चलकर नहीं होगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. नो लॉजिक मंडे सुनते रहो.

0: the moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Analogic Monday में एक के बाद एक आपके लिए कुछ आश्चर्यजनक जानकारी या कुछ चकित करने वाला जानकारी लेकर आ रहे हैं जो आपको बिल्कुल सरप्राइज्ड कर दे. लॉजिक चाहे हो या ना हो लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग. तो ऐसा ही कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वॉच भी बना दिया गया है. स्विट्जरलैंड वेस्टरॉन कॉन्स्टेंटिन 16 जुलाई ऑफ दिस ईयर ये पब्लिश किया गया है. बर्कली ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन कंटेन्स एन एस्टोनिशिंग 63 इंडिविजुअल कॉम्प्लिकेशंस कहा गया है. इस घड़ी को क्रिएट किया गया है बाय स्विस लक्जरी वॉच मेकर वेस्टरॉन कॉन्स्टेंटिन. और ये मैकेनिज्म परफॉर्म करता है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल और कैलेंडर फंक्शंस. और ये इज़ वाइडली कंसिडर्ड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वॉच एवर मेड. तो ये तैयार कर दिया गया है इन स्विट्जरलैंड जहाँ पर और सरलता लाया जा रहा है, जहाँ पर लाइफ को और कन्वीनियंट बनाया जा रहा है. तो वहीं पर एक कॉम्प्लिकेट

0: Cafe on Hum. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
3: Fatiha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
8: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
8: Hum. Night Cafe on Hum. Where sense takes a break.
10: No Logic Monday.
11: नाइट कैफे का ये सेगमेंट आपके लिए होता है नो लॉजिक मंडे जो आपके लिए हम लेकर आते हैं 17th अगस्त है उन लोगों को याद करेंगे जो अपना जन्मदिन भी बना रहे हैं आज आगे चलकर प्रोग्राम में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ वर्ल्ड्स जायंट पेपर प्लेन को तैयार कर लिया गया ये बोलोगना इटली में हुआ है ये जो ब्यूटीफुल इन्वेंशन 7th जुलाई ऑफ दिस ईयर पब्लिश किया गया है जहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रॉम पीसा बिल्ट ए जाइगेंटिक पेपर एयरक्राफ्ट जो 7 meters लॉन्ग है और कहा गया है कि इसका वजन 28.5 kg है और हैज अ विंग स्पैन एक्सीडिंग 20 meters अराउंड 300 kg ऑफ पेपर और 60 kg ऑफ ग्लू का इस्तेमाल कर इसको तैयार किया गया है ये प्लेन फ्लू 59 meters एट बोलोग्नाफिया और गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है ये करके तो ज़रा सोचिए अगर कुछ भी करना हो तो दिमाग आप किसी चीज़ में लगा देते हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही नो लॉजिक मंडे में अगले घंटे पर मिलते हैं टॉप ऑफ द आवर पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए रहेगा और फिर उसके बाद में 30 minutes of non-stop म्यूज़िक भी लेकर आएंगे मैं क्रिश आपके साथ देता रहूँगा सुनते रहो हम

मैट्रेस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन इनवाइट कर रहे हैं कम्युनिटी को टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो 22nd और 23rd अगस्त को होगा बकनहेड स्काउट्स हॉल में. प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स को इन्वाइट किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट. रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल करें ऑन 021-090-85067 पर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो.

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: का बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वी गॉट टू गो आर यू रेडी
3: कम एंड टेक अ ट्रिप विद मी
4: Attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
5: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
7: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
9: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Night Cafe on Hum.
10: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हम बोर्डिंग कॉल इज नाउ ओपन. ड्रीम आइलैंड एस्केप जीतने का मौका है. इट कुड बी जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे. दो रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातू विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी जीतने का मौका है. इस तरह से आप एंटर कर पाएंगे. आप हमको सुने एवरी वीक डे और अपने कान को खुले रखे फॉर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल. 8 AM, 11 AM, 1 PM और 5 PM होगा. जैसे आप ये बोर्डिंग कॉल सुनते हैं आपके पास 30 मिनट्स है टू हेड टू रोवा एंड एंटर बोर्ड नाउ. दैट्स इट. आपको बस बोर्ड नाउ लिखना है और आप ड्रॉ में शामिल होकर अनफॉरगेटेबल वनवातु गेटअवे जीत पाएंगे विद सोलोमन एयरलाइंस. और अपना फ्लाइट ना मिस करें बिकॉज दिस कुड टेक यू टू पैराडाइज थैंक्स टू सोलोमन आइलैंड्स फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनवातु. आप विजिट कर सकते हैं flysolomons.com पर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

0: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू. आपने जो एक्चुअल वर्क होता है उनका रिव्यू के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने सिबलिंग को रिव्यू करना ये भी एक टास्क है आपके लिए जो हम लेकर आए हैं. थिंक योर ब्रदर और सिस्टर डिजर्व्स अ ग्लोइंग रिव्यू और नीड्स अ सीरियस अप्रेजल. आप कॉल करें जब हमारे साथ ही आपको इनवाइट करते हैं टू गो लाइव ऑन एयर और ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू आप उनको दे पाएंगे. रिव्यू में आप उनको मतलब इन चीज़ों पर इंक्लूड कर सकते हैं, बेस्ट और वर्स्ट सिबलिंग एवर, बोरोइंग योर स्टफ विदाउट आस्किंग, या हमेशा ट्रबल में होना, या आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनना, या आपको अनॉय करना 24/7. आप अपने रिव्यूज़ को शेयर करें और ड्रॉ में शामिल होकर कैश जीतने का मौका है. टू लकी विनर्स को $250 ईच दिया जाएगा. 28 अगस्त को ड्रॉ होगा और दो विनर्स को चुना जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz
6: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
7: Join the Tribe!
6: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
7: join the Tribe!
8: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
9: Yeah, but there always seem to be hidden extras.
8: Zelo by Ashcroft Homes. A great range of modular homes packed with premium inclusions right from the start. Think stone bench tops and heat pumps to built-in cabinetry and storage, all included.
9: Really?
8: Yep. And they can deliver in as little as 8 weeks.
9: Zelo. I like the sound of that.
8: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
1: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. The government has announced a detailed business case will explore options for a second Auckland Harbour crossing. Transport Minister Chris Bishop expects the case to be completed by next year. Labour leader Chris Hipkins says he wouldn't stop the process if elected in November. Aged Care Commissioner Erin Johnson says the impending crisis in the sector can no longer be ignored. A report has found the current aged care system could be short of more than 9,000 residential beds in just over a decade. Ferrari's first all-electric car has sold for a record-breaking figure. The custom-built Luce went for nearly $70 million. In sport, both the Chatham Cup and Kate Shepherd Cup finals will be played in Christchurch's new stadium on September the 5th. It's the first time football will be played there. There'll be no entry charge. Football updates brought to you by Hisense. And it looks like the NRL table-topping Roosters are set to lose their assistant coach. It's believed a 2-year deal is being finalised that will see the return of former Wallabies coach Michael Checker to the Waratahs.
0: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
11: Welcome back everyone, you're listening to number one Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए है आज प्रोग्राम में. आप बस हमारा साथ देते रहे. इंटरेस्टिंग खबरें हैं, अगर समय रहा तो बॉलीवुड न्यूज़ भी शेयर करेंगे. वैसे आपको बताने के लिए इतने कुछ है हमारे पास. इवेंट्स पर बातें, रक्षाबंधन प्रमोशन है और क्या कुछ इवेंट्स होने को है, इन पर इतनी सारी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए तो हमारे पास शायद आज टाइम कम रहे. लेकिन जो बातें आपके लिए फ़ायदेमंद हो वो प्रायोरिटी हमें देना चाहिए और उनको ही आज हम आपके साथ शेयर करेंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम बैक. 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक के लिए आई एम श्योर आप तैयार हैं और हम भी, क्योंकि आपको सुनाने जा रहे हैं प्यारे प्यारे गाने. पहला तो मर जावां, ये गाना गुरनाजार की आवाज़ में, आदित्य नारायण का एक और गाना आएगा, कुमार सानूवाल का याग्निक शान, कविता कृष्णमूर्ति, तुलसी कुमार, राहत फतेह अली खान, दिलजीत दोसांझ, अरिजीत सिंह, पालक मुशाल जैसे कलाकारों की आवाज़ों में प्यारे प्यारे गाने बैक टू बैक आप सुनेंगे फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर. एन्जॉय एवरीवन.

Night Cafe on Hum.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Night Cafe on Hum.
2: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में है और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
3: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
2: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
3: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
2: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
4: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL। T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
10: Flooring Extra. Adore your floor.
11: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten. And somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
12: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
13: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
14: Yes, but I want to subdivide too.
13: Zelo.
14: Zelo?
13: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
14: Really?
13: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
14: Zelo. I like the sound of that.
13: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
15: The beat of Bollywood.
16: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
15: Night Cafe.
17: You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Imagine kijiye two countries, one epic adventure, zero stress. Sirf 12 spaces rahe gaye. Bali aur Bangkok getaway with Sandy and Ruzbe March

2027 में होने जा रहा है, बाली का विज़िट करना, बैंकॉक में टुक टुक में सफ़र करना, मेजेस्टिक टेम्पल्स देखना, बार्गेन्स इनके कलरफुल मार्केट से लेना, माउथ वाटरिंग स्ट्रीट फूड का भी मज़ा लेना, और वहीं बाली में वाटरफॉल्स, वॉकिंग थ्रू ब्रेथ टेकिंग राइस टेरेसेस, स्विंगिंग अबव लश जंगल्स, ये सभी कुछ हो सकता है। तो ट्रेवल विद सैंडी और रिज़बे ये आपको लेकर जाएंगे ऐसे हॉटस्पॉट्स पर जिसका आपने जिक्र सुना होगा लेकिन कभी आप गए नहीं हैं। इट्स ऑल प्लान्ड, इट्स ऑल इंक्लूसिव, ऑल यू हैव टू डू इज़ पैक योर बैग्स। अर्ली बर्ड बोनस भी यहाँ पर दिया जा रहा है, अगर आप ट्रिप अगस्त के दौरान बुक करते हैं तो 1 free nights अकोमोडेशन कहीं पर भी न्यूजीलैंड में आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर टू। सीट्स लिमिटेड है, बहुत ही जल्दी सीट्स भर जाएंगे। ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर फॉर दी ऑल एक्सक्लूसिव टूर प्राइस, या सन टूअर्स को कॉल करें 0800-4-SUN-TOURS यानी 0800-4-786-8688 पर, और बिफोर द स्पॉट इज गॉन आपको सिक्योर कर लेना है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

लाओ, जिसको नाचना है ना चाहो, मेरे साथ शर्त लगाओ, ये ये ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये ये ये कर।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're with Krish on Hum, playing Bollywood's biggest hits. Raksha Bandhan ke dauran aap $300 cash jeet payenge. Hamare Facebook page par jaye. Sibling bonds ko expensive gifts se nahi dekha jata hai ya tola jata hai. In fact, ordinary objects aur extraordinary memories hi hamare liye kaafi hota hai. Jaise old cassette tape ho ya ek shared key ho, stolen t-shirt ho shayad. रक्षाबंधन पोस्ट हमने फेसबुक पेज पर डाला है, हम फेसबुक पेज पर. आप हमारे फेसबुक पेज पर जाए, एक फोटो अपलोड करें ऑफ वन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन द कमेंट सेक्शन. दो तीन सेंटेंसेस आप जरूर लिखें अबाउट द मेमोरी जो इससे जुड़ी है, और टैग योर सिबलिंग. ड्रॉ में शामिल होकर $300 जीतने का मौका है. विनिंग स्टोरी को लाइव रेडियो पर पढ़ा जाएगा ऑन एयर ऑन फ्राइडे 28 अगस्त, और $300 कैश गिव अवे अनाउंसमेंट भी विनर को दिया जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience Southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: डॉक्टर ने क्या बोला?
3: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
2: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
4: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
5: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashurevan.co.nz. Northernville Advisory Limited ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर.
6: 19 साल बाद शिवम इज बैक. अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ. आवारापन 2, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी.
7: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
6: आवारापन 2, नाउ शोइंग इन सिनेमास. डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म.
7: आवारापन
6: रेटिंग TBC. Playing Bollywood's biggest hits. Hum. Night Cafe on Hum.
8: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits, Kadi Beyond Borders at NZ Fashion Week. Get ready for an incredible night jahan par Indian fashion culture aur creativity aapko dikhai dega at New Zealand Fashion Week. Ye ek rare opportunity rahega to see Indian fashion on the New Zealand Fashion Week runway. कढ़ी बियॉन्ड बॉर्डर्स चार लीडिंग इंडियन डिज़ाइनर्स को ओकलैंड ला रहे हैं, शोकेसिंग ट्रेडिशनल हैंडस्पन हैंड वूवन फैब्रिक कढ़ी और किस तरह से ये री इमेजिन्ड किया जा रहा है इन कंटेम्प्रेरी फैशन. मेजर इंटरनेशनल फैशन नेम जो हेडलाइन करेंगे शो को, हु इज़ राजेश प्रताप सिंह, ये इंडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिज़ाइनर्स में से एक है और ही इज़ नोन फॉर हिज सोफिस्टिकेटेड टेलरिंग और मॉडर्न टेक ऑन ट्रेडिशनल क्राफ्ट. ये एक फैशन शो से बढ़कर होगा, तो आप यहाँ पर ज़रूर जाए बिकॉज ये सेलिब्रेट करेगा कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड थ्रू फैशन और चार डिस्टिंक्ट डिज़ाइनर्स के साथ जो कढ़ी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एज लग्जरियस, कंटेम्प्रेरी, एक्सपेरिमेंटल एंड सीरियसली कूल. ये 18 अगस्त को होने जा रहा है. 8:30 PM स्टार्ट होगा. शेड 10 क्वींस वॉफ आपको जाना होगा, 89 की स्ट्रीट ओकलैंड. एन इंटरनेशनल इंडियन डिज़ाइन शो कैसे होगा राइट हियर इन ओकलैंड. टिकट्स आप nzfashionweek.com/tickets/kadi से ले सकते हैं. KHADI मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ.

0: भी दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: आपकी मुश्किल खड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: हाँ।

सुन लिए आपने यूपी के बोल, आता ऐका महाराष्ट्र से ढोल।

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी

0: ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Center.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 09278860.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.

0: Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
5: तो क्या करें?
8: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
0: Playing Bollywood's biggest hit.

0: driving you home?
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
5: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.

0: ticket, your entry to win. Two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines. Plus, $1,000 spending money.
1: Hum boarding call. Thanks to Solomon Airlines. Flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
3: moisture और ventilation का problem लगता है
4: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है
3: oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं
5: contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111 Reliance Ventilation Systems solving ventilation problems for over 80 years.
0: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
6: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shu Prasad, Kelston.

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
2: क्या?
3: The cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Morning. Weekdays, 6 to 10 a.m.
1: The Beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस,

0: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz.

भजन में प्रत्येक पंक्ति में एक सुंदर शिक्षा दी गई और इस भजन को सुनने का आनंद तभी है, तभी कोई अर्थ है, इसमें दी गई शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए।

लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हम सबकी वास्तविक संपत्ति को लूटा करते हैं? इन पांचों लुटेरों को हम अपने साथ रखते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं, इनको प्रसन्न रखते हैं और ये हमें लूटा करते हैं। इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे एक दिन।

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: बुरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m. प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
5: डॉक्टर ने क्या बोला
6: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
5: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
7: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
8: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashore1.co.nz नॉर्थनविल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अशोर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर
9: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
10: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI
11: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
12: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
13: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
0: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. ACT wants to overhaul child safety vetting by introducing a new work card that is continuously updated and monitored. It says employers currently have to undertake screening and generally do rechecks every 3 years. Every cardholder would be required to complete a short child protection course plus a refresher when it's renewed. The PM wants to reach out across the political divide to get a second harbour crossing underway in Auckland. A business case is being committed to, which will look at funding and whether it should be a bridge or tunnel. Christopher Luxon says they need to get moving.
15: We are genuinely trying to do this differently. You can't just sit in a desk, draw some squiggles over the line and say, we've got a plan. That ain't going to cut it.
14: The government's being pleaded with to help future-proof the aged care sector. A report has made 40 recommendations, including raising bed prices next year. Tracy Martin from the Aged Care Association says this won't solve all their problems.
16: But it's only money and we need system change. And I don't mean to say it's only money disrespectfully, but as the Ministerial Advisory Group has said, you can't keep throwing money at a broken system.
14: The Tupac Shakur murder trial is officially underway in Las Vegas. The rapper was killed after being shot in a drive-by 30 years ago. Prosecutors allege former street gang boss Dwayne Davis was the ringleader behind the shooting. To rugby with Shift 4, All Blacks fullback Damian McKenzie remains in doubt for Sunday's test against the Springboks at Ellis Park. He picked up an ankle injury in the second tour game against the Sharks. Coach Dave Rennie's easing McKenzie into the week.
17: He'll play a limited part in the session this afternoon. Yeah, we're hoping to get him running by tomorrow.
14: An Otago and Highlanders prop, Sola Ma'u, is flying over as injury replacement for Ollie Norris.
18: Sports News.
19: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: Super City Auckland mein filhal 7.3 degrees temperature hai, high of 14 expected hai baad mein chalkar. Aaj ka overnight temperature rahega around 7 degrees tak. Aur mausam ke liye kaha gaya hai mainly fine weather with a bit of showers, especially in the morning. North of Harbour Bridge ke around jo hai aaj barish batai ja rahi hai. Sunrise agle ghante theek subah 7 par hoga, jabki sunset 5:50 pm par.
19: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
19: Breakfast catch up.
3: Hello Kira, good morning, namaste and welcome to Hum, playing Bollywood's biggest hits. Filhal 2 minute ho rahe hain 6 bajkar aur aaj hai Tuesday 18th of August. Aaj ki subah khas ab sabhi ke naam kar rahe hain, jahan par shuruaat aaj ki subah ki ho rahi hai on the breakfast show with Vijay and Pooja. Aur of course 104.2 FM Yarova app ke zariye agar aap hame sun rahe hain to aap sabhi ko a very good morning. Aaj ki subah ki dheron sari shubhkamnaen jahan par aaj ka ye safar hum aapke sath shuru karne ja rahe hain. तो वहीं पर आपके साथ की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है और आज तय करेंगे आज इस सफर को आपके साथ. देखते हैं कि आगे का जो प्रोग्राम है ये कैसे जाता है, पर उससे पहले वेरी गुड मॉर्निंग.
20: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
3: मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो?
20: आई एम ऑलराइट. ट्यूसडे, आज 18 तारीख अगस्त है.
3: यस, 18th ऑफ अगस्त है आज. तो आज बहुत से लोग इनफैक्ट अपना ये स्पेशल डे भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे ना. किसी का बर्थडे होगा, किसी की शादी की सालगिरह होगी, तो किसी के लिए बहुत स्पेशल डे होगा बिकॉज टुडे इज द डे जहाँ पर यू हैड गिवन योरसेल्फ अ डेडलाइन फॉर समथिंग बिग दैट यू नीड टू अचीव. एंड वी होप कि आपके जो एस्पिरेशंस हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो डेफिनेटली पूरे हो रहे हैं एज पर योर प्लान्स. एंड इफ नॉट एज पर योर प्लान्स, देन ऑफकोर्स अ बिगर फोर्स, अ डिवाइन फोर्स जो है उसके प्लान के हिसाब से तो चीज़ें हमेशा अच्छी ही होती हैं. फिलहाल 3 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर. ब्रेकफास्ट कैचअप में खबरों के साथ करेंगे क्विक कैचअप और उसके बाद
20: आज बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है इसकी भी जानकारियां देंगे. इनाम जीतने के बहुत सारे चांसेस और फन एंटरटेनमेंट और आपके फेवरेट गाने.

0: Sunny Side Up.
1: तो एवरी मॉर्निंग ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी ब्यूटीफुल कहानी से जिससे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखने को और समझने को जो है ये मिले. एंड आज सुबह भी सनी साइड अप की स्टोरी जो है ये आपके लिए हम लेकर आए हैं. ये स्टोरी वैसे इट्स नॉट जस्ट फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड लव बट ऑल्सो एक बहुत ही जरूरी सबक जो हम तभी सीखते हैं जब बहुत देर हो जाती है. एंड ऑन द अदर हैंड समथिंग रियली इमोशनल इस कहानी में जो है ये बनी हुई है. बट येट आई वुड वॉन्ट टू शेयर दिस स्टोरी ताकि इससे हम सबको वो चीज़ जो है ये याद रहे जो चीज़ हम सीखते हैं जब एज आई सेड बहुत देर हो जाती है. सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज़ अबाउट अ फादर जो फ्लोरिडा USA में रहते हैं और इनके बारे में बताया गया है कि ही वॉक्स माइल्स एंड माइल्स. इनफैक्ट एवरी टाइम ये एक जर्नी पे जब निकलते हैं तो ये रुकते नहीं है तब तक जब तक कि इनका दिल नहीं कहता कि चलो यहाँ पर रुकते हैं यहाँ पर ये मैसेज जो है ये स्प्रेड करते हैं. ही हैज़ बेसिकली वॉक्ड ओवर 51,000 माइल्स ताकि ये अपना ये मैसेज स्प्रेड कर सके टू ईच एंड एवरी पर्सन हु कम्स अक्रॉस हु ही कम्स अक्रॉस ऑन हिज जर्नी. और ये दरअसल यू नो फ्लोरिडा से निकले और फ्लोरिडा से एक अलग जगह केंटकी जो है यहाँ पर USA में ये भी पहुँचे जहाँ पर इन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और उनको इनकरेज किया. अपेरेंटली ही हैज़ बिन डूइंग दिस फॉर ईयर्स. थाउजेंड्स ऑफ लोगों से ये अपनी इस जर्नी में मिलते हैं और जैसे ये अपनी जर्नी फिर वापस से कंटिन्यू करते हैं फिर और लोगों को ये इंस्पायर करते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ रिजिलियंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग दोज जो शायद मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हों. कहा गया है कि इनका नाम है स्टीव फुगाटे और स्टीव जो है ही लॉस्ट हिज सन टू सुसाइड इन 2001 और इनकी बेटी जो है इनकी मृत्यु हुई मल्टीपल सिरोसिस के कारण जिसके बाद चलकर ही लॉस्ट बोथ हिज किड्स. एंड व्हेन दैट हैपेंड इन्होंने लाइफ को एक मोटिव बना लिया कि ये अब खुद के लिए नहीं जिएंगे बल्कि ये अपनी इस पर्सनल जो कह सकते हैं यू नो लॉस है इसको कैरी करेंगे लेकिन साथ में लोगों को सबक देंगे लोगों को एक टीचिंग देंगे कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम काइंडनेस को चूज़ करें कंपैशन को चूज़ करें होप को चूज़ करें और हम उन लोगों के लिए यू नो अवेलेबल रहे जिनके बारे में शायद हमको अंदाज़ा हो या जिनके बारे में हम पता कर सकते हैं या जो हमारे दिल के बहुत करीब है कि कहीं उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं. सो स्टीव हैज़ यू नो सेट ऑफ ऑन दिस जर्नी जहाँ पर ये अलग अलग शहरों में जाते हैं लोगों से मुलाकात करते बेसिकली अजनबियों से मुलाकात करते बिकॉज ही डजंट नो एनीवन ऑन दिस जर्नी दैट ही हैज स्टार्टेड और फिर वहाँ पर ये लोगों को लव लाइफ ये एक मैसेज देते हैं. ही हैज गॉट दिस बिग बोर्ड जो ये अपने कंधे पर पहनते हैं विच सेज लव लाइफ और ये अपनी जर्नी जब तय करते लोग इनको अप्रोच करते देन ही शेयर्स हिज स्टोरी दैट व्हाई ही स्प्रेडिंग दिस मैसेज.
2: That's you know a big challenge जो उन्होंने खुद अपने ऊपर लिया है. एंड द थिंग इज कि जो उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है शायद वो नहीं चाहते कि और लोग एक्सपीरियंस करें इसीलिए वो मेंटल हेल्थ और उसको लेकर जागरूकता को लेकर उसकी जो अहमियत है उसको समझते हैं.
1: एब्सोल्युटली एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन लाइफ ना समटाइम्स सम थिंग्स हैपन इट ब्रेक्स अस इतने बुरे हद तक कि हम फिर वापस उभर नहीं पाते. एंड समटाइम्स सच बिग थिंग्स हैपेंस इन लाइफ कि हम उससे एक सबक जो है ये लेते हैं और फिर हम औरों की मदद करते हैं कि उनके साथ वैसा ना हो. सो हियर वी गो आज की सनी साइड अप स्टोरी. उम्मीद है कि इससे आपको भी लव लाइफ का लेसन जो है ज़रूर मिले और लाइफ को और थोड़ा प्यार से आप देखें और थोड़ा प्यार से आप समझने की कोशिश जो है ये करें. फिलहाल 15 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर. ब्रेकफास्ट कैचअप आपके लिए जारी है. कमिंग अप नेक्स्ट ग्लोबल हेडलाइंस.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Right now, your team could be winning, sprinting, pitching, kicking, sin binning, and you need to know about it.
4: Join our tribe!
3: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
4: join our tribe!
5: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe basin mixers $149. American standard toilet suite $349. Luxury clashish wall vanities $399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
8: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
11: Global headlines.
12: आज सुबह के मुख्य समाचारों में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के मामले में बीच में आने पर यूएस अपने अलाय ओमान पर अटैक कर सकता है ईरान के साथ डील तक पहुंचने की 60-day डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है ट्रंप ने साफ किया है कि वो में गोल ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना है जबकि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ट्रंप द्वारा दावा किए गए डायरेक्ट बैक चैनल के वजूद से इनकार किया है इसी बीच ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से चार घंटे से ज्यादा मुलाकात करके गाजा सीज फायर प्लेन को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने का दबाव बनाया है भारत में झारखंड में हफ्ते भर से चले स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल समेत 2014 से हुई सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स और रिक्रूटमेंट्स को रद्द कर दिया है चीफ मिनिस्टर सोरेन ने सीआईडी जांच और आईएएस ऑफिसर अमिताभ कौशल की चेयरमैनशिप में एक रिफॉर्म कमेटी बनाने का ऐलान किया है इसके बावजूद स्टूडेंट लीडर रविंद्र पासवान ने सीबीआई अप्रूव की मांग की है या सीबीआई प्रोब की मांग पूरी होने तक आंदोलन और हंगर स्ट्राइक जारी रखने का ऐलान किया है फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रंबुका ने कहा है कि अगले जनरल इलेक्शन से पहले नए इलेक्टोरल लॉज को समझने के लिए जनता को पूरा वक्त मिलना चाहिए और बिना तैयारी के जल्दबाजी में चुनाव करवाना सही नहीं होगा कैबिनेट को रिसेंटली सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस ने कंट्री की इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस पर ब्रीफ किया, जबकि पीएम रंबुका ने कहा कि बिल्स इस हफ्ते पार्लियामेंट में टेबल होंगे या नहीं ये अभी कन्फर्म नहीं है। कानून के मुताबिक करंट पार्लियामेंट्री टर्म के हिसाब से रिट ऑफ इलेक्शंस 24 दिसंबर तक जारी हो सकता है और जनरल इलेक्शंस 6 फरवरी के बीच करवाए जा सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन पर इंडिया 462 रन्स पर है, जबकि श्रीलंका ने अपने इनिंग्स में 79.4 ओवर्स में 284 रन्स बनाए हैं। इसके अलावा आज फुटबॉल के अंतर्गत ला लीगा का एक बहुत ही मैच जबरदस्त मैच तकरीबन आधे घंटे बाद डेपोलिवो ला कोरुना और एल्चे के बीच खेला जाएगा। इस मैच पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: Hollywood's most wanted.
13: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ।
14: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए आज का पहला चैट बस्टर मोहित चौहान की आवाज में एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद आज का जो बॉलीवुड अपडेट है ये भी आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले अ वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर मारामाटा, आपने विश किया है हैप्पी ट्यूसडे सभी को, कहा है थैंक यू सो मच. मैंडी, आपका भी गुड मॉर्निंग मैसेज में मिला है, सो थैंक यू सो मच. राज, ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू, एंड थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए. हाउ कुड वी फॉरगेट बॉबी मान जी, आपने भी सुबह सुबह में याद करते हुए अपना गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू आपके भी साथ के लिए.

0: मोहित चौहान को आप सुन रहे थे हम द ब्रेकफास्ट शो विद विजय भूजा, जिसके साथ 6:30 बज रहे हैं 104.2 FM और रोवा पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। आपको हम कहना चाहेंगे भाई बटवारा और इमरान हाशमी की फिल्म
1: अपन टू,
0: हाँ दोनों आमने सामने बॉक्स ऑफिस पर एक साथ, और कहा जा रहा है कि इमरान हाशमी की आवारापन इज डूइंग मच बेटर।
1: ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। इमरान हाशमी का नाम आपने मेंशन किया तो याद आया कि बता दूं 27th of November इज नॉट फार अवे। अभी क्या चल रहा है, अगस्त ना, सितंबर अक्टूबर फिर नवंबर, मतलब 2 महीने समथिंग वीक्स का टाइम है। एंड आई एम मेंशनिंग 27th of November क्योंकि इमरान हाशमी की आवारापन टू अभी आई है और 27th of November को आ रही है एक और फिल्म इनकी।
0: अच्छा।
1: जो कि है जनीले डिसूजा और साथ में अपार शक्ति खुराना के साथ। फिल्म का नाम पता है क्या है?
0: नहीं।
1: गन मास्टर G9।
0: Oh, that'll be nice.
1: I think मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी ना गन मास्टर G9 की, गन मास्टर नाम थी कुछ तो था, समथिंग ऑन द सिमिलर नोट।
0: उनका उनका नाम था
1: किसका,
0: मिथुन का सुरक्षा थी मेरे ख्याल से फिल्म का नाम।
1: ओ गाना था ना गन मास्टर G9, हाँ उसी फिल्म का। सो या उसी से प्रोबेबली ये नाम जो इन्होंने लिया, बट अपेरेंटली इट्स रिलीजिंग ऑन द 27th of November एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि इतना जल्दी जल्दी इनके प्रोजेक्ट्स जो है ये आ रहे हैं, एक ही साल में दो दो फिल्में इन बिटवीन फ्यू मंथ्स जो है ये रिलीज हो रहे हैं। सो दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग, बट ऑन द अदर हैंड फैंस आर क्वाइट एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इसका आई थिंक एक अनाउंसमेंट वीडियो जो है ये भी आया है जो इमरान हाशमी ने खुद अपने सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर किया है। सो इमरान हाशमी इज ऑन द रोल राइट नाउ, डूइंग रियली गुड एंड अ वेल डिजर्व्ड एक्टर। तो लोग खुश भी है ना कि फाइनली ही इज गेटिंग द ड्यू क्रेडिट, इनको प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं और इतने सालों बाद इनको हम फिल्मों में देख भी पा रहे हैं।
0: That's amazing. Yeah, exactly. I like his work. कई फिल्मों में बहुत ही कमाल का काम इन्होंने किया है, कुछ फिल्में इनकी चली नहीं, कुछ फिल्में बहुत बुरी तरह से पिट गई, बट I like the fact कि he stood strong.
1: Yes, absolutely. Yeah. That's the best part about him, you know, कि patience के साथ उन्होंने काफ़ी चीज़ जो है ये वेलकम किया। बाय द वे आपको याद दिला दें कि थोड़ी देर बाद आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने अपना आंसर देकर, और साथ में आपको बताएंगे एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के बारे में जो आज होने वाला है। तो इसके लिए हमारे साथ ही आपको बने रहना है, बट डोंट फॉरगेट कि हम बोर्डिंग कॉल, ये अनाउंसमेंट आपका जो स्पेशल बोर्डिंग कॉल का एनी टाइम हो सकता है, जिसके लिए आपको ध्यान से सुनना है। आज का जो अनाउंसमेंट है ऑन द ब्रेकफास्ट शो 8 AM to 9 AM के बीच रहेगा, बट किस टाइम पर एग्जैक्टली वो हम आपको नहीं बता सकते। वी आर जस्ट गिविंग यू ऑफ टाइम फ्रेम की इस टाइम से इस टाइम के बीच में, सो यू हैव टू बी लिसनिंग वेरी वेरी केयरफुली।
0: So, सुनते रहें और जैसे ही ये आपको सुनाई दे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: अभी 24 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. वैसे यू नो, ज़िंदगी जब मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की ज़रूरत नहीं है. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज़ को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. और इनकी जो एक्सपीरियंस टीम है, आपकी भाषा और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. और अब शुरू हो रहा है इनका रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करना और खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर आप फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं. रिमेंबर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि ये फ्री है और कॉन्फिडेंशियल है. या asianfamilieservices.nz भी आप विजिट कर सकते हैं.
3: चलिए, अभी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं आज का हमारा पहला बॉलीवुड सवाल. और आपको पता है कि हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कुछ एक्ट्रेस के नाम जिन्होंने इस पर्टिकुलर फिल्म में ज़रूरी किरदार निभाए हैं, और उन नामों के बुनियाद पर आपको अनुमान लगाना होगा कि हम किस फिल्म के बारे में बातें कर रहे हैं. बिकॉज अ सर्टेन नंबर ऑफ एक्टर्स कम टुगेदर फॉर वन मूवी, बट हो सकता है कुछ डिफरेंट स्टार कास्ट हो जिससे कि आपको अनुमान लगाने में आसानी हो जाए. सो आज का जो लिस्ट है इसमें हम आपको दो नाम एक साथ दे रहे हैं, शाहरुख खान जरीना वहाब.
2: ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पेयर.
3: आई नो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेयर, बट क्या आप फिगर आउट कर पाएंगे आज उस मूवी का नाम जो है हमारी बॉलीवुड फिल्म ऑफ द डे. और इस गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी दो और नाम विच विल एक्चुअली हेल्प यू अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रिप में जो अभी चैंस हम आपको दे रहे हैं इसमें नहीं गेस कर पाए कि कौन सी फिल्म है आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे. बट अगर आपको ट्राई करना है बिकॉज यू थिंक ओके आई थिंक ये आंसर है, आई थिंक ये आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे है, तो आप जल्दी से हमारे पास अपने आंसर्स भेज सकते हैं. BF लिखना है सबसे पहले, फिर अपना आंसर और अपना नाम. आज के दो एक्टर्स जिनका नाम हमने आपके लिए रिवील किया है, शाहरुख खान एंड जरीना वहाब. लेट्स सी क्या आप फिगर आउट कर पाते हैं कि ये कौन सी फिल्म है आज की. और अगर हाँ तो BF योर आंसर योर नेम 5599 पर हमारे पास आप सेंड कर दे.
4: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with

0: What a beautiful voice and what a beautiful song. आज सुबह सुबह आपके लिए हम लेकर आ रहे थे Straight from the Heart में Metro इन दिनों. पिछले साल ये फिल्म आई और अरिजीत सिंह की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना आज सुबह सुबह हमने आपके नाम शामिल किया. आई होप यू गाइज ऑल्सो एंजॉयड इट. फिलहाल 17 मिनट बाकी हैं 7 बजने में. ठीक 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है आपके लिए रहेगा. और इधर हमने आज आपसे पूछा कि मूवी ऑफ द डे, हमारी जो बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे, कौन सी मूवी हो सकती है. जवाब आप हमारे पास अपने सेंड कर सकते हैं 5599 पर अपने नाम के साथ, लेकिन BF लिखना है सबसे पहले आपको. तो कुछ मैसेजेस आए हैं एंड आई'd लव टू हैव अ लुक एट दीज मैसेजेस. सबसे पहले आज सनी आपने अपना मैसेज भेजा. फीजा आपका मैसेज आया है, थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए. हर मिलाप आपने जवाब दिया है. नताशा है साथ में, अविनाश है पपकुरा से, आपने भी अपना आंसर भेजा है. किसी और ने अपना जवाब भेजा है बट आई डोंट नो आपका नाम क्या है. 7214, थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए. और इसके अलावा कुछ और लोगों ने मैसेजेस जो है ये हमारे पास भेजे हैं. सबसे पहले हमारे पास जितेश आपका मैसेज आया है, श्वेता है, कृष्णील थैंक यू, गुड मॉर्निंग आपको, आपके मैसेज के लिए भी थैंक यू सो मच. एलविन आपका भी मैसेज हमें मिल चुका है. साथ में हमारे पास सनी आपका मैसेज आया है, जूली है और रितेश आपने भी मैसेज किया है. स्वाति अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर आंसर एज वेल, कोशिश आपने की है उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच. तो इन सभी मैसेजेस में से कुछ लोगों ने हमारे पास सही तो कुछ लोगों ने हमारे पास गलत मूवी का नाम जो है क्लिक कर भेजा है. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग कुड बी कि क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो व्हेन इट कम्स टू द एक्टर्स जिनका नाम हमने मेंशन किया है, शायद आपको याद नहीं है कि ये कौन हो सकती है. एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे पास रईस लिख कर भेजा है. रईस अगर आपने टेक्स्ट किया है, रईस में शाहरुख खान तो थे लेकिन जरीना वहाब नहीं थी, शीबा चड्डा थी और शीबा चड्डा जो है इन्होंने शाहरुख खान की माँ का रोल किया था. ठीक है, शाहरुख खान जरीना वहाब ये हमने कहा, बट रईस अगर आप लिख कर भेज रहे हैं देन दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. हमारे पास राहुल और कविता जी आपका भी मैसेज आया था, आपने भी रईस ही कहा था, अनफॉर्चुनेटली ये गलत आंसर है. तो दो नाम हमने दिए थे, शाहरुख खान एंड जरीना वहाब. अब चलिए बाकी के दो नाम रिवील कर देते हैं जल्दी से.
1: बताइए.
0: तो बाकी के दो नाम इज जिमी शेरगिल एंड काजोल. जिमी शेरगिल एंड काजोल. सो शाहरुख खान, जरीना वहाब,
1: यस यस यस,
0: जिमी शेरगिल एंड काजोल, कौन सी फिल्म हो सकती है ये?
1: पता नहीं.
0: अच्छा, आपको नहीं पता?
1: ना.
0: आई एम सरप्राइज्ड दैट यू डोंट नो. वीर भी सही जवाब नहीं है. अविनाश आपने वीर लिखकर भेजा है. वीर में सलमान खान थे, शाहरुख खान नहीं. तो चलिए, शाहरुख खान, जरीना वहाब, जिमी शेरगिल एंड काजोल, कौन सी है आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे? अगर आपके पास जवाब है तो BF स्पेस योर आंसर योर नेम 5599 पर हमारे पास भेजे इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
3: चुप हो जाओ पापी, चुप हो जाओ.
4: अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर.
5: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
4: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
5: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आप

0: सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Centre. Accurate traffic.
3: Got an unreliable outboard?
4: High of 14, cloud burning off today. Southwest and southbound, a crash overnight has still got the motorway slow from the airport link to Massey Road, but it should sort itself out. Southern, half an hour, Mataco to town. Slow patches, Papakura to Papatoetoe and at Mount Wellington. Northwestern 25 from Massey to town. Slow at Te Aratu and St. Luke's to the city. Heavy at Greylin. Northern 20 from Constellation, but heavy there. Slow patches on and off to the bridge.
3: Upgrade now with 0% finance on selected Yamaha outboards. TC's fees and credit criteria apply.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापातोएतोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
9: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
10: You filled the pinata before I sealed it, right?
11: No, you did.
10: I thought you did.
9: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
12: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
12: Breakfast catch up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
14: 10 minute baki hai samay hamari studios mein 7 bajne mein aur aapke liye on the breakfast show with Vijay and Pooja hum lekar aa rahe hain. Aaj ka hamara breakfast catch up ka ye safar. So, kya lagta hai aapko? Abhi kuch pata chala aapko kya hai aaj ka Bollywood movie of the day?
15: Nahi, wo to nahi pata chala.
14: तो क्या हो गया आपको?
15: है, मुझे क्या होगा?
14: नहीं, आपने कहा नहीं वो तो नहीं पता चला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ और पता चला।
15: हाँ, मुझे पता चला है कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा कैमार्ट खुलने जा रहा है ना।
14: अरे वो तो मैंने आपको इसी वीकेंड तो बताया था।
15: हाँ, but I don't believe you, ना?
14: You don't believe me. मैंने ये खबर आपको दी थी जब इस वीकेंड हम वेस्ट गेट गए थे घूमने जिसके ऊपर कैमार्ट का साइन था, एंड आई सेड दैट टाइम कि यहाँ पर खुलने वाला है न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा कैमार्ट। कब खुलने वाला था वो मुझे नहीं पता था।
15: मुझे पता है वो सारी चीजें।
14: अच्छा, आपको पता है?
15: मुझे पता है कि वो 10 सितंबर को खुलने वाला है।
14: अगले महीने
15: 24/7 खुला रहेगा और मोर देन 200 जॉब्स क्रिएट कर रहा है।
14: दैट्स अमेजिंग।
15: और ये फर्स्ट स्टोर होगा इन द कंट्री जो एडॉप्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया का जो लेआउट है, ताकि शॉपलिफ्टिंग को रोका जा सके।
14: ओह वाओ।
15: और ये जो सेंटर है विल फीचर कैमार्ट्स प्लेन सी प्लस फॉर्मेट विच चेकआउट मूव फ्रॉम इट्स यूजुअल लोकेशन एट द सेंटर ऑफ द स्टोर टू द फ्रंट।
14: सुपरमार्केट्स में भी तो वही होता है।
15: हाँ, कैमार्ट में नहीं होता है ना।
14: हाँ, बट यहाँ पे शॉपलिफ्टिंग तो सुपरमार्केट्स में भी होती है, भले ही वो लेआउट है। आई मीन, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई कुड बी यू नो अनोइंग व्हाइल आई एम सेइंग दिस, बट इजंट इट ट्रू कि लेआउट वही जो लेआउट आप मुझे बता रहे हैं जो केमार्ट का होगा वो सुपरमार्केट्स में भी होता है, बट शॉपलिफ्टिंग तो यहाँ पे सुपरमार्केट्स में भी हो जाती है।
15: तो मैं क्या करूँ, मैं बंद कर दूँ सुपरमार्केट्स में?
14: नहीं नहीं, बंद मत कीजिए।
15: मैं ऐसा करता हूँ कि चेकआउट जो है पीछे कर देता हूँ, जिधर बुच्चा वो सारी चीजें सी फूड सेक्शन होता है।
14: आई थिंक देर कुड बी अ वे कि ऑटोमेटिक दरवाजे हों या फिर ऐसे ग्रिल वाले डोर्स हो, whatever, जो तब तक ना एक्सेस हो जब तक कि आपका जो रिसीट स्कैन कर कर आपको बाहर जाने की इजाजत ना मिले, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज द डोर्स आर ओपन ना, तो यू एंटर फ्रॉम वन साइड एंड देन यू रन आउट फ्रॉम द अदर साइड, इट बिकम्स इजीयर।
15: सुन लिया
14: किसने?
15: सभी ने।
14: अच्छा,
15: कैमार्ट वालों ने सुन लिया, सुपरमार्केट वालों ने सुन लिया, वो लगाएंगे ये बैरिकेड्स।
14: नहीं, बिकॉज़ आई एम इरिटेटेड ऑफ दिस बिहेवियर, यू नो इट्स क्वाइट अपसेटिंग कि कई लोग होते हैं जो मेहनत कर पैसे कमाकर सही तरीके से बीइंग द राइट डूइंग द राइट थिंग वो चीजें लेते हैं, कुछ लोग जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को इशू बताकर चीजें एक्सपेंसिव है ये बोलकर सिस्टम को गलत तरीके से यूज करते हैं, तो इट्स वेरी इरिटेटिंग, यू नो। एंड ऐसे लोगों को डील करने में क्या कर सकते हैं हम, वही मैं सोच रही हूँ ना कि अभी कुछ तो तरीका निकालना पड़े। तो एनीवेज देखते हैं कि क्या ये प्लान इनके लिए वर्कआउट करता है या नहीं। बट ऑन द अदर हैंड, आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे ये रिवील करने का टाइम हुआ। हमने आपको क्लूज दिए थे शाहरुख खान जरीना वहाब एट फर्स्ट, जिसके बाद चलकर कई लोगों ने हमारे पास भेजा था आंसर इज रईस। बाद में मैंने बताया काजोल और शाहरुख खान और जरीना वहाब एंड जिमी शेरगिल, तो पता नहीं क्यों अविनाश सनी ये लगता है थोड़ा मजाक कर रहे हैं, डिफरेंट मोड में चले गए। पहले तो इन्होंने सही जवाब दिया, फिर उसके बाद में इन्होंने मोहब्बतें लिखकर भेज दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट वो दो दो सनी है, डिफरेंट सनी है ये। चलो एनीवेज द करेक्ट आंसर इज माय नेम इज खान।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 6.5 degrees temperature jo hai ye aap feel kar rahe hain aaj ka high 14 overnight kam se kam 7 degrees fine day aaj hum experience karne wale hain generally aur aaj ka sunset 5:50 pm par hoga.
0: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Morning Madness.
3: Good morning, namaste, welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. 3 minute ho rahe hain, 7 bajkar. This is the Breakfast Show with Vijay and Pooja. Morning Madness aapke liye, jabki hum shuru karne ja rahe hain aaj ke hamare Breakfast Show ke safar mein. To Morning Madness ki shuruaat aap sabhi ke messages ke saath. Once again, thank you so much aap sab ke saath ke liye. Aur jitne logon ne aaj hamare saath subah subah, you know, competition mein hissa liya, apna apna contribution diya, uske liye thank you so very much. Now Morning Madness aapke liye hum shuru kar rahe hain, thodi der baad lekar aayenge hum aaj ka hamara breakfast शो पे राशि वाइब्स, जबकि राशि वाइब्स में आपको बताएंगे आज का दिन आपके लिए कैसा बीतने वाला है.
1: तो इसके लिए आपको तैयार रहना है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है ये मैं पढ़ रहा था और पाकिस्तान से खबरें जो हैं कुछ कम ही आती है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट जो है ये मैं पढ़ रहा था. इनफैक्ट ये रिपोर्ट पिछले साल की है और जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि भाई ऐसी भी चीज जो है ये होती है. तो पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में पुलिस ने चोरी का एक मामला जो है ये दर्ज किया था.
3: ओके.
1: और मालूम है चोरी क्या हुआ था?
3: क्या?
1: 2 apples and a hand wash bottle.
3: ओह, ओके.
1: हाँ.
3: और उसका एक मामला दर्ज हुआ.
1: हाँ.
3: 2 apples and a hand wash bottle.
1: Yes.
3: Interesting.
1: और उसकी ये चोरी कहाँ से हुई थी पता है?
3: कहाँ से?
1: एक जज के चैम्बर से.
3: अच्छा, that's why.
1: तो जो जज हैं नूर मोहम्मद बिस्मल, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उसके चैम्बर से 2 apples और एक हैंड वॉश बॉटल जो है ये चोरी हुआ है, जिसका वैल्यू 1000 rupees है. और पुलिस को कहा कि आप इसे
3: लाइए,
1: नहीं आप एक रिपोर्ट रजिस्टर कीजिए. द केस वॉज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 380 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड.
3: दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. अभी क्या ही बोलूँ मैं इस पे, ना ज़्यादा मेरे पास है नहीं बोलने को कुछ. बट मैंने एक वीडियो देखा था बिहार का कहीं पे, कल ही देखा मैंने. एंड उस वीडियो में पता है क्या हुआ था? एक किसान के खेत से एक शख्स ने चोरी की. क्या चोरी की वो तो नहीं पता चला था, बट देयर वाज सम अदर गाय हु इज मेकिंग द वीडियो. एंड वीडियो में जो किसान था वो था और उसके सामने जो चोर था वो था. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि जो चोर था वो वहां पर दरअसल बैठकर खाना खा रहा था, रो रहा था. तो जो भैया वीडियो बना रहा था उसने बोला कि अच्छा ये क्या हुआ यहाँ पे ना. तो जो शख्स है किसान जो थे उन्होंने बोला कि ये चोरी किया हमारे खेत से. तो फिर चोर जो है वो वहाँ पे बैठा रो रहा है और खा रहा है. तो बोला कि आप खाना खिला रहे हैं उनको? तो फिर किसान बोला हाँ खिला रहे, अब क्या करें, अब मारे थोड़े ना, तो चोरी किया है तो पहले खाना खिला रहे हैं. तो फिर जो कैमरामैन था वो बोलता है कि बिहार में ऐसा ही होता है, पहले हम खिलाते हैं और फिर अभी इसको मारेंगे भी और फिर पूछेंगे कि चोरी क्यों की, पर पहले हम खिला रहे हैं इसको, पहले खिलाएंगे फिर मारेंगे और पूछेंगे कि चोरी की तो की क्यों. और वो चोर लगता है कि डर की वजह से रो रहा था कि अभी तो खिला रहे फिर बाद में मारेंगे भी ना. तो दैट वीडियो वाज सो हिलेरियस.
1: पीटा बाद में?
3: नहीं, वो नहीं वीडियो बनाया कैमरामैन ने, वही तक वीडियो बनाया, बोला कि बाद में फिर जब मारेंगे तब फिर देखेंगे आगे, ऐसे बोल के उसने वीडियो बंद कर दिया. बट द गाय हु स्टोल, ऐसा लग रहा था कि वो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बट वो ऐसे रोने की कोशिश कर रहा था एंड डरा हुआ लग रहा था डेफिनेटली. बट द गाय जिसके खेत से उसने चोरी की ना, वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था. उसने बोला कोई जरूरत नहीं है, लाइक ऐसा मारने वारने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिर्फ खिला रहा हूँ. बट ही वॉज लाफिंग इट आउट, लाइक यू नो हंस रहा था वो कि
1: कि तो काफी सब्जी होगी उसके खेत में
3: probably,
1: कि,
3: yeah.
1: कि ये भाई इतना ले भी लिया तो चलो.
3: हाँ, बट उसको खिलाया ना, बिठा के खाना, अपना खाना दिया उसको खाने के लिए, लाइक नॉट द वेजिटेबल्स बट अपना जो खाना जो लंच लेके गया था प्रोबेबली वो खिलाया, क्योंकि सूखी रोटी और कुछ तो खा रहा था वो. तो बट द होल सिचुएशन वाज हिलेरियस.
1: रोटी कैसी होती है?
3: अरे मतलब उसके साथ कोई सब्जी नहीं होती थी, सूखी रोटी और प्याज बेसिकली इज दैट, उसमें घी भी नहीं होता आई थिंक, ऐसे घी लगाते भी नहीं है, बट एनीवेज सो दैट वाज द होल थिंग, बट इट वाज हिलेरियस बिकॉज ऑफ द गाय वाज मेकिंग द वीडियो कि हम यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, पहले खिलाते फिर मारेंगे फिर पूछेंगे कि किया क्यों, बट यू नो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अलग अलग लोगों का तरीका अलग होता है, अंदाज अलग होता है, बट क्या ही करें ना. थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे आज का आपका दिन कैसा रहेगा, विल इट बी एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डे, अ स्पेशल डे, और विल इट बी समथिंग यू नो सिमिलर जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फाइनली यू गेटिंग द रिजल्ट्स फॉर दैट. तो अगर आपको पता करना है, जानने के लिए हमारे साथ ही बनी रहेगा, राशि वाइब्स आपके लिए इन अवाइल हम लेकर आने वाले हैं.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आपके लिए कहा गया है कि दिन वैसे आपका ठीक ठाक ही रहेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है, पार्टनर्स के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
3: उसके बाद वृष ने टोरस, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि नौकरी के लिए या फिर नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन प्रगति का दिन है, प्रोग्रेस ये आज आपकी किस्मत में लिखा है। एंड मेक दिस डे फुलफिल्ड फॉर यू, कि आपको वो सारी चीजें मिले एज फार एज प्रोग्रेस इज कंसर्न। दूसरी ओर आपके लिए कहा गया डिसीजन लेने में आज आपको अकेले ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। इफ यू हैव समवन इन योर लाइफ जो थोड़ा ऐसे यू नो आपकी लाइफ में आपको सही सलाह देते हो, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, उनसे आप जरूर बातें करें और जो भी जरूरी सलाह मशवरा आपको करना है वो आप कर सकते हैं।
2: मिथुन यानी जेमिनी, ऑफिस में आप डिस्कशन के थ्रू काम पूरे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के डील्स आज हो सके तो ना ही करें और झगड़ा झंझट से दूर रहें। इनकम के कुछ नए सोर्सेज आज आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं।
3: और साथ में आज कर्क यानी कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो आपकी मदद जरूर करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने में, जिससे कि यू'ड फील रिलीव्ड, यू'ड फील सपोर्टेड एंड अप्रिशिएटेड। और दूसरी ओर आपके लिए कहा गया है कि अपने साथी की भावनाओं का आप सम्मान करें, मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करें, मेक श्योर आप अंडरस्टैंड करें उनको, ना डोंट टेक योर लाइफ पार्टनर फॉर ग्रांटेड।
2: सिंह यानी लियो, ऑफिस में आज कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, बिजनेसेस के लिए दिन अच्छा होगा और आज पैसे हासिल करने की जो कोशिशें आप कर रहे थे इसमें भी सक्सेस हासिल करेंगे।
3: और इसके बाद कन्या यानी वर्गो, आज आपके लिए कहा गया है कि आपका जो व्यवहार है इसके वजह से कुछ अपने हैं जो आपके दूर हो सकते हैं, तो कोशिश करें सही तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करें। जरूरी नहीं कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप सबके साथ गलत करें, और पुराने काम जो है आज खत्म होंगे जिसकी वजह से सही समय पर काम को पूरा करते हुए आप समय की बचत काफी करेंगे।
2: तुला यानी लिब्रा, ऑफिस में दिन ठीक ठाक ही रहेगा, बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो फायदा होगा, किसी को पैसे उधार ना दें क्योंकि पैसा आपका फंस सकता है।
3: और आफ्टर दैट अगर देखा जाए तो आज वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि नौकरी में तरक्की के योग ही बन रहे हैं, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है आपका, बस डिसीजंस लेने में शायद आप थोड़ी देरी कर रहे हैं, अगर सही समय पर सही फैसला आप नहीं ले पा रहे हैं इसकी वजह से नुकसान आपका हो सकता है।
2: धन यानी सेजिटेरियस, आपके काम को प्रेज किया जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम है आज, और क्या खाते पीते हैं इसका ख्याल रखें।
3: और उसके बाद धन यानी सेजिटेरियस, ये माफ कीजिएगा मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि नौकरी में मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी जिसके बाद चलकर ही आपको परिणाम जो है ये मिलेगा। हो सकता है कि यू आर गिविंग योर 100% बट रिजल्ट जो आपको मिल रहे हैं वो सिर्फ 50%, एंड थोड़ी बहुत निराशा होती है ऐसे सिचुएशन में, बट जरूरी ये है कि आप सही लोगों के साथ रहे जो आपको सही सलाह दें, ना कि आपके इस मुश्किल की घड़ी का फायदा उठाकर चीजों को और खराब करें। जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उनको जज कीजिए।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, ऑफिस में कॉलीग्स के साथ वाद विवाद में ना फंसे, बिजनेस में नए कॉन्टेक्ट आप बनाएंगे, इनकम आपका अच्छा रहेगा और अपने हेल्थ का ख्याल रखें।
3: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि आज जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, रुका हुआ पैसा आपको इनफेक्ट मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है जिसके चलते फाइनेंशियली जो भी डिफिकल्टीज थी आपको वो सॉर्ट आउट करने में थोड़ी हेल्प होंगी। और आपके लिए ये भी कहा गया है कि मौसम की वजह से कुछ बीमारियां हैं आपको काफी परेशान करेगी आज, काफी बेचैन करेगी आज, इसलिए अपनी तबीयत पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ थोड़ी देर बाद आज का सेलिब्रिटी अलार्म।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह।
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन। प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर, तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए। हरी विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर, ऑकलैंड।
10: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
11: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
10: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
11: पर डेवलपमेंट के पैसे
10: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
12: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
13: Join our tribe!
12: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
13: join our tribe!
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
16: Celebrity Alarm.
17: Hit it. सेलिब्रिटी अलार्म का वक्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी मैं आपको जल्दी से बता दूं। एक क्लासरूम में जो हुआ था, और टीचर जो है स्टूडेंट्स को बता रही थी कि कल मैं सूरज पर लेक्चर देने जा रही हूं।
18: सन पर।
17: हाँ,
18: ओके।
17: सो मेक श्योर यू डोंट मिस द क्लास। एक लड़का था, उसने अपना हाथ ऊपर किया।
18: ओके।
17: टीचर ने पूछा क्या हुआ? ने कहा कि सॉरी मैम, बट मैं नहीं आ पाऊंगा।
18: क्यों?
17: यही टीचर ने पूछा। जवाब क्या दिया होगा?
18: मुझे क्या पता, कहीं जाना होगा शायद उसको।
17: नहीं।
18: Then?
17: तो टीचर ने जब पूछा क्यों, तो उसने कहा मैम, मेरी मम्मी इतनी दूर नहीं जाने देगी।
18: सूरज पे जाने नहीं देगी। Oh my God. Seriously?
17: हाँ?
18: ये आप सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहे हैं?
17: What's wrong?
18: Something is wrong with you.
17: No.
18: Anyways, अभी क्या है? Time हो रहा है आज का हमारा जो।
17: अब आप refreshed हो गई, see?
18: Celebrity alarm, ये अब आपके लिए लेकर आए। आवाज तैयार है, पर देखना ये है कि आप में से कितने लोग आज के हमारे सेलिब्रिटी की आवाज को पहचान पाते हैं। तो चलिए पहले आपको सुनाते हैं आवाज, जिसके बाद आपको अपना अपना जवाब हमारे पास भेजना होगा। एंड दिस इज आवर सेलिब्रिटी वॉइस फॉर टुडे।
19: It depends on the day, you know what I mean? Like, you're not going to wear the same shirt every day, you know? So, sometimes you wake up, you want to be in an F-18, sometimes, you know, P-51.
18: तो ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी, मतलब ये है इनकी आवाज। A very, very popular शख्स जिनके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं है। पर कितने लोग इनकी आवाज को जानते हैं या फिर पहचान सकते हैं आसानी से, वो अलग बात है।
17: तो अगर आपको लगता है कि आप इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं या इनकी आवाज आपने पहचान ली है, एक छोटा सा काम आपको करना है, BF उनका नाम लिखकर 5599 पर भेज दो ताकि मुझे भी पता चल जाए
18: कि ये कौन है। वेरी नाइस, सो गेट स्टार्टेड। एक आखिरी बार आपको सुना रहे इनकी आवाज, हम ध्यान से सुनिएगा।
19: It depends on the day. You know what I mean? Like, you're not going to wear the same shirt every day, you know? So, sometimes you wake up, you want to be in an F-18, sometimes, you know, P-51.
18: Great. कुछ लोग बड़े die-hard fan होंगे ना इनको, इनके, इनको? Die-hard क्यों बोलते अच्छा? Die-hard. Like, what does it mean?
17: आपने बोला है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने नहीं बोला।
18: मैं तो ऐसे सुनी-सुनी बातों पे बोल रही हूँ ना।
17: तो क्यों कर रही हूँ?
18: मैंने बहुत से लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना। I don't even know if it's, I'm saying it correctly or not. शब्द है die-hard या कुछ और है, but जो शख्स, जो लोग इनको बहुत ज्यादा दिल से पसंद करते होंगे, उनके लिए इनको पहचानना बहुत ईजी है। पर कुछ लोग शायद इनको देखते होंगे पर आवाज़ जो है ये याद ना हो ना, ये भी हो सकता है। बट जो भी आपका सिचुएशन है, एटलीस्ट कोशिश तो आप कर सकते हैं। आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन लग रहे हैं आपको, BF स्पेस या आंसर या नेम 5599 पर आप सेंड करें। 5 मिनटों का समय आपको हम दे रहे हैं।
20: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
21: गुंडी खड़ा जाओ या सीधा अंदर आओ,
22: मैं लाऊं अपना ए गेम।
20: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: सुबह के मुख्य समाचारों में, न्यूजीलैंड में इस साल लेट इन्फ्लुएंजा सर्ज के चलते फ्लू सीजन स्प्रिंग तक खिंचने का खतरा है। स्कूल्स में बच्चों और स्टाफ की एब्सेंस तेजी से बढ़ गई है। हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स पर पेशेंट डिमांड और स्टाफ सिकनेस का भार जोरदार तरीके से बढ़ा है, जिसके जवाब में हेल्थ न्यूजीलैंड ने $25 million विंटर प्लान के तहत एडिशनल बेड्स और एक्स्ट्रा स्टाफ का इंतजाम किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में इन्फ्लुएंजा आई स्ट्रेन सबसे ज्यादा फैल रहा है और उन्होंने लोगों से जल्द 2026 फ्लू वैक्सीन लगवाने की मांग की है। ऑकलैंड के एप्सम इलाके में एक बेकाबू फोर व्हील ड्राइव से टक्कर लगने के बाद घायल हुआ टीनेज साइक्लिस्ट अब होश में आ गया है और बातें कर रहा है। 5 अगस्त को हुए इस वायलेंट रैम्पेज में आरोपी पर 8 मिनट के अंदर जगह पर असोल्ट, कार स्टीलिंग, 3 साइक्लिस्ट को टक्कर मारने और एक कुत्ते की जान लेने के कुल 17 चार्जेस लगे हैं। 49 साल के आरोपी की सितंबर 4 को ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी होनी है, जिससे पहले उसका साइकोलॉजिकल इवेलुएशन किया जाएगा। ऑल ब्लैक्स टीम अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच के लिए जबरदस्त तैयारियां कर रही हैं। आखिरी बार जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था, उस समय पर भी ये मैच जबरदस्त तरीके से खेला गया था। पिछले साल लायंस टूर के बाद कहा जा रहा है कि टीमें अब और ज्यादा तैयारियां कर रही हैं। हालांकि ऑल ब्लैक्स टीम के कई खिलाड़ियों को चोट लगने की रिपोर्टें भी आई हैं। इस मैच पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: Final call for hum passengers. Your chance to escape to paradise is coming soon. Listen for the next boarding call and you could win 2 return air tickets to beautiful Vanuatu with Solomon Airlines and $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Accurate traffic.
4: Experience fun at Snow Planet.
5: Fine spells increasing, a high of 14 today. Southwestern heavy southbound due to a crash overnight. It's heavy Nielsen to Massey Road, 30 minutes from the city to the airport. Southern 42 minutes Manukau to town. We're slow all the way from Papakura, a little heavy at times. Northern 26 from Constellation, heavy at Silverdale, slow all the way from Constellation Drive. Northwestern 46 from Massey, heavy on and off from there.
4: Ski, board, slide, tube, fun for the whole family at Snow Planet, not a million miles away.
6: Please use your imagination for the following ad.
7: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like. And once I'd calmed down, I'd actually do something like.
6: Imagine winning $15 million this Wednesday. Play in store or online.
8: डॉक्टर ने क्या बोला?
9: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
8: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
10: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
11: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Endale Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider.
12: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
13: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।

0: beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Birthday greetings.
3: Iska birthday, bhai?
4: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aajo.
3: Happy birthday to you.
5: A very very happy birthday, many many happy returns of the day. Din aaj ka aapko aneko bar shubh aur mubarak ho. Sabse pehle Ramesh Kutiyan ji aur yahan ka mein Kamal Buddhiraja ji hain Flatbush mein aur Barinder Kumar Singla ji ग्रेटन कोर्ट में आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. आप सभी को ये दिन अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.
6: जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आज ऑन द 18th ऑफ अगस्त, जहां के भी अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से आपको अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जो है हम जरूर विश कर रहे हैं.
5: और प्रीतेश कुमार, आज आप भी अपनी सालगिरह मना रहे हैं, ये दिन आपको भी मुबारक हो. इस खुशी के मौके पर आज जितने भी आपके परिवार वाले हैं सभी ने आपको याद किया है. अविनेश हैं, साथ में रेशमी हैं, शशि कुमार और श्वेता ने भी आज आपको याद किया है. अ वेरी हैप्पी बर्थडे.
6: तो अपना दिन बहुत ही प्यार के साथ और अपनों के साथ जो है ये आप एंजॉय कीजिए, स्पेंड कीजिए, यही उम्मीद हमारी ओर से आज के इस दिन पर. पर ये भी याद दिला दें कि अगर कल आपका बर्थडे है, समय पर अपनी ग्रीटिंग्स आप हमारे पास जरूर भेज दीजिएगा, या फिर एडवांस में भी आप ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर, buzz@humm.com पर.
5: humfm,
6: हाँ.
0: मॉर्निंग मैडनेस,
6: हम बोल बोल कर आदत हो गई ना इसीलिए. बट एनीवेज, buzz@humfm.com, humfm.com पर आप अपने ईमेल्स जो है ये हमें सेंड कर सकते हैं एडवांस में. डेट्स वगैरह जो ये आप मेंशन कर दीजिएगा कि किस दिन बर्थडे है ना. और दूसरी ओर 20 मिनट बाकी है 8 बजने में. 8 पर रहेगा न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट, जिसके बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे रश आवर.
5: और रश आवर में आज का व्हाट्स अ टेक में भी हिस्सा लेने का मौका हम आपको देने वाले हैं. और उससे पहले कल शुरू हुआ न्यूजीलैंड फैशन वीक.
6: हाँ,
5: बहुत ही कमाल का जो बैंग ऑन स्टार्ट है इसका हुआ है.
6: आप गए थे?
5: नहीं.
6: तो आपको कैसे पता?
5: मैंने देखा है ना.
6: कहाँ देखा?
5: ऑनलाइन.
6: अच्छा. हाँ. आजकल बहुत सी चीजें जो एक्चुअली में फिजिकली अटेंड नहीं कर पाते, ऐसे ऑनलाइन
5: वर्चुअली बिकम पार्ट ऑफ इट.
6: दैट इज ट्रू.
5: हाँ, तो आज ट्यूजडे है. आज तो होने जा रहा है खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स.
6: यस,
5: एंड इट्स अ वेरी स्पेशल डे. आज 8:30 PM से शेड 10 क्वींस ऑफ क्वींस वॉफ पर ये होने जा रहा है. और अगर टिकट्स आपने नहीं लिए हैं, रिमेंबर nzfashionweek.com/tickets/khadi ये विजिट कर ले, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड जो फैशन डिजाइनर्स हैं इंडिया के, राजेश प्रताप सिंह और कई अन्य डिजाइनर्स आएंगे और वो दिखाएंगे कैसे खादी को कॉन्टेम्प्रेरी फैशन में वो तब्दील कर रहे हैं.
6: हाँ, इट्स नॉट जस्ट द ट्रेडिशनल हैंड स्पन हैंड वोवन फैब्रिक जो जिस तरह से आप देखते आ रहे हो उसे. खादी जो है ज्यादातर वर्दी में इस्तेमाल होती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी वर्दी खादी
5: तो खाकी होती है ना.
6: वो खाकी. अच्छा, ओ ओके. I could be
5: khaki is a color. I don't know.
6: मुझे भी
5: ये फैशन के बारे में मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हो?
6: हाँ, आपका फैशन का समय राणा के फैशन जैसा सेंटी ने उस दिन बता दिया.
5: You know my sense of fashion and you're asking me.
6: But I'm no good at it as well.
5: Then might as well change the topic. हम दोनों ऐसी चीज के बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे तो पता कि
6: कोई नॉलेज है ही नहीं.
5: हाँ,
6: तो चलो let's change the topic.
5: At least we should take some time out and go to the New Zealand Fashion Week.
6: Yeah, but अगर आप जो है फैशन से अपडेट रहते हैं, यू हैव दिस फील, दिस अर्ज, एंड देन आपका नॉलेज बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट मटेरियल्स एंड फैब्रिक्स एंड ऑल, एंड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग सेलिब्रेशन खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो आज के शो के लिए टिकट समय पर ग्रैब कर लीजिएगा. बट डोंट फॉरगेट कि हमारा रक्षाबंधन प्रमोशन भी जारी है और इसमें भाग लेने का मौका भी आपको हम जरूर देंगे आज लेट इन द शो, जहां पर आपको एक और अपने सिबलिंग्स का परफॉर्मेंस रिव्यू करने का मौका

0: आज के हमारे सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म वाज टॉम क्रूज।
1: ओके, सो थैंक यू सो मच अपने आंसर्स भेजने के लिए। थोड़ी देर बाद पप्पू और रवि की कहानी मैं बताऊंगा।
0: ओहो, ओके,
2: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल

0: लीजिए. हरी विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट
1: कुछ ऐसे मामलों में जहां पर यू नो सर्विसेज भी अगर ऐसी प्रोवाइड हो, इसके बारे में अगर हम बातें करें तो चाइना का एक एक्सपेरिमेंटल बुलेट ट्रेन जो है इसके बारे में खबर आई है. एंड दिस पर्टिकुलर बुलेट ट्रेन हैज ब्रोकन इट्स ओन वॉल. हाँ, तो शायद आपने खुद के बारे में पता नहीं किया ना अभी तक.
2: नहीं, मुझे अपने बारे में पता. मुझे अपने
1: अगर हम बातें करें तो चाइना का एक एक्सपेरिमेंटल बुलेट ट्रेन जो है इसके बारे में खबर आई है. एंड दिस पर्टिकुलर बुलेट ट्रेन हैज ब्रोकन इट्स ओन वॉल. हाँ, तो शायद आपने खुद के बारे में पता नहीं किया ना अभी तक.
2: नहीं, मुझे अपने बारे में पता. मुझे अपने
1: अगर हम बातें करें तो चाइना का एक एक्सपेरिमेंटल बुलेट ट्रेन जो है इसके बारे में खबर आई है. एंड दिस पर्टिकुलर बुलेट ट्रेन हैज ब्रोकन इट्स ओन वॉल. हाँ, तो शायद आपने खुद के बारे में पता नहीं किया ना अभी तक.
2: नहीं, मुझे अपने बारे में पता. मुझे अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है. 0 to 800 kilometers पे आवा, that's a massive
1: acceleration. अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं अभी. प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ
2: ये पप्पू कैन डांस. हाँ, मैंने एक्सेलरेशन. या
1: अमेजिंग एक्सेलरेशन.
2: दिस इज माय फैंसी इंग्लिश. दिस इज दैट्स अ वेरी.
1: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं अभी. प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ
2: ये पप्पू कैन डांस. हाँ, मैंने इस पप्पू को का डांस देखा है.
1: वेरी नाइस.
2: इस पप्पू का डांस भी मैंने देखा है.
1: इंटरेस्टिंग. तो इनके बारे में अगले घंटे में हो गया क्योंकि
2: मुझे पता है.
3: जी जिंद जान जवान.
2: डांस. हाँ, मैंने इस पप्पू को का डांस देखा है.
1: वेरी नाइस.
2: इस पप्पू का डांस भी मैंने देखा है.
1: इंटरेस्टिंग. तो इनके बारे में अगले घंटे सुने कहानी.
2: हाँ,
1: टाइम हो गया क्योंकि
2: मुझे पता है.

0: दिन में चलो या मैक्सिमम $5 का बोलते हैं. I know सबसे सस्ता ब्रांड इज अराउंड दैट, बट अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड भी
1: करनी है तो रवि और पप्पू ये बचपन से बहुत गहरे दोस्त.
0: ओके, घनिष्ठ मित्र. ओके, मैक्सिमम $5 का
1: आया ही नहीं.
0: फिश एंड चिप्स आया ना नाम में. रेस्टोरेंट का नाम है ना समथिंग समथिंग फिश एंड चिप्स शॉप
1: समथिंग समथिंग. माय गॉड, $28 का,
0: $28 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स.

0: पर
1: राइट
0: बदल दूंगा, लेकिन चलो इसी के साथ आज चलते हैं। अगर आप में से किसी को कोई
1: इंटरेस्ट 599 पर, सो 5599 इस नंबर पर आप में मैसेज कर सकते हैं, वी'd लव टू हियर फ्रॉम यू।
0: या
1: करेंगी या डिसएग्री करेंगी कि जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा आसानी या परेशानी।
0: आप में से किसी को कोई
1: इंटरेस्ट 599 पर, सो 5599 इस नंबर पर आप में मैसेज कर सकते हैं, वी'd लव टू हियर फ्रॉम यू। करेंगी या डिसएग्री करेंगी कि जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा आसानी या परेशानी, इस नंबर पर आप में मैसेज कर सकते हैं, वी'd लव टू हियर फ्रॉम यू। करेंगी या डिसएग्री करेंगी कि जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा आसानी या परेशानी।
2: परेशानी, डेफिनेटली परेशानी।
1: ओके, एंड व्हेन यू गेट सो मेनी ऑप्शंस, जी
2: ब्रांड है या कुछ भी मैं
1: करेंगी या डिसएग्री करेंगी कि जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा आसानी या परेशानी।
2: परेशानी, डेफिनेटली परेशानी।
1: ओके, एंड व्हेन यू गेट सो मेनी ऑप्शंस, जी
2: ब्रांड है या कुछ भी

0: तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर के
1: चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेबल,
2: एक फेवर एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया। मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और
1: सॉर्टेड रिटर्न फ्लाइट्स फ्रॉम ऑकलैंड टू बाली टू बैंकॉक एंड बैक, साइट सीइंग एक्टिविटीज इवन डिनर क्रूजेस।
3: द रश NZPMI
2: असली डेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया। मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और
1: सॉर्टेड रिटर्न फ्लाइट्स फ्रॉम ऑकलैंड टू बाली टू बैंकॉक एंड बैक, साइट सीइंग एक्टिविटीज इवन डिनर क्रूजेस इन बोथ सिटीज ऑल इंक्लूडेड।

0: हम दोनों एकदम बढ़िया है सपना. तो आज अपने किस आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल प्लीज.
1: सपना जी
2: दुख होता है आप लोगों के जो गाने चलते हैं ना मेरे ऐसे आंसू निकलते हैं बट आई एम फाइन.

0: रहे, हाई ऑफ 14 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर।
1: या अच्छी चीज है या नहीं, जो लोग है वहां पर जहाँ ये हुआ उनके लिए शायद अच्छी होगी, जो लोग यहाँ पर उनके लिए वो शायद इतने लकी, हम शायद इतने लकी नहीं है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स ने इंट्रोड्यूस
0: रहे हाई ऑफ 14 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर।
1: या अच्छी चीज है या नहीं, जो लोग है वहां पर जहाँ ये हुआ उनके लिए शायद अच्छी होगी, जो लोग यहाँ पर उनके लिए वो शायद इतने लकी, हम शायद इतने लकी नहीं है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स ने इंट्रोड्यूस या नहीं, जो लोग है वहां पर जहाँ ये हुआ उनके लिए शायद अच्छी होगी, जो लोग यहाँ पर उनके लिए वो शायद इतने लकी, हम शायद इतने लकी नहीं है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स ने इंट्रोड्यूस किया है श्रावण स्पेशल्स।
0: मिक्चीज़बर्गर। सर्टेन वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं आप लेकर आ रहे थे, पर मेरे पास एक स्टोरी है विच अगेन इज नॉट अ क्या बकते हो टाइप स्टोरी, बट इट मे

0: Auckland.
1: तो चलिए आपको बताते हैं हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है कैसे आप इन चीजों का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले कॉन्सर्ट लाइक सेटिंग में, और अगर आप इस इवेंट का हिस्सा

0: What's going on?
1: What's up, Auckland? तो चलिए आपको बताते हैं हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है।
2: ड्राइव की सैंडी और रुस्बे के साथ और किस तरह से पंकज जो है
1: अगर आप इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं बिकॉज यू विल गेट टू एक्सपीरियंस समथिंग सो ब्यूटीफुल। रवितेश बहुत ही कमाल के हैं, दे ओनली $30 इसी सर
2: की सैंडी और रुस्बे के साथ और किस तरह से पंकज जो है इनका

0: फिर एंटर बोर्ड।
1: ऑन दी अदर एंड याद रहे कि अपॉर्चुनिटीज और भी आपके रहेंगे, बोर्डिंग कॉल के मनी जीतना चाहते हैं थैंक्स टू सोल मनी एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु। विजिट flysolomons.com, flysolomons.com फॉर द डिटेल्स के लिए, एंड रिमेंबर टर्म्स एंड कंडीशंस .nz। Bollywood's most wanted.

ये एक यंग कश्मीरी एथलीट है हु रोज टू इंटरनेशनल फेम और ये एक यंग कश्मीरी एथलीट है हु रोज टू इंटरनेशनल फेम एज अ किक बॉक्सिंग चैम्पियन. तो उनकी लाइफ पर आधारित ये कहानी या फिर उन

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. Morrison's Funerals को बड़े ग्रुप्स के लिए flexible spaces, on-site catering with vegetarian और egg-free options.
2: Now that's new world value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: कोई बेकार सामान है फेक पता करे कि वो कहाँ जाना चाहिए oaklandcouncil.govt.nz/where-it-go
4: करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स और सबसे खास बात गो बनाना स्टाइल के बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम तो देर मत कीजिए कॉल 0800-4626-26 टुडे
5: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस टीज एंड सीज अप्लाई
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune with Whole Grain.
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए
4: नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम तो देर मत कीजिए कॉल 0800-4626-26 टुडे
5: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस टीज एंड सीज अप्लाई
6: द ब्रेकफास्ट शो

0: अपने ट्विंस के लिए खरीदा था कैमार्ट से, ये पाया गया कि उसमें ट्रेमोलाइट एस्बेस्टोस था।
1: प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपर।

0: खरीदा था कैमार्ट से, ये पाया गया कि
1: सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Tumo jao, papio. Tumo jao.
0: Throwback.
2: एक्सेप्ट करने में मजबूर करा देता है बिकॉज इट टेल्स यू द राइट स्टोरी.
0: शो विद वीजे एंड पूजा.
1: तुम हो जाओ पापियो, तुम हो जाओ.
0: थ्रोबैक.
2: एक्सेप्ट करने में मजबूर करा देता है बिकॉज इट टेल्स यू द राइट स्टोरी एंड शोज यू द राइट पिक्चर. एनीवेज, थैंक यू सो मच आप सभी के साथ और समय के लिए. वर्क ऑन. और साथ ही साथ

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं। आपका साथ निभाने के लिए मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक स्टूडियोज में हाजिर हो चुकी हूँ। वैसे समय सबसे बड़ा शिक्षक है और बहुत कुछ सिखा के जाता है। आते जाते लोग जो हमें कभी गिराने की भी कोशिश करते हैं ना, तो समझ लीजिए वो आपको गिरा तो रहे हैं लेकिन आपको साथ साथ कुछ सिखा जरूर रहे हैं। तो इसे एज या उन्हें अपना एक टीचर समझ के उस बात को बहुत आराम से जेंटली समझ जाइए, सिर हिला दीजिए और अंदर से मन में थैंक यू बोलिए कि चलो इसके बाद तो मैं ये नहीं करने वाली या करने वाला, बट थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि क्या है हकीकत या क्या असलियत है। तो भाई इसी नोट पर आप बताइए आप कैसे हैं, हाउ थिंग्स विद यू? मौसम ना, कल मुझे बहुत ठंड लगी और कल मैं सोच रही थी कि अरे बाप रे, आई वाज सो ग्लैड कि कि समरिश फीलिंग थी ओवर द वीकेंड एंड देन सडनली वही हीटर, वही गरम गरम कपड़े निकालने, वही ठिठुरना, एवरीथिंग गोज देयर। बट साथ साथ हमें एक चीज़ का याद रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, और वो है हमारी स्किन, कि हमारी स्किन हमें किस तरह से अपनी मेंटेन करके रखनी, वेदर कैसा भी एक्सट्रीम हो। अब जब मैं बातें इसके बारे में कर ही रही हूँ तो थोड़ी देर बाद अब वाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक से नीलू हमारा साथ निभाने के लिए स्टूडियो लाइन पे आ जाएंगी। कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर करें ऑन 5599 0800 हम पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून, कीप हमिंग हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और पूछना चाहती हूँ कहाँ से सुन रहे हैं, रुबा ऐप के जरिए? आज शायद सुबह थोड़ी मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जब मैं रुबा ऐप के जरिए सुन रही थी, बट आई होप इट्स बैक इन प्लेस वर्किंग ऑल राइट, आई होप सो। जरा बताइए प्लीज 5599 पे टेक्स्ट करके। बचाओ क्या,

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो एक्सपर्ट्स अड्डा में स्टूडियो लाइन पर मेरा साथ निभा रही हैं नन अदर देन अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक से नीलू, एंड इन्हें हम वेलकम करते हैं। अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू नीलू, कैसी हो?
2: बिल्कुल बढ़िया कशिका जी, आप सुनाइए, ठंड में क्या हो रहा है?
1: अरे ठंड में ये त्योहार हो रहे हैं, यू नो
2: I know that is so special about our country, the communities away it is going, it is so good.
1: I know, और ऐसे में सवाल भी बिल्कुल इसी से related मेरे पास है, तो तैयार हो जाओ, shoot कर रही हूँ मैं, ठीक
2: बिल्कुल शूट कर रहे हैं।
1: तो इन्होंने कहा है कि ये तो फेस्टिव सीजन है, और ऐसे फेस्टिव सीजन में अगर 30 इयर्स अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर के पूरे हुए हैं तो हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है काशिका जी? तो मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ।
2: 100% बेनिफिट है, आप वेबसाइट पे जाइए तो आपको दिखेगा ही कि वी आर द चीपेस्ट इन द टाउन फॉर द लेजर हेयर रिमूवल। तभी तो कल तो मैं लिटरली बिजी हो गई थी, क्योंकि वी आर गिविंग लिप और चिन हेयर रिमूवल जस्ट फॉर $10।
1: ओह वाओ।
2: बट उसके अंदर कंडीशंस अप्लाई है, डेफिनेटली वो वेबसाइट पे देख सकते हैं। एंड देन फेस जो हमारा बहुत पॉपुलर है अवाना का लेजर हेयर रिमूवल में, क्योंकि वी डू अ वेरी थरो जॉब, नॉट जस्ट वन पास, वी डू वेरी वेरी थरो, तो वो काफी सालों से हमने उसको नहीं करा था डाउन, बट बिकॉज ऑफ 30 इयर्स है तो भाई हमारे इतने साथ 10,000 से ऊपर हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको खुश तो करना पड़ेगा, विच इज कम डाउन टू 39। बट ये सब पैकेज प्राइसिंग है, दे कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक। स्किन ट्रीटमेंट्स में भी बहुत स्पेशल है, कशिका पीको हमारा द स्टार ट्रीटमेंट है, वो भी बाय वन गेट वन फ्री, देन ग्लूटाथियोन इन्फ्यूजन भी बाय वन गेट वन, एवरीथिंग इज लाइक 50% ऑफ फॉर सिलेक्टेड स्किन ट्रीटमेंट। तो काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है कशिका जी, और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो जिनको पता पड़ रहा है, दे आर जस्ट ग्रैबिंग इट, और बाकी हमारे स्किन कंसल्टेशंस आर गेटिंग वेरी वेरी लाइक बिजी नाउ, क्योंकि आई थिंक काफी डिटेल हम लोग बताते हैं क्लाइंट्स को क्या जरूरत है, कब क्या यूज करना है। सो आई थिंक अब जो अच्छा मुझे लग रहा है मेरी इंडस्ट्री में कशिका, पीपल ऑलरेडी नो व्हाट दे वांट, तो एक एजुकेट क्लाइंटेल आ रहा है जिसको पता है, तो रन ऑफ द मिल क्लिनिक कभी भी अवाना था भी नहीं। हम लोग हमेशा स्पेशलाइज ट्रीटमेंट ही करते हैं, वी डोंट हैव कि बहुत वॉल्यूम हो जाए, बल्कि क्वालिटी होना चाहिए, तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो उसमें कंसल्टेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं स्किन के, पीपल नो व्हाट दे वांट टू गेट डन, दे बिलीव अस नाउ, ऑलरेडी दे हैव बीन, बट द ट्रस्ट हैज गॉन मोर। आई थिंक द ट्रेंड विच हैज कम विद एवरीथिंग स्लोइंग डाउन, पीपल वॉन्ट टू गो टू द सीरियस एंड सिंसियर प्लेसेस, and that is Avana is getting a very good edge at this stage, I must say. So mujhe main kahungi mujhe bahut maza aa raha hai kaam karne, because I always wanted that kind of an atmosphere, yeah, ki logon ko pata ho wo kya kar rahe hain, meri skin sensitive hai, mujhe ye nahi ye kari hai, so this is so wonderful to know.
1: Absolutely.
2: So yeah, this is my journey right now, so I'm really enjoying it.
1: So in a line, if I may ask you, because somebody asked me what there were two specials, I think you said that 50% off hai ya buy one get one. One is Pico, and what is Pico?
2: One is the Pico is a laser, it's NDX fractional laser, FDA approved technology hai hamare paas, koi kahin bhi Korea ya kahin aur se nahi hai. It's Cutera from USA. So NDX fractional laser aapko help karta hai pigmentation, skin tightening and overall rejuvenation.
1: Okay, and the second
2: so you
1: one?
2: Buy one and get one free. Second one is a glutathione infusion. Kashika ji, wo bahut hi popular treatment hai for pigmentation.
1: Achha. Okay.
2: तो वो जब आप लेते हैं तो उसका कोई डाउन टाइम नहीं होता है, और कशिका जी का फेवरेट आंसर मैं अब दूंगी, एक ही ट्रीटमेंट में फर्क देता है।
1: माय गॉड, मैं क्या पे क्या कंप्यूटर है तुम्हारे पास कि कैमरा लगा के बैठी हो? दिस इज नॉट फेयर, यू कॉट मी।
2: बट बिल्कुल देखा है, शादियों के सीजन में तो बहुत बिजी हो गई हूँ मैं उस ट्रीटमेंट
1: के कारण। आई एम श्योर
2: पीपल वांट, यस
1: डेफिनेटली। एंड आप पहुंच सकते हैं avana.co.nz की वेबसाइट पे, जैसे कि नीलू जी ने हमें बताया, एंड आप सिल्विया पार्क शॉपिंग मॉल या ऑर्मिस्टन मॉल पे भी आप जा सकते हैं। एंड योर टोल फ्री नंबर इफ आई एम राइट इज 0800-128-821। या श्योर, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड अगले हफ्ते आपसे फिर बातचीत होगी। बाय,
2: थैंक यू सो मच डियर, टेक केयर, बाय बाय।
0: माय टाइम विद कशिका,
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं।
4: We gotta go. Are you ready?
5: Come and take a trip with me.
6: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter. enter code now to lock in your entry to win to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
7: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
1: Let's go.
7: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
8: Looking for a flash getaway? Fiji Airways flash sale is on now. Fly direct from New Zealand one way to Nandi from just $295. Or enjoy a stopover in sunny Fiji direct from New Zealand on your way to epic destinations like Tokyo from $675, Singapore from $699, and Hong Kong from $695. Flash destinations for not much cash. Fiji Airways flash sale on now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
9: It's business month at Warehouse Stationery with big deals on business essentials like 20% off light white whiteboards and pin boards, and buy one get one half price on WS whiteboard markers. Don't miss big deals for your business at Warehouse Stationery. Conditions apply.
10: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
11: Weeknights, you're flat out. And it's leftovers again?
12: Don't settle for meh dinners. Spice things up with HelloFresh.
11: Zesty laksa, viral tacos or a juicy steak. Ready in minutes.
13: Mm.
11: Take back dinner time with HelloFresh.
14: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते
15: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
16: अब हमारा क्या होगा?
17: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
15: तो क्या करें?
18: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
19: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi or Shu Prasad, Kelston.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
20: Office Shoutout.
1: So, office shoutout पे जाने से पहले, I have to talk to you about this beautiful ad अभी जो आपके लिए बजा है. And this is जो रवितेश देव जो गाते हैं ना, बहुत मजा आ रहा है खाली सुनकर यहाँ पे रेडियो में. खाली, you know, it's a 30-second ad. और ऐसे में अगर हम कुछ प्ले करते हैं, कहते हैं कि अरे ये और क्यों नहीं बज रहा, तो जस्ट क्योंकि इनका ये जब ऐड बनने के लिए आया था तो आई वाज वेरी कीन, क्योंकि उन्होंने ये लिंक भेजा था मुझे कि काशिका ये ऐड इस तरह से, इसमें ये गाना ऐड कर देना, मेरा ओरिजिनल सॉन्ग. तो ये रवितेश देव जी की जब मैंने आवाज़ सुनी, जब मैंने उनकी पूरी यू नो ये ट्रैक सुना, आई वॉज लाइक mesmerized totally. अब ये 22nd of August के दिन 7 बजे वैदिक सेंटर में पपटोए में आप परफॉर्म करने वाले हैं. एंड दिस इज़ अ फ्यूजन ऑफ भजन, कीर्तन एंड सम डिवोशनल म्यूजिक. तो आपके लिए NZ कल्चरल ट्रस्ट ये लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे वो एड कर रहे हैं गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी को. मैं चाहती हूँ इस नेक काम में आप ज़रूर हाथ बटाएं और पहुंच जाएं सपोर्ट करने के लिए. eventbrite.co.nz के ज़रिए आप टिकट भी जाकर खरीद सकते हैं. अच्छा, अब बात करते हैं जब ऑफिस शाउट आउट की, तो साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड, आप मुझे सुन रहे हैं पापा टोय टोय से. सो अ बिग शाउट आउट टू यू.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Hollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: वैसे हमारी कोई ब्रांच है तो नहीं, लेकिन अगर आप ब्रांच आउट करना चाहते हैं तो दैट इज़ पॉसिबल. अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम बोर्डिंग कॉल के लिए मैंने आप लोगों को रिमाइंडर दिया है. रिमाइंडर इसीलिए दिया है क्योंकि ये कभी भी आपके लिए बोर्ड नाउ का जो एक हमारा बोर्डिंग कॉल जो है, योर टेंशन प्लीज़, अब आप बोर्ड कर सकते हैं, ये वाला बोर्ड का एक बोर्ड नाउ का जब हम कभी भी कहीं अनाउंसमेंट करेंगे, समझ लीजिएगा उस समय झट से आपको रोवा की तरफ भागना है और बोर्ड कर देना है हमारी इस फ्लाइट में. जिस फ्लाइट में आप बैठने वाले हैं या जीतने वाले हैं उसमें दो रिटर्न एयर टिकट्स हैं टू वनुआटू, और ये सोलोमन एयरलाइंस के सौजन्य से आ रहा है अलॉन्ग विद $1,000 स्पेंडिंग मनी. तो याद रहे ये 30 मिनट्स का टाइम होगा, अभी नहीं शुरू हुआ, सो डोंट वरी. और आपको बताना चाहती हूँ कि ये सोलोमन एयरलाइंस के बारे में कि ये 4 बार हफ्ते में नॉन स्टॉप ऑकलैंड टू वनुआटू फ्लाई करते हैं. और विज़िट कीजिए आप flysolomons.com के ज़रिए, आपको बहुत सारे और भी इनके ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस और कितना खूबसूरत है वनुआटू ये आप देखेंगे तो आप कहेंगे ओ माई गॉड, इस ट्रॉपिकल आइलैंड में मैं पहले क्यों नहीं गई या गया. वैसे हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कॉन्टेस्ट के हैं वो भी आपको समझने का एक मौका ज़रूर मिलेगा. तो आप वहाँ पर जब हमारी वेबसाइट पर जाएंगे या हमारे आप यू नो रोवा ऐप पे जाएंगे तो आपको ये डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन अभी के लिए बोर्ड नाउ नहीं हुआ है.

0: ईट बेटर लिव बेटर, लेकिन इतना ही कहना चाहती हूँ दैट इतना कुछ होता है जब ये कुछ होता है. एक मेजर ऑस्ट्रेलेशियन स्टेशनरी कंपनी है जिसने 100 स्टाफ लिए हुए हैं, ये प्रपोज करे हैं वाइंड अप करने के लिए आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन इन न्यूजीलैंड. कैंडिडा स्टेशनरी एक मेजर सप्लाई है ऑफ ऑनलुप्स जो 1976 में ऑकलैंड में आई थी और उसको ओन और ऑपरेट किया था. इट ऑल्सो हैड ब्रांचेज इन मेलबर्न एंड सिडनी. एक स्टेटमेंट जो था उसके ज़रिए पता चल रहा है द ओनर इज़ एट द मायरांगी बे और इन्होंने बताया है कि ये अपनी प्रॉपर्टी को और ऑपरेशंस को बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ऑपरेशंस बंद करने वाले हैं. सो 100 पीपल विल डेफिनेटली गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. कमिंग अप नेक्स्ट, आपके लिए आ रहा है ड्रीम का इंटरप्रिटेशन. कुछ है तो ज़रूर बताएं 5599 पर.
1: 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे ओनली ऑन हम.
7: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
8: It's winter, but you already know that.
9: What you might not know is that demand for blood and plasma donors is high.
8: Yet the supply of blood and plasma donors is low.
9: It happens every year when the dreaded lurgies do their darndest.
8: You know, the cough.
9: The splutter.
8: The nose that runs like Usain Bolt.
9: So, we're asking you to get your blood buddies together and book a group blood or plasma donation today at nzblood.co.nz.
8: Give blood, give plasma, save lives.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
11: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
10: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
11: Available at selected branches. T's and C's apply.
12: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
13: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
12: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
13: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tāmaki showroom. It's worth the visit.
12: Elite Bathroomware.
13: A reflection of you.
14: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं. इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए. सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस. सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए. सोना संसार, संसार रिश्तों का.
15: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: So, आपका टेक्स्ट आया है कि I've dreamt of cars, Kashika. So, what does that mean? So, dreaming of car, actually, it's a ability जो आप control कर सकते हैं किसी direction में, कोई वो speed है, situation है, which is going on, जिसको कोई स्टॉप नहीं लग रहा. बट आई थिंक एक पर्सनल आपकी जो एक पावर है, एक डिसीजन मेकिंग पावर है और कॉन्फिडेंट हैं आप उस बारे में, आपकी ज़िंदगी के पाथ पे कुछ रास्ते पर जो अगर ये इस तरह की चीज़ आ रही है तो आपका उस पर कंट्रोल हो सकता है. एंड ऑपरेटिंग अ कार डेफिनेटली ये बताता है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप किसी सिचुएशन को कितने खूबसूरती के साथ मैनेज कर सकते हैं. एंड इट इज़ सम पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी जो ये रिफ्लेक्ट की जाती है. आप कैसे, किस तरह से, किस डायरेक्शन में और किस स्पीड में अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, घुमाते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. द टाइप ऑफ द कार, ये आपके स्टाइल को एक्चुअली डिपेक्ट करती है कि डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोलिंग करने में. तो जो टाइप ऑफ कार है उसमें डिसीजन किस तरीके से होगा, क्या आप कह सकते हैं उसमें. तो इफ़ यू आर यू नो ड्राइविंग अ कार, जो बता रहा है कि यू नो आपको कोई चॉइस ऑफ कार्स दिखाई दे रही है या सिर्फ एक ही तरह की कार दिखा रही है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी चॉइसेस के साथ और लोगों को, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स डेफिनेटली हैपन. और ये चीज़ें जब ये हैपन होने लग जाती हैं ना, तो लगता है कि ओ माय गॉड लाइफ कितनी खूबसूरत है. जब एक्सपेंसिव और पावरफुल गाड़ियाँ होती हैं तो इम्प्रेसिव आपके डिसीजंस, आपका इफेक्टिवनेस एंड यू आर अनस्टॉपेबल. और इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, कभी कोई रन डाउन चीप व्हीकल आपके लिए आती है, तो थोड़े लगता है लैक ऑफ रिसोर्सेज. अब मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने दोनों आपको तर्क बता दिए कि किस तरह से आप अपनी सिचुएशन में थोड़े बहुत विनर फील नहीं कर रहे थे, लेकिन हो सकता है द कार योर बीन ड्रीमिंग अबाउट और द कार यू ड्रीम्ड अबाउट, उसमें हो सकता है कि वो विनिंग अभी आपकी आई नहीं है, बट इट नीड्स टू बी डेफिनेटली ब्रश्ड अप. सो आप कार जो है आपकी, आपने डेफिनेटली ये देखा जाता है कि किस तरह से आप इंस्पायर करते हैं, आपकी कार जो है आपकी जिंदगी को रिफ्लेक्ट जरूर करती है.
15: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI.
0: अगले घंटे पर मैं रक्षाबंधन से रिलेटेड आपसे एक क्वेरी तो नहीं, एक आपसे सवाल ज़रूर पूछूंगी. और मैं चाहती हूँ उस सवाल का अगर आप जवाब दें तो कॉल करके जवाब दें, क्योंकि आपके सवाल के जवाब के साथ साथ समझ लीजिए कि इमोशंस तो जुड़े ही जुड़े होते हैं हर राखी पे सबके. लेकिन एक चीज़ है, आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड कर दूँगी. अब कितना अमाउंट है, क्या है, $250 के करीब पर पर्सन आप भाई बहन जीतेंगे, यानी 500. Wow, isn't that interesting? ध्यान से सुनते चले जाइए.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: वैसे एक बात तो है दैट चलिए 0800 रचना की तरफ से ये गाना आपके लिए बहुत ही एवरग्रीन सदाबहार मैं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा ही है और बहुत ही गजब का ये दिन है, तो आप समझ ही गए होंगे। वैसे ऑकलैंड भक्ति सत्संग जो है ये आपके लिए ग्रैंड 3 कॉर्नर कीर्तन नाइट लेकर आ रही है, जहाँ अच्युतन नायर सिडनी से हैं, नितिन गाउंडर ऑकलैंड से हैं, अश्विन कुमार अप्पा लव टू कॉफी जी से आ चुके हैं या आने वाले हैं। 21st ऑफ अगस्त के दिन $20 की टिकट है। वैदिक सेंटर पापा टोइटो में आप डेफिनेटली पहुंच सकते हैं ऑकलैंड भक्ति सत्संग के इस ब्यूटीफुल से इवेंट में। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन इनवाइट करिए आपको 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट में 22nd एंड 23rd को एट द बकिनहेड स्काउट कॉलेज स्काउट हॉल। और साथ साथ अनफिल्टर्ड में सैंडी और रुस्बे ने पंकज की जर्नी के बारे में बातचीत की, जहाँ की नेशनल टूर्नामेंट्स कितने ज़्यादा असेंशियल हो जाते हैं। और ये अगर आप सीजन प्लेयर हैं या फिर आप एक बिगिनर हैं, तो यू नो हाउ थिंग्स कैन इन्वॉल्व अराउंड यू, व्हाट कैन यू डू। वैसे आप CV लिख के भेजें और उसके बाद आपको ये इनकी डिटेल जानकारी इनके पॉडकास्ट के थ्रू मिल सकती है।

भी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय जो वक्त हो रहा है वो हो रहा है आपका और हमारा मिलने का, यानी कि बस थोड़ी देर बाद मैं टेलीफोन की लाइंस खोलने वाली हूँ. मेरे पास एक सवाल है. सवाल ये है दैट रक्षाबंधन के मौके पे you know, कई बार भाई बहन आपस में रूठ जाते हैं, है ना, ऐसे आपके रिश्तों में टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं. लेकिन वो एक जब रक्षाबंधन का वक्त आता है तो भले ही आप उनसे बात ना कर रहे हो लेकिन उनको याद ज़रूर कर रहे होते हैं. ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई बात आपके साथ है? क्या आपका दिल किसी बात से भरा हुआ है? डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप मुझे 5599 पे तो कॉल नहीं कर सकते, 0800 हम पर मुझे कॉल करें और मुझे बताएं. मगर जब मैं गाना बजाऊंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा धागों का बंधन, उसके बाद मैं कॉल्स डेफिनेटली उठाने वाली हूँ. लेकिन हाँ, ये इस पावन पर्व पर मैं चाहती हूँ किसी ना किसी भाई बहन को कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होता चला जाए. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए आ जाता है हमारा टाइम, मेरे साथ कशिका के साथ 12 बजे तक.

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better, live better. And of course, this is a very, very emotional song. And मैं चाहती हूँ कोई भाई या बहन अब ज़रूर फ़ोन करें. कोई नाराज़ एक दूसरे से रूठा हुआ है लेकिन आपस में बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन आप उन्हें मिस कर रहे हैं. क्योंकि ये त्यौहार ऐसा होता है ना, साल में एक बार, जब एक हुक सी उठती है दिल में और कहते हैं कि क्या मेरा भाई या बहन मुझे कॉल करेगा या नहीं करेगा, या बात करेगा नहीं करेगा. रूठे हुए हैं आपके, उनके साथ क्या ऐसा किया भाई, थोड़ा सा रिव्यू करिए ना अपनी परफॉर्मेंस को या उनकी परफॉर्मेंस को. किसकी वजह से इतनी लड़ाई झगड़ा, इतनी बातचीत बंद हो गई, ऐसा कुछ हुआ? 0800-004-866 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करना चाहती हूँ. आई नो इट्स अ लिटिल टची सब्जेक्ट, बट कभी कभी वेंट आउट करना, कभी कभी बोल देना ना, हल्का हो जाता है इंसान उससे. मैं भी कितनी बार ऐसा आप लोगों के साथ करती हूँ, मेरा कुछ होता है तो मैं डेफिनेटली बात कर लेती हूँ. जैसे कल मैंने अपने बारे में बताया, कल परिचय ने अपने बारे में बताया, तो ऐसा लगता है कि हमने एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करा रोने के लिए, है कि नहीं? तो अगर आपने कॉल करना है ज़रूर कॉल कीजिए. 0800-004 हम पर मुझे कॉल कीजिए. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके, सुन के. शायद हो सकता है मैं भी अपना दिल हल्का कर लूँ आपके साथ. याद रहे, आप $250 ईच भाई या बहन, भाई और बहन लेके जाएंगे. 28 अगस्त के दिन ये आपकी जो कॉल होगी उसमें से ड्रॉ किया जाएगा. इसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसी होती हैं, एक हम निशानी रख लेते हैं अपने भाई या बहन की, और ये कुछ हमारी एक्स्ट्रॉर्डनरी मेमोरी में बन जाती है. कुछ भी हो सकता है, कोई रिकॉर्ड, कोई कुछ, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, कोई टी शर्ट आपने संभाल के रखी, कोई स्कार्फ है, ऐसा कुछ है तो आपने उसको अभी तक संभाला, उसकी एक फ़ोटो होगी आपके पास. हमारे फेसबुक के पेज पर आप आ जाइए और आकर उसे पोस्ट कर दीजिए हमारे पोस्ट के नीचे. दो या तीन लाइन में अपनी कहानी लिख के बता दीजिए, अपनी मेमोरी अटैच कीजिए, अपने भाई या बहन को टैग कर दीजिए. दैट्स अबाउट इट. $300 कैश आपको वहाँ पे भी मिलने वाले हैं. यानी 28 अगस्त के दिन आपके लिए ये अनाउंसमेंट्स ही अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं. तो ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाइएगा. आप अभी मुझे कॉल करना है, जल्दी जल्दी कॉल कीजिए. वैसे मैं 6 वर्ड स्टोरी की तरफ जा रही हूँ, कुछ माइंड में आता है तो मुझे ज़रूर कॉल करें.
2: Attention everyone, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर.
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
3: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
2: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में. उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं.
3: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
2: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल.
4: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
5: डिब्बा खुल गया
6: भरत भाई, टिफिन खुल गए छे.
7: संजना का डिब्बा खुल गया.
8: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा. फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया. हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले. बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: Blood and plasma are always precious, but in wintertime with sickness about, we need even more donors to fill the gaps others leave. If you can, please book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
10: At Bunnings Trade, we've got your paint jobs covered. Shop a wide range of paint and accessories from leading brands like PPG, Dulux and Monarch. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today. At Bunnings Trade.
11: It's the final days of Big Save's massive sofa and bed sale. Get up to 50% off. Lounge suites, recliners, sofas, lazy boys and beds. Get a three-piece recliner suite, only $17.99. And queen beds from $8.99. Plus get a massive 30 months interest-free store-wide. T's and credit criteria apply. Don't miss Big Save's massive sofa and bed sale on today, only at Big Save.
12: Is your marketing budget feeling the squeeze? You need marketing assets that keep delivering. Great Signage does exactly that. Speedy Signs creates bold, professional signs that draw attention and reinforce your brand every single day. From sharp shop fronts to standout vehicle graphics, they make sure your business gets seen. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
1: I can totally understand your emotions and आपने मुझे call किया, उसके बाद आपने text भी किया और अब आप एक दूसरे से भाई बहन बात नहीं करते हैं. But I don't know whatever the reason might have been, but it's all right. थोड़ा heavy हो गया था topic. और फिर आपने text किया. मुझे सॉरी काशिका जी, आई हैव टू वेंट दिस आउट टू यू, बट माय सिक्स वर्ड स्टोरी इज वी शेयर्ड डीएनए नाउ जस्ट मेमोरीज. वी शेयर्ड डीएनए नाउ जस्ट मेमोरीज. आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी पॉजिटिव ये कहीं ना कहीं मेमोरीज के बाद दोबारा से लाइव हो जाएगा. सो आई विल जस्ट प्रे फॉर यू एंड आई एम श्योर आप भाई बहन आपस में ज़रूर बातचीत करेंगे. चलिए यहाँ थोड़ा हैवी हो गया सब्जेक्ट, थोड़ा प्यारा सा गाना बजाते हैं, मूड चेंज करते हैं. ओके,
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

वैसे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट इसमें एक बात बता दूँ, द ऑकलैंड के जो टॉर्बे एरिया है वहाँ के कार्स और होम्स हैव बीन पेपर्ड, जहाँ पे वो स्टील के कुछ चीज़ें हैं, जहाँ पे काफ़ी महीने से वैंडलिज्म हो रहा है। एक फुटेज में एक आदमी गोल्डन मास्क पहनकर आता है फ्रॉम द ड्राइववे और वो टारगेट करता है प्रॉपर्टीज़ को, और इस तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की सीसी फुटेज के दौरान। और जो टॉर्बे के लोकल हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने सिक्योरिटी कैमरा खरीदा जस्ट बिकॉज ही वॉज फीलिंग सो पैरानॉइड, और उन्होंने ये उन्हें पता चला कि उनके फादर की जो वैन थी ओवर द वीकेंड उसमें कई स्टील की जो रॉड्स है उसके साथ से उन्होंने स्क्रैचेस लगाए हुए हैं। पूरे फैमिली के जितने व्हीकल्स खड़े हुए थे हर बार आके दो दो जगह से कभी या तो पैलेट्स के साथ या फिर स्क्रीन विंडस्क्रीन कुछ किस तरह से कोई आकर तोड़फोड़ करके चला जाता है। इट्स अ लॉट ऑफ डैमेज एंड पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है इस इंसिडेंट के ज़रिए पता चल रहा है कि रैम्पेज जो इस तरह से की है इट्स रियली रियली गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। और उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, उन्होंने कहा इफ़ देयर समबडी हु कैन हेल्प। एक ही प्रॉपर्टी पे 7 बार उनको अटैक किया गया और उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं चलता। फाइनली एक फ़ोटोग्राफ जो थी जिसमें एक मास्क मैन गोल्डन कलर का मास्क पहन के आता है और आके वहाँ पर ये तोड़फोड़ करके जाता है। अब ये कौन है ये पता नहीं चल रहा, बट इनके हाथ में कुछ सम काइंड ऑफ अ वेपन, सम काइंड ऑफ अ थिंग वेयर ही इज़ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दी विंडस्क्रीन, और कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग अब डरने लगे कि ऐसा तो नहीं कि हमारे घर की तरफ ऐसा कुछ हो रहा है। सो पुलिस इज ऑल्सो ऑन द थिंग, काफ़ी सारी इंक्वायरी भी इसके ऊपर हो रही है। एंड डेफिनेटली अगर आपको लगता है कुछ, आप अगर टॉर्बे से सुन रहे हैं 105 पर आप कॉल कर सकते हैं।

0: Kashika.
1: Wah.
2: How?
1: Adbhut.
3: बात तो अद्भुत यह है कि बहुत सारे न्यूजीलैंडर्स जो हैं, ये कंपनीज जो हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं करें, क्योंकि कस्टमर्स को ये डील्स मिलती हैं बेटर देन एग्जिस्टिंग वंस. एक सर्वे के ज़रिए पता चला दैट कुछ ब्रांड्स प्रॉमिस करते हैं कस्टमर्स को कि ये है, ये है, ये है, लेकिन रिसर्च के ज़रिए, सर्वे के ज़रिए पता चला 69% जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि कंपनीज हैव फॉलन शॉर्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा गैप है. और ये कहा जा रहा है कि चाहे ये बैंक्स हों, पावर कंपनीज हों, टेलकोज हों, पीपल सीम टू बी अपसेट, क्योंकि नए कस्टमर्स को अच्छी डील्स दिलाने के लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं. और ऐसे में ये जो बैंक्स हैं स्पेशली, इनके ऊपर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि पीपल गेट स्किन स्वॉप. लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खासतौर पे वो जो इतने सालों से उनके साथ लॉयल चलते चले आ रहे हैं. आपके साथ क्या इस तरह से कुछ हुआ है?
4: Drive show with Sandy and Rusby.
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
6: ये गलत बोल दिया यार.
5: और पहनता भी नहीं है उसको.
6: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
5: इंटरेस्ट
7: ब्रांड हो गया अभी वो.
6: अभी ब्रांड हो गया ना.
5: रुस्बे के बाल लगे उस.
4: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
8: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
9: Please use your imagination for the following ad.
10: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like. And once I'd calmed down, I'd actually do something like.
9: Imagine winning $15 million this Wednesday. Play in store or online.
11: It's a client who tried DIY. It did not work. It's that 5-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier. Everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
12: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island. Like whole chicken legs, $7.99 per kilo. Or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
13: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
14: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
15: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
16: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
17: अब हमारा क्या होगा?
18: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
16: तो क्या करें?
19: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
20: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
21: आपकी मुश्किल खड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilyservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Ladies and gentlemen, got airplane tickets with your name on them. This is the boarding call for Solomon Airlines flight number Hum 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Yeah. Please proceed to Rover and enter board now.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
17: Rescue me, recycle me.
3: Rescue me, recycle me. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर green onions घर में आप लेकर आते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनको रीग्रो कर सकते हैं. लेट देम स्टार्ट इन वाटर और एक हफ्ते तक उनको पानी में छोड़ दीजिए. उसके बाद डायरेक्टली इनका जो प्लांट है आप लेके एक पॉट में डाल दीजिएगा सॉइल में, और देखिएगा कि ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे और ग्रो करना शुरू कर देंगे. तो ये जो आप ग्रीन अनियंस की बात करते हैं, इनके जो वाइट रूट्स हैं, छोटे से ग्लास या जार में अगर आप ऐड करते हैं थोड़े से पानी के साथ और एक सनी विंडो पर रख दीजिएगा, दैट्स इट. और उसके बाद एक हफ्ते के बाद आपने इसको पॉट के अंदर आपने ऐड कर दिया जिसमें सॉइल है. आप नोट करेंगे कि उसमें से आपके लिए ग्रीन बल्ब्स दोबारा से निकल कर आना शुरू हो जाएंगे. इज़न्ट दैट ब्यूटिफुल? आई मीन हाउ कैन वन रीयूज रीसाइकल थिंग्स एंड डू थिंग्स लाइक दैट. मैंने कोशिश की थी फॉर समथिंग एंड इट वर्कड वेरी वेल. तो आप भी ट्राई कर सकते. मैंने हरा धनिया जो था ना उसके ऊपर का पार्ट सारा काट लिया. उसके बाद मैंने जो उसकी रूट्स बची थी, आई थिंक मैंने इसके बारे में बात भी की थी, एंड मैंने उसको पानी में डाल दिया था. उसके बाद वो जो रूट्स थी इट गेंड इट्स हाइट और उसमें छोटी छोटी हरे धनिया की पत्तियाँ आनी शुरू हो गई थी. यू नो दैट एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग समथिंग योर सेल्फ. आपकी मेहनत जैसे रंग लेकर आती है, ठीक उसी तरह से पत्तियाँ रंग लेकर आई थी अपने हरे हरे.
0: दिल से दिल तक. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो देखिए, एक बात तो है कि वो बोर्डिंग कॉल बज चुकी है थोड़ी देर पहले, और अगर आपने पे अटेंशन नहीं किया तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ दैट आप BC लिख के भेजें और आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप फटाफट बोर्ड नाउ कर लीजिए। अभी 30 मिनट्स का ही टाइम था जो आपको 30 मिनट्स के अंदर अंदर बोर्ड करना है, तो इंश्योर दैट आपकी एंट्री बिल्कुल पहुँच गई। और कितनी बार एंट्री कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। सो अभी के लिए यही कह सकती हूँ कि कीजिए स्वीकार का शिकार का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है मंगलवार, मेरी मुलाकात होगी आपसे वो दिन कहलाएगा बुधवार या हम्पवार, जो भी इसे कहना चाहे। चलो अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे कशिश फूड्स के सौजन्य से माय टाइम लेकर मैं फिर से आ जाऊँगी आपकी खिदमत में। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में सभी को याद रखिएगा, एंड स्टे वार्म, दैट इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आर वी कमिंग अप नेक्स्ट विथ हिज लंच बॉक्स का पिटारा, देखते हैं कि उनके पास क्या खास है। बट हैव अ ग्रेट डे अहेड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में सभी को याद रखिएगा। दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियो।

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
2: क्या?
3: The cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Clothing.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Coffee? The usual?
3: How about the unusual?
4: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: Moisture और ventilation का problem लगता है.
6: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.in से.
11: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
12: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
13: मुझे भी
12: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
1: Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. Kmart must pay a Christchurch couple just over $15,000 over asbestos-contaminated play sand. They took the retail giant